सुप्रभात श्रोताओं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून सन 2026। प्रातः के 5:58.45 हो रहे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया।

0: पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, भगवान गणेश जो विघ्नहर्ता भी हैं और इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी भी, तो आइए आज की वंदना की शुरुआत करते हैं भगवान गणेश जी के भजन से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। श्रोताओं, गजानन सिर्फ बुद्धि के देव नहीं है बल्कि वे हमारे जगत पिता और परम पिता हैं। जैसे भोर की ओस हर मुरझाए हुए फूल को एक नई ताजगी और नया जीवन देती है, ठीक वैसे ही गणपति बापा की कृपा हमारे जीवन के सारे दुखों और अंधियारों को मिटाकर खुशियों का सवेरा लाती है। उनके चरणों में वंदन करने मात्र से मन को वही पावन शीतलता मिलती है जो प्रकृति को सुबह की ओस से मिलती है।

भगवान गणेश का ये भजन। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, जब भी ब्रिज की गलियों का जिक्र होता है तो यमुना किनारे का वो पावन तट याद आ जाता है और कानों में गूंज उठती है एक ऐसी धुन जो सिर्फ कानों को ही नहीं बल्कि सीधे आत्मा को छू लेती है। वो धुन जो खुद राधा रानी और पूरी गोकुल नगरी को शुद्ध बुद्ध भुलाने पर मजबूर कर देती है। भगवान कृष्ण की उसी जादुई मुरली के लिए किसी ने क्या खूब लिखा है, अधुरम मधुरम वंदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुरादि पतेरखिलम मधुरम। तो आइए हम और आप भी उसी जादुई तान में खो जाते हैं और सुनते हैं भगवान कृष्ण का ये भजन।

अनुराधा पौडवाल के स्वर में अभी आपने सुना श्री कृष्ण का यह भजन और भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, जब हम ईश्वर की शरण में आते हैं तो धन धन हमारे भाग, घर आया फिर मेरा जैसी पंक्तियां दिल को असीम शांति देती हैं। गजल सम्राट पंकज उदास की आवाज में इस पवित्र शब्द को सुनते हुए आइए आज सुबह की इस बेला में दुनिया के सारे शोर को पीछे छोड़कर खुद को इस दिव्य स्वर को समर्पित करते हैं।

पंकज उदास के स्वर में अभी आपने सुनी ये शब्द रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। चलिए अब आपको सुनवाते हैं अफजाल हुसैन की आवाज़ में ये नात।

अफजाल हुसैन के सुर में भी आप सुन रहे थे ये नात। और अब कार्यक्रम वंदना का समापन कर रहे हैं महेंद्र कपूर और साथियों की गाई इस आरती से। श्रोताओं, आरती का मतलब ही होता है अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना। जब हम गणपति बापा की आरती गाते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं गूंजते बल्कि हमारे भीतर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। गणपति बाप्पा सुख करता है यानी सुखों को देने वाले, और दुख हरता है यानी हमारे जीवन के सारे दुखों को हरने वाले। उनकी इस पावन आरती को सुनते ही मन में एक असीम सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो आइए सुनते हैं गणपति बाप्पा की ये आरती।

महेंद्र कपूर और साथियों की गाई इस गणेश आरती के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

निषाद राज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री राम ने उन्हें अपने घर लौट जाने को सहमत किया और आप लक्ष्मण तथा सीता समेत गहन वन की ओर चले। राह में उन्हें अनेक वनवासी मिलते हैं जिन्हें दोनों भाइयों के रूप स्वरूप में राज चिन्ह देखकर बड़ा सोच होता है। ऐसे राजसी लक्षणों वाले कुमार तापस वेश में वन में पैदल चले जा रहे हैं, ये देख वनवासियों को ज्योतिष शास्त्र भी असत्य प्रतीत होता है। वनवासी उन्हें रास्ता दिखाने बताने को अनायास ही प्रेरित हो जाते हैं। आज्ञा चाहते हैं कि जहां तक उन्हें जाना है वहां तक पहुंचाकर उन्हें प्रणाम कर वे वापस लौट आएंगे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता की आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं। कृपा सिंधु उनसे विनय भरे वचन बोलकर उन्हें लौटा देते हैं, किंतु वन में यहां वहां बसे गांवों और पूर्वों के बालक, वृद्ध, नर नारी, किशोर किशोरियां बार बार उनके दर्शनों को दौड़ते आते हैं और नाना प्रकार से उनकी सहायता कर अपना प्रेम दर्शाते थकते नहीं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, स्वर कविता कृष्णमूर्ति के थे और संगीत सतीश भाटिया का। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन।
1: महाप्रभु वल्लभाचार्य का कथन प्रमाण है, न जगत स्वप्नवत और न जीवन मात्र एक स्वप्न है, स्वप्नवत है मैं और मेरे द्वारा रचित गोरख धंधा जिसे हम संसार कहते हैं। हम तीन भ्रमों के मध्य जीवन नैया को चलाते रहते हैं, देश काल और पृथक तत्व के भ्रम हमें भ्रमित करते रहते हैं। दूर पास, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, आगे पीछे की बातें हम देश के भ्रमवेश करते रहते हैं, क्योंकि देश अथवा दिशा अनंत है। इसी प्रकार देर सवेर, कल परसों आदि की अवधारणा काल के भ्रम की द्योतिका है, क्योंकि काल अनादि और अनंत है। अहंकार यानी मैं एक पृथक सत्ता हूं, यह आत्मगत अथवा पृथक तत्व का भ्रम है जो इन तीन भ्रमों पर विजय प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन एक वास्तविकता है, वो भ्रमों के आवरणों द्वारा प्रच्छन्न रहता है और दूरस्त अथवा मिथ्या प्रतीत होता है। वास्तविकता की अनुभूति के लिए भ्रम निवृत्ति की स्थिति अनिवार्य है। क्या मनुष्य परमात्मा या प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है? मनुष्य ही एक ऐसा जीवधारी है जो अपना सिर ऊंचा और सीधा रख सकता है, अतएव उससे आशा की जाती है कि वो कोई ऐसा काम न करे जिसके कारण उसे अपना सिर नीचा करना पड़े। केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो खुलकर अपने हाथों का प्रयोग कर सकता है। अन्य प्राणी हाथों से पैरों का काम लेते हैं, मानव हाथों द्वारा अनेकानेक उपयोगी कार्य करता है। मानव के कार्य कलापों को देखकर ये सोचना स्वाभाविक है कि ये छोटा सा प्राणी इतना सामर्थ्यवान क्यों कर बन सका है। ये विश्व के प्रत्येक पदार्थ को अपने लिए उपयोगी बना लेता है। बड़े से बड़े जीवों को, शेर चीता जैसे खूंखार जानवरों को वश में कर लेता है। मात्र एक इंच के अंकुश द्वारा हाथी जैसे विशालकाय जीव को वश में रखने वाले महावत की सामर्थ्य किसे आश्चर्यचकित नहीं कर देगी। भ्रमों का निवारण करके वास्तविक स्वरूप में स्थित होना, चट्टानों और अवशेषों के रूप में प्रकृति के विकास की कहानी अंकित है, इसको पढ़ने की सामर्थ्य प्राप्त है। वे कह सकते हैं कि विकास की शत सहस्र वर्षों की प्रक्रिया के उपरांत प्रस्तुत रूप में मानव शरीर का निर्माण संभव हुआ है। उसका एक एक अंग विकास की जिन सीढ़ियों से होकर गुजरा है, इसका पूरा ब्यौरा विकास की कहानी के पृष्ठों पर अंकित है। मनुष्य ही ये परिकल्पना कर सकता है कि जीवन की मूलभूत एकता प्रकृति का एक तथ्य है। विश्व बंधुत्व एक सिद्धांत न होकर जीवन का व्यावहारिक तथ्य है जो जीवन की मूलभूत एकता को स्वीकार करता है। मनुष्यत्व का विकास करना मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है। मनुष्य का परम धर्म है जिसे हम मानव धर्म कहते हैं। इसी को लक्ष्य करके कहा जाता है, दानव होना मनुष्य की पराजय है, देवत्व की प्राप्ति उसका चमत्कार है और मानव होना उसकी विजय है। चेतना विकास के अध्येताओं ने ये निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो स्वतंत्र व्यक्तित्व लेकर जन्म लेता है। उसके जीवन का वरदान यह है कि वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्राप्त प्राणी है। उसके जीवन का अभिशाप यह है कि वो आत्म सदृश अन्य किसी को नहीं पाता है। उसकी व्यक्तिता पग पग पर संघर्ष और टकराव को उसकी नियति बना देती है। मानव स्वतंत्र इच्छानुसार आचरण करता रहे और व्यक्तिता रूपी कांटों की नोकों को दूर करके टकराव या संघर्ष से बचता रहे, ये उसके पुरुषार्थ की सफलता है। ऐसे समर्थ मनुष्य ही मानव और अवतारी पुरुष कहे जाते हैं।
0: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:45 हो रहे हैं। काव्यधारा के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए मनोज।

0: अबोध का ये काव्य पाठ।
1: सबसे पहले कुछ दोहे व्यवहार के कि हमने भी भोगे यहां, हमने भी भोगे यहां रिश्तों के तंदूर, सिकते सिकते हो गई सब कोमलता दूर। जब तक हमसे काम था, जब

लो, तो खुद जिनके किरदार में, खुद जिनके किरदार में भांति भांति के छेद।

को मित्र, और हम हैं फूल गुलाब के। गुलाब का फूल बड़ा प्रिय होता है, लेकिन उसी उम्र जिस तरह से बढ़ती है, एक दोहा अपने हम उम्र दोस्तों के लिए कि हम

और कुछ दोहे मौसम के आपको समर्पित कर रहा हूँ। कोहरा धीरे धीरे उतरने लगा है सर्दियों की सुबह। कुछ दोहे उस संदर्भ में आप देख लीजिए कि

किसकी यहाँ मजाल, किसकी यहाँ मजाल। कविता में जब से खिंची, कविता में जब से खिंची धन की नई लकीर, कविता में जब से खिंची।

और एक टपरिया फूस की। एक सच्चे कवि के पास क्या दौलत हो सकती है। एक दोहा आपको समर्पित कर रहा हूं कि एक टपरिया फूस की

और एक दोहा बचपन का कि बचपन की अठ खेलियां, बचपन की अठ खेलियां, अम्मा की फटकार, बचपन की

संसार और जीवन का एक अर्थ होता है। कहते हैं कि कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि की कस्तूरी की गंध से वन में दौड़ा फिरता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। लेकिन एक वक्त आता है कि जब उसको मालूम चल जाता है, एक दोहा शायद आप तक पहुंच पाए कि खुद में ही आने लगा,

जिसने नफरत दी मुझे। आप सभी को, मित्रों को, सभी को समर्पित है कि जिसने नफरत दी मुझे उसका भी आभार, जिसने

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है।

0: प्रातः के 7:05 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें हमारा आज का विषय है गुणों से भरपूर खीरा और ककड़ी।
1: प्रकृति ने मनुष्य के प्रादुर्भाव के पहले ही विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, फल, फूल एवं शाक पैदा कर दी। इन शाक सब्जियों में वे सारी गुणवत्ताएं मौजूद हैं जो मौसमी बीमारियों से बचाने में सक्षम हैं। फल एवं शाक ये दोनों शरीर में खनिज, लवण एवं विटामिन की संपूर्ति के लिए उत्तम आहारीय स्रोत हैं। प्राचीन काल में अरण्य प्रधान संस्कृति होने के कारण लोक जीवन में कंद और मूल यूं ही मूल रूप में सेवन किए जाते थे, किंतु समय के साथ साथ हुए सांस्कृतिक परिवर्तन एवं नगरीय विकास के साथ साथ उनसे विविध शाक और व्यंजन बनने लगे। आजकल अनेक फल भी शाक के रूप में सेवनीय हैं। ऐसे ही फलों की श्रेणी में खीरा आता है, जो हमारे जीवन में नित्य उपयोगी फल के साथ आहार में शाक एवं सलाद के रूप में सेवन किया जाता है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से खीरे में आर्द्रता, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज द्रव्य, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B1 तथा सी होते हैं। इसके बीजों में प्रोटीन तथा वसा होती है। इससे एक हल्के पीतवर्ण का तेल निकलता है। खीरा कब्ज दूर करता है, पीलिया, प्यास, ज्वर, शरीर की जलन, गर्मी के सारे दोष, चर्म रोग में भी लाभदायक है खीरा। खीरा भारी और पेट में गैस भी उत्पन्न करता है। खीरे का रस पथरी में लाभदायक होता है। इसका रस 250 ग्राम दिन में 3 बार सेवन करें। ये पेशाब में जलन, रुकावट और मधुमेह में भी लाभदायक है। घुटनों का दर्द दूर करने के लिए खीरा और एक पोतिया लहसुन का सेवन करें। खीरे के रस को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच शहद और आधा नींबू मिलाएं। गर्मी के इस मौसम में खीरे का सेवन लाभप्रद है। अब हम बात करेंगे शीतल और पाचक ककड़ी की। ककड़ी गर्मी के मौसम की उत्तम सब्जी ही नहीं बल्कि ये पित्त शामक औषधि भी है। ककड़ी शीतल, रुचिवर्धक और पाचक होती है। भारत में सर्वत्र उपलब्ध होने वाली ककड़ी गर्मी के मौसम की फसल है। अपने शीतल गुण के कारण ही ककड़ी मानसिक रोगों में भी हितकारी है। ककड़ी के बीज मस्तिष्क की गर्मी को भी दूर करते हैं, जिससे मस्तिष्क की गर्मी से उत्पन्न बौखलाहट, चिड़चिड़ापन, उन्माद आदि मानसिक विकार दूर होते हैं। ककड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उस पर शक्कर छिड़क कर सेवन करने से शरीर की गर्मी दूर होती है। ग्रीष्म ऋतु में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ककड़ी के बीजों को ठंडाई के साथ पीसकर पीते हैं। इससे शरीर को तरावट मिलती है, थकान दूर होती है और शक्ति भी प्राप्त होती है। यदि किसी को मूत्र में जलन होती हो या रुक रुक कर मूत्र होता हो, ऐसे में 100 ग्राम ककड़ी का रस 2 ग्राम धनिया के चूर्ण में मिलाकर दिन में 3 बार पिएं, लाभ होगा। ककड़ी और नींबू के रस में थोड़ा सा भुने हुए जीरे का चूर्ण और शक्कर मिलाकर पीने से पेशाब की जलन भी दूर होती है। बार बार पथरी होने की शिकायत हो तो ककड़ी का सेवन अवश्य करें। ककड़ी त्वचा और चेहरे का सौंदर्य बढ़ाने में भी मददगार साबित होती है। इसके प्रयोग से कील, मुहासे, दाग, झुर्रियां आदि भी दूर हो जाती हैं और चेहरे का रंग भी निखर उठता है। एक उपाय करके देखें। ककड़ी के रस में गुलाब जल और नींबू का रस मिलाकर रुई में भिगोकर चेहरे, गले तथा हाथों पर लगाएं। 15-20 मिनट के बाद पानी से अच्छी तरह धो लें। ऐसा कुछ दिनों तक करने से त्वचा में निखार आ जाएगा। ककड़ी में सिलिकॉन और सल्फर अधिक मात्रा में मिलते हैं, जो बालों को बढ़ाते हैं। ककड़ी में पोटेशियम तत्व बहुत मिलता है। ककड़ी का रस उच्च तथा निम्न दोनों ही रक्तचाप में पीना लाभदायक है। ककड़ी के सेवन से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। मौसम में उपलब्ध इन शीतल, पाचक, खीरा तथा ककड़ी का सेवन करें और स्वस्थ रहें।
0: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 7:10 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए खेती की बातें।
2: किसान भाइयों, राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूँ प्रमोद

0: सिंह। किसान भाइयों, आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी और सरल तरीके से उपलब्ध कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आप समझ गए होंगे हमारा आज का जो विषय है वो है फार्मर रजिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री है क्या। तो किसान भाइयों, वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सरकार भी किसानों तक योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के लिए विभिन्न डिजिटल पहल कर रही है। इन्हीं प्रयासों में एक महत्वपूर्ण पहल है फार्मर रजिस्ट्री। फार्मर रजिस्ट्री एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था है जिसमें किसानों का प्रमाणित और अद्यतन डाटाबेस तैयार किया जाता है। इस रजिस्ट्री में किसान की पहचान, भूमि संबंधी विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी सुरक्षित रूप से दर्ज की जाती है। इसका उद्देश्य प्रत्येक किसान की एक विशिष्ट पहचान बनाना है ताकि सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सके। किसान भाइयों, अक्सर देखा जाता है कि विभिन्न योजनाओं के लिए बार बार दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं या लाभार्थियों की पहचान में कठिनाई आती है। फार्मर रजिस्ट्री समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। एक बार किसान का पंजीकरण हो जाने के बाद उसकी जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध रहती है, जिससे सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी हो जाती है। बात करते हैं फार्मर रजिस्ट्री का क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहला और प्रमुख लाभ तो यही है कि सरकारी योजनाओं का जो लक्षित लाभ है वो हमें मिल जाता है। जब किसानों का सही और प्रमाणित रिकॉर्ड उपलब्ध होगा तब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, कृषि अनुदान, बीज और उर्वरक सहायता जैसी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। दूसरा लाभ यह है कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही है। डिजिटल रिकॉर्ड होने से लाभार्थियों की पहचान स्पष्ट रहती है और गलत या फर्जी दावों की संभावना कम हो जाती है। इससे योजनाओं का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचाने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। इसमें समय और श्रम की बचत होती है। किसानों को बार बार अलग अलग कार्यालयों में जाकर एक जैसी जानकारी जमा करने की आवश्यकता कम हो जाती है और उनका जो डिजिटल डाटा है वो उपलब्ध होने से कई प्रक्रियाएं सरल और तेज हो जाती हैं। किसान भाइयों, फार्मर रजिस्ट्री का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि नीति निर्माण में इससे सहायता मिलती है। सरकार को ये जानकारी मिलती है कि किसी क्षेत्र में कितने किसान हैं, उनके पास कितनी भूमि है और वे कौन कौन सी फसलें उगाते हैं। इससे कृषि विकास से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम अधिक प्रभावी ढंग से तैयार किए जा सकते हैं। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या अन्य संकट की स्थिति में भी फार्मर रजिस्ट्री बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। पंजीकृत किसानों का विवरण उपलब्ध होने से राहत और सहायता राशि के विवरण में तेजी और पारदर्शिता लाई जा सकती है। प्रश्न उठता है कि किसान फार्मर रजिस्ट्री में अपना पंजीकरण कैसे कराएं? तो इसके लिए राज्य सरकारों और संबंधित विभागों के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। सामान्यतः किसान को आधार संख्या, मोबाइल नंबर और भूमि अभिलेखों से संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी होती है। कई स्थानों पर कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC, जनसेवा केंद्र, कृषि विभाग के कार्यालय या विशेष शिविरों के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। किसान भाइयों, पंजीकरण के समय किसानों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधार, मोबाइल नंबर और भूमि रिकॉर्ड की जानकारी सही और अद्यतन है। गलत जानकारी दर्ज होने पर भविष्य में योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है, इसलिए जो भी जानकारी दें वो सही सही दें। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि फार्मर रजिस्ट्री केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि कृषि क्षेत्र में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है तो इसमें आप अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। ये न केवल आपकी पहचान को प्रमाणित करेगा बल्कि भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध होगा। किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेतीबाड़ी से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, राम राम।
1: ये थी खेती की बातें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: प्रातः के 7:15 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। चर्चा का विषय है, यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 9:30 पर। शाम 7:32 पर कानून की बात हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत के अंतर्गत शाम 7:45 पर सुनिएगा भाई निर्मल सिंह खालसा की गाई शबद। विविध क्रम में शाम 6:45 पर आप सुनेंगे विश्व नेत्रदान दिवस पर आई इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के उपाध्यक्ष सीएल गुप्ता से प्रमोद सिंह की बातचीत। शाम 6:05 पर डॉक्टर फूलचंद से सुवेंद्र सिंह की बातचीत का विषय रहेगा समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन द्वारा बाजार आधारित उर्वरकों जैसे यूरिया डीएपी के उपयोग में कमी। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाम 5 जानकारी आपको दी जाएगी अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना और मेगा क्लस्टर योजना के बारे में। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत अपराहन 1:45 पर सुनिएगा विविध कलाकारों की आवाज में राजस्थानी लोकगीत। लोक संगीत के एक अन्य कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत प्रातः 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे ब्रह्मदेव आर्य की गाई रागिणी। घर संसार कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे भेंटवार्ता जिसका विषय रहेगा लू लगने के कारण और उपचार। डॉक्टर पूनम सोनी से बात करेंगी अंजना टॉक। दोपहर 12:05 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुन सकते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर राग पंचम से गारा। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे पूर्वाहन 11:30 पर। बात आसपास की, यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा प्रातः 9:50 पर। जिले की हलचल हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे प्रातः 9:15 पर। ज्ञान मनोरंजन और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ की सजीव प्रस्तुति होगी प्रातः 7:31 पर। श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 यानी 954 kHz पर। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आत्मविकास, अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे किए 12 वर्ष। प्रधानमंत्री ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्रालय ने सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को दी मंजूरी। 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर होगी स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय में की नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कल 12 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि यह उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के इसी पंथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई प्रमुख लोगों ने बधाई दी। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने कहा कि के कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
3: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जय प्रकाश शिवहरे ने कल लखनऊ में संवाददाता

0: बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की इस पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश में प्रस्तावित सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के प्रगति की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोन में प्रस्तावित केंद्रों की संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: एक अन्य बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए कल लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को प्रस्तावित नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व समाजवादी चिंतक स्वर्गीय गौरी शंकर राय की आज 102वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर बलिया जिले के करनई स्थित गौरी शंकर राय कन्या महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे किए 12 वर्ष। प्रधानमंत्री ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्रालय ने सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को दी मंजूरी। 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर होगी स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय में की नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया

0: साथ साथ।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो साथी राजवीर और अब शुरू हो चुका है आपका फेवरेट प्रोग्राम सूरज के साथ साथ। बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आप सभी श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, सिर्फ एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब क्या दिखता है? सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। हम और आप तो कुछ सेकंड में अपनी आंखें खोलकर इस खूबसूरत दुनिया को फिर से देख सकते हैं, लेकिन हमारे बीच कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी जिंदगी में ये अंधेरा कभी खत्म होने वाला नहीं है। श्रोताओं, आज विश्व नेत्रदान दिवस है जो हर साल 10 जून को मनाया जाता है ताकि दूसरों की अंधेरी दुनिया को रोशन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम किसी की बुझी हुई जिंदगी में चिराग जला सकते हैं। चंद पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जाते जाते भी दुनिया से एक फर्ज निभा सकते हैं हम, जाते जाते भी दुनिया से एक फर्ज निभा सकते हैं हम, किसी की अंधेरी दुनिया में उजाला ला सकते हैं हम। ये आंखें तो एक दिन मिट्टी में मिलकर हो जाएंगी मिट्टी, पर नेत्रदान करके किसी की दुनिया को चमका सकते हैं हम। जी हाँ श्रोताओं, इस दुनिया में लाखों ऐसे दृष्टिहीन भाई बहन हैं जो सिर्फ एक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की वजह से इस खूबसूरत दुनिया को देखने से महरूम हैं। भगवान ने हमें जो ये अनमोल आँखें दी हैं, ये हमारे जीवन के बाद भी किसी की अंधेरी दुनिया को रोशन कर सकती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से शरीर का अनादर होता है। वे लोग ये क्यों नहीं सोचते कि किसी के जीवन में रोशनी देना सबसे पुण्य काम है? क्यों नहीं सोचते कि आपके जाने के बाद भी आपकी आंखें इस हसीन दुनिया को देखती रहेंगी, कभी किसी बच्चे की मुस्कान बनकर तो कभी किसी बुजुर्ग की लाठी बनकर? इस एहसास को शब्दों में पिरोने का एक छोटा सा प्रयास इस शायरी के माध्यम से करना चाहूँगा कि अपनी आंखों को यूं ही खाक में मिलाया ना करें, कि अपनी आंखों को यूं ही खाक में मिलाया ना करो, किसी की जिंदगी के अंधेरे को यूं बढ़ाया न करो, दे जाओ किसी को रोशनी अपनी विदाई के बाद भी, इंसानियत का इससे बड़ा मजहब कोई बनाया न करो। तो साथियों, आज के इस खास दिन पर आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें। आज ही अपने नजदीकी आई बैंक में जाएं या फिर ऑनलाइन नेत्रदान का संकल्प पत्र भरें। अपने परिवार से भी इस बारे में बात करें, क्योंकि आपका एक फैसला किसी दृष्टिहीन की जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बन सकता है। अंत में यही कहूंगा, जिंदा रहें तो दूसरों के काम आए हम, जाते जाते भी किसी की आंखों के ख्वाब बन जाएं हम। तो श्रोताओं, सिखाते रहिए, रोशनी फैलाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। और जब सुबह सुबह सूरज की पहली किरण आपके चेहरे को छूती है तो मन में एक नई उमंग जगती है। और इसी उमंग को सेहत में बदलने के लिए किसी ने क्या खूब कहा है, शरीर और मन को जो मिला दे वही तो योग है, जीवन के हर मर्ज को जो मिटा दे वही तो योग है। मत ढूंढो सुकून दुनिया के इस शोर शराबे में, जो खुद से खुद की पहचान

0: दे, वही तो योग है। जी हाँ श्रोताओं, योग सिर्फ कसरत नहीं है बल्कि ये जीने की खूबसूरत कला है। श्रोताओं, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई बिजी है, लेकिन फिर भी हमारे पास सबके लिए वक्त है। ऑफिस के लिए वक्त है, सोशल मीडिया पर रील बनाने या फिर स्क्रीन पर रील स्क्रॉल करने के लिए वक्त है, दोस्तों के साथ घूमने या गप्पे मारने के लिए वक्त है, लेकिन अगर वक्त नहीं है तो खुद के लिए। हमें ये तो याद रहता है कि हमें अपनी गाड़ी की सर्विस कब करानी है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि हमारे इस अनमोल शरीर को भी सर्विस की ज़रूरत होती है, और नतीजा क्या होता है? तनाव, थकान और क्या बीमारियाँ। लेकिन फिर भी घबराइए मत, क्योंकि आयुर्वेद और हमारे वेदों ने हमें ऐसा अनमोल तोहफा दिया है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट है, और वो है योग। तभी तो कहा गया है, रोग मुक्त जीवन जीना ही असली कमाल है, योग करना हर इंसान का पहला अधिकार है। दवाइयों के डिब्बे को दूर फेंक कर तो देखो, योग से ही छुपा हर बीमारी का इलाज है। जी हाँ श्रोताओं, योग सिर्फ वजन कम करने या बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अशांत मन को शांत भी करता है। योग हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। जब आपका मन शांत होगा तो आपके फैसले भी सही होंगे, और जब फैसले सही होंगे तो ज़िंदगी अपने आप सही हो जाएगी। साथियों, ऋषियों मुनियों की इस अनमोल विधा को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। भारत से शुरू हुआ ये सफ़र आज वैश्विक आंदोलन बन चुका है। तो श्रोताओं, फिर हम क्यों पीछे रहें? तो चलिए, अब आखिरी पंक्तियाँ आपके पूरे हफ्ते को ऊर्जा भरने के लिए। थकना नहीं है तुमको, अभी आगे बढ़ना है, योग की शक्ति से हर बीमारी से लड़ना है। चलो आज मिलकर ये कसम खाएं हम सब, करें योग रहे निरोग के नारे को सच करना है। तो श्रोताओं, अपना ख्याल रखिए, योग करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बातें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। चलिए श्रोताओं, अब बात करते हैं एक ऐसी गंभीर समस्या पर जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ी है। आज हमारी धरती माता प्यासी है, हम उसकी छाती को चीर कर बूंद बूंद पानी तो निकाल रहे हैं, लेकिन उसे वापिस कुछ नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए आज हमने आपसे चर्चा का विषय चुना है, सूख रही धरती की कोख, जल दोहन पर नहीं कोई रोक। श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कुएं, नदियां और बोरवेल सब पूरी तरह से सूख जाएं तो हमारा क्या होगा? खैर, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं क्या होगा। साथियों, सदियों से हमारी इस धरती माँ ने अपनी कोख में हमारे लिए मीठे पानी का अमृत सहेज कर रखा था, लेकिन हमने क्या किया? अपनी जरूरी और गैर जरूरी जरूरतों के लिए उस कोख को खाली करना शुरू कर दिया। हमारे तमाम श्रोता साथी और अन्य लोग भी ये सोच रहे होंगे कि हमारे नल में तो पानी आ रहा है, नदियों और तालाबों में भी पानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़मीन के नीचे की असलियत क्या है? ज़मीन के भीतर जो पानी है उसकी मात्रा भी सीमित है। आप देख रहे होंगे कि पानी का स्तर लगातार गिर रहा है, और पानी की गुणवत्ता भी। हमारे दादा दादी बताते थे कि पहले हमारे यहाँ 30 से 35 फीट पर पीने का पानी निकल आता था, लेकिन अब वही पानी 100 से 125 फीट पर जाकर मिलता है, लेकिन वो भी उस गुणवत्ता का नहीं जो उस वक्त हुआ करता था। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश के 21 बड़े शहरों में भूजल का स्तर लगभग शून्य के करीब पहुंचने वाला है, और वजह है बेवजह जल दोहन। अब सवाल ये उठता है कि इस जल दोहन पर रोक क्यों नहीं है? आखिर कौन लगाए रोक? अगर सरकार इस पर कानून बना दे तो दुनिया भर का हंगामा होगा कि अब पीने का पानी भी नसीब नहीं। लेकिन श्रोताओं, इस पर कानून बनाने की नहीं, बल्कि हमें खुद समझना होगा कि पानी का संरक्षण करना है।

तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकती हैं। हमें अब समझना होगा कि पानी की बर्बादी मतलब हमारे भविष्य, हमारी भावी पीढ़ियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि धरती की कोख सूनी हो रही है और इंसान तरक्की के नशे में सो रहा है। श्रोताओं, हमारा मकसद किसी को डराना नहीं बल्कि अपनों और सबको जगाना है और समाधान की राह दिखाना है। अगर आज नहीं संभले तो कल बंजर होगी ये जमीन, पानी के बिना तड़पेगी जिंदगी, खो जाएगा हर पल हसीन। श्रोताओं, अगर समस्या हमने खड़ी की है तो समाधान भी हमें ही खोजना होगा, और समाधान ये है कि हमें पानी की बर्बादी को रोकना है। छत का पानी जमीन में जाएगा तभी तो हमारा कल मुस्कुराएगा। जल संचयन है सबसे बड़ा कर्म, पानी बचाना है हम सबका धर्म। तो श्रोताओं, सजग बनिए, जिम्मेदार बनिए, पानी बचाइए और इस धारा को सहेजिए। और अब सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, आज है 10 जून और ये तारीख भारतीय और विश्व के इतिहास में बड़ा महत्व रखती है। इस तिथि को राजनीति से लेकर खेल जगत तक कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बने हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तिथि से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर। 10 जून सन 1246 को मुगल शासक

नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था। आज की तिथि को सन 1786 को चीन के सिजुआन प्रांत में भूकंप के कारण दादू नदी पर बना प्राकृतिक बांध टूट गया था, जिसके कारण बाढ़ से लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। सन 1972 में मुंबई के मड़गांव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का जलावतरण हुआ था। आज की तिथि को सन 2005 में भारत और श्रीलंका में शिक्षा और सामुदायिक विकास से संबंधित दो समझौते पर सहमति बनी थी। 10 जून सन 2008 को 54वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था। 10 जून 1986 को भारतीय क्रिकेट टीम ने कपिल देव की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर अपना पहला ऐतिहासिक टेस्ट मैच जीता था। इस मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। और लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतकर आज यानी 10 जून 2026 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पंडित नेहरू जी के लगातार 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। और अब बात कर लेते हैं आज की तिथि को जन्मे कुछ प्रसिद्ध लोगों के बारे में। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम राज्य के पूर्व एवं प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म आज की तिथि को सन 1890 में हुआ था। गोपीनाथ बोरदोलोई के प्रयासों से ही आज असम भारत का अभिन्न अंग है। असम के लोग उन्हें शेरे असम के नाम से याद करते हैं। दामोदर मेनन को भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। दामोदर मेनन का जन्म भी 10 जून को ही सन 1906 में हुआ था। उस समय में उनकी गिनती देश के बेहतरीन पत्रकारों में होती थी। उन्होंने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अपने समय के जाने माने कवि शिवदीन राम जोशी का जन्म भी आज की तिथि को सन 1921 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक MS गोपाल कृष्णन की भी आज जन्मतिथि है। पद्म भूषण और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित गोपाल कृष्णन ने 7 दशक तक वायलिन के सुरों से हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के प्रेमियों को बांधे रखा था। भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक राहुल बजाज का जन्म भी 10 जून को ही सन 1938 में हुआ था। वे बजाज समूह के अध्यक्ष थे, जिसे भारत और विदेशों में विनिर्मित उत्पादों और वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए जाना जाता है। आज की तिथि को सन 1888 में जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी बलराज भल्ला का। और आज पुण्यतिथि है हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जीवन की। वैसे तो अभिनेता जीवन ने अधिकांश फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई थी, लेकिन देवऋषि नारद के रूप में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये तो हुई बात तिथि विशेष की, और अब रुख कर लेते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों की ओर। हिंदुस्तान के हवाले से ये खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले बने हैं नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान से अगली खबर है, ईरान से समझौते में बस 1-2 दिन का वक्त, ये कहना है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। पीओके में बवाल बढ़ा, अब तक 30 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। अमर उजाला से अगली खबर है, 57,000 गांव होंगे डिजिटल। उत्तर प्रदेश के सभी 57,691 ग्राम पंचायतें अब डिजिटल होंगी। गांव तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। पीओके में निर्दोषों की हत्या, पाकिस्तान की बर्बरता, मानवाधिकार उल्लंघन पर जवाबदेह ठहराए दुनिया, ये खबर है अमर उजाला की। भारत ने कहा, अपनी नाकामियां छिपाने के लिए दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है पाकिस्तान। अमर उजाला से अगली खबर है, 3 तलाक और एसिड पीड़िताओं को सरकारी घर और आयुष्मान कार्ड। पीड़िताओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगा मकान। अमर उजाला से ही ये अगली खबर है, जोजिला सुरंग की अंतिम बाधा टूटी। हर मौसम में लद्दाख का सफर और करीब, ऐतिहासिक सफलता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया आखिरी ब्लास्ट, दोनों सिरे जुड़े।

खबर है अमर उजाला के हवाले से। दैनिक जागरण लिखता है ट्रंप को झटका, H-1B वीजा पर $1,00,000 शुल्क रद्द। बोस्टन की संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन की नीति को अवैध करार दिया। दैनिक जागरण से ही अगली खबर है चुने हुए पीएम के रूप में मोदी ने नेहरू का कालखंड किया पार, 4,399 दिन के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक बने हुए हैं प्रधानमंत्री। पर्यटन के मानचित्र पर चमकेगी महात्मा विदुर की तपोस्थली, बनेगा विधवा आश्रम, टूरिस्ट फैसिलिटी, हॉल एवं पार्किंग का होगा निर्माण। महात्मा विदुर प्रसंग पार्क में होगी महाभारत की कथा। और बिजनौर में पारा पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस के पार, 25 जून तक मानसून के आसार, आग बरसाता रहा सूरज, पूर्वा हवा के झोंके भी हो रहे हैं बेअसर। तो ये थी आज के अखबारों की कुछ खास सुर्खियां, और अब चलते चलते ये गीत आप सभी को नजर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर। प्रातः के 8 बज रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एकदिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25

0: श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के

0: सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 2,300,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 1,600,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
4: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
3: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है

0: 20 मई 2014 को वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 13 मई 1952 को एक मुंतखब वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर रहते हुए खिदमात अंजाम दी। पंडित नेहरू की एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात की मुद्दत 4398 दिन रही। 26 मई 2014 से आज यानी 10 जून 2026 तक वजीर आजम मोदी की लगातार मुद्दत कार 4399 दिन हो गई है। इस तरह वो भारत की तारीख में एक ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो अपने ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर भारत में जहां 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है और जहां जबान, सकाफत, मजहब और जोग्राफिये में गैर मामूली तनवु पाया जाता है, हुक्मरानी के पैमाने और पेचीदगी पर नजर डाली जाए तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ये एक काबिल जिक्र हुसूलियाबी है। एक ऐसे वक्त जब बहुत से मुल्कों में सियासी उथल पुथल, हुकूमत में बार बार तब्दीलियां और सियासी गैर यकीनी पाई जाती है, भारत में कयादत और हुक्मरानी में तसलसल पाया जाता है। दुनिया की इस सबसे बड़ी जमहूरियत में आवाम की तरफ से लगातार 3 बार हिमायत दिए जाने से इस पर आवाम के एतमाद का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आजादाना तौर पर कराए गए आलमी जायजों में वजीर आजम मोदी को दुनिया के मकबूल तरीन जमहूरी रहनुमाओं में लगातार शुमार किया जाता रहा है। उन्हें 30 से ज्यादा मुल्कों के सबसे ज्यादा शहरी एजाजात से भी नवाजा गया है। वजीर आजम मोदी का एक मामूली समाजी और इकतसादी पसमंजर से उठकर किसी मुंतखब आला तरीन ओहदे पर फाइज हो जाना, जबकि खानदानी तौर पर उनका कोई सियासी पसमंजर भी नहीं है, किसी करिश्मे से कम नहीं, और ये भारत जैसी किसी बड़ी जमहूरियत में ही मुमकिन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुद्दत कार के दौरान तकरीबन 25 करोड़ भारतीय अफराद गुर्बत के दायरे से बाहर निकले और लोगों ने डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे की तौसी, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की, फलाही खिदमात में बेहतरी और एक वसी बुनियाद वाली समाजी और इकतसादी तरक्की का नजारा किया। इस अरसे में भारत ने दुनिया की तेज तरीन तरक्की वाली बड़ी मईशत के तौर पर इस्तेहकाम हासिल किया, सरकर्दा मईशतों के साथ बड़े तजारती समझौते किए और वो आलमी मामलात पर मजीद मुअसर आवाज बनकर उभरा, जिसमें तरक्की, टेक्नोलॉजी, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और आलमी जुनूब की तरजीहात भी शामिल हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: आलमी रहनुमाओं ने वजीर आजम मोदी को भारत का सबसे तवील अरसे तक एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने वजीर आजम की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी, आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत और सबकी शमूलियत वाले और इक्तसादी तौर पर फाल भारत की उनकी दूर अंदेशी को खिराज तहसीन पेश किया। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके ने एक खत में कहा है कि ये हुसूलियाबी न सिर्फ जनाब मोदी के कई साल तक ओहदे पर रहने का नतीजा है, बल्कि उस भरोसे और एतमाद का भी इजहार है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के अवाम ने उनकी कयादत के तई जाहिर किया है। उन्होंने भारत की काबिले जिक्र इक्तिसादी और समाजी तब्दीली का भी खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि वजीर आजम मोदी की दूरअंदेशी से बहुत से लोगों को भारत की सरहदों के पार तहरीक हासिल हुई है, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है। पपुआ न्यू गिनी के वजीर आजम जेम्स मरापे ने एक जाती वीडियो पैगाम में वजीर आजम मोदी को एक मिसाली शख्सियत और कयादत की मिसाली शख्सियत करार दिया है। उन्होंने 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत के दायरे से बाहर निकालकर उन्हें अच्छी जिंदगी बख्शे जाने को एक हैरत अंगेज कारनामा करार दिया। वजीर आजम मरापे ने पपुआ न्यू गिनी की तरफ से गर्मजोशी और दोस्ती का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि दोतरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। इसके अलावा ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में भारत आलमी मामलात में एक कायदाना आवाज बनकर उभरा है। उन्होंने वजीर आजम मोदी के एक मामूली पस मंजर से शुरू होने वाले सफर से 3 लगातार मुद्दतों तक 1 अरब 40 करोड़ लोगों के एक मुल्क की क्यादत करने को उजागर किया और गैर मुल्की पॉलिसी, इकतसादी तरक्की, बुनियादी ढांचे और समाजी और इकतसादी तरक्की के मैदानों में भारत की इन अहम हुसूलियाबियों का जिक्र किया। سابق صدر

0: भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने किसानों खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों के शोभा अहम शोभों में पिछले साल में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसके मरकज में है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा नए एंटरप्रेन्योर ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज हासिल किए हैं।

0: नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इन्हेसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून एंटरप्रेन्योर ईशा पटेल ने घर पर खाने बनाने से एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर को शेयर किया। 60 लाख से ज्यादा नौजवान ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1.6 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। सकलैंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले अमरीकी फौज के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को ओमान के साहिल से कुछ दूर गर्क करने के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी अफसरान ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर ईरान के एक ड्रोन ने गिराया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदराबास और किशम जजीरे में धमाके की आवाजें सुनी गईं। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के रंगिरी डम्बुला में बैन अलाक्वामी स्टेडियम में तीन मुल्कों की ए टीमों की सीरीज के इफ्तिताही मैच में भारत ने श्रीलंका की टीम को 8 रन से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईनी के साथ हैं फहीम अहमद।
0: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब की शह सुर्खी है, मोदी की क्यादत में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल। पार्टी सदर नितिन नवीन ने कहा, भारत पहले मायूसी में डूबा हुआ था, आज एतमाद से भरा हुआ है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के हवाले से सुर्खी लगाई है, हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल एतमाद, तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए वक्फ। राज्यसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश से नामजदगी मंसूख, कांग्रेस का अदालत जाने का फैसला। इसे भी अखबार ने अहमियत दी है। अखबार इंकलाब की एक और सुर्खी है, लद्दाख में जोजिला टनल तैयार, 2 घंटे का सफर 30 मिनट में होगा मुकम्मल। अखबारात ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान को नुमाया किया है कि नीट इम्तिहान पूरी शफाफियत और सिक्योरिटी के साथ कराने के लिए की गई वसी तैयारियां।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत की सताइश की है। वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबियों और उनकी हुकूमत के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। मरकज ने देही तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकसित भारत जी राम जी के तहत नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले ओमान के साहिल से कुछ दूर अमरीकी फौज के अपाचे हेलीकॉप्टर को गर्क किए जाने के जवाब में किए गए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:45 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स, और कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म लैला मजनू से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। साहिर लुधियानवी का एक गीत है और संगीत है मदन मोहन का। श्रोताओं, कुछ गाने सिर्फ संगीत नहीं होते, वो यादों का एक खूबसूरत कारवां होते हैं। एक ऐसा एहसास जो जब कानों में घुलता है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वक्त वहीं पर ठहर जाता है। आज का हमारा ये नगमा भी कुछ ऐसा ही है। जब रेशमी एहसासों के साथ चांदी की पाजेब की वो खनक फिजाओं में गूंजती है तो रूह मचल उठती है और दिल बस यही पुकार उठता है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म लैला मजनू का ये गीत, जिसे लिखा साहिर लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया मदन मोहन ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, मोहब्बत जब इबादत बन जाए तो महफिल सजदा करती है। आज का ये नगमा इश्क की उसी दीवानगी और सूफियाना रंग में रंगा हुआ है जब आशिक अपनी महबूबा की गलियों में अपना दिल हार बैठता है, तब दिल बस यही गुनगुनाता है।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को फिल्म हीर रांझा में। कैफ़े आज़मी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया मदन मोहन ने। श्रोताओं, अगले गीत से पहले यहाँ पर ले लेते हैं एक कॉमर्शियल ब्रेक।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, दुनिया में सबसे खूबसूरत प्यार के दो मीठे बोल हैं जो चिनाब के किनारे सोनी महिवाल की पाकीज़ा दास्तां को बयां करते हैं। शब्बीर कुमार और आशा भोसले की सुरीली आवाज़ के साथ दिल की गहराइयों से निकले इस रूहानी नगमे का आनंद लीजिएगा।

शब्बीर कुमार की, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था और संगीत अनु मलिक का था। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। अगले गीत से पहले ये जरूरी संदेश।

0: चंदन का एहसास।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे।
1: पिन दे।
6: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत के कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में। श्रोताओं, कहते हैं कि इश्क करना आज इतना आसान है, दुनिया के तानों को सहना उतना ही मुश्किल। इतिहास गवाह है, जब जब किसी ने सच्ची मोहब्बत की है, इस बेरहम जमाने ने हमेशा उसका मजाक उड़ाया है। लेकिन सच्चा प्यार करने वाले कब किसकी परवाह करते हैं। आज का हमारा ये नगमा मोहब्बत की उसी बेबसी, सच्चाई और इतिहास की सबसे बड़ी प्रेम कहानियों में से एक शिरीन फरहाद के पन्नों से है। साल 1956 की फिल्म शिरीन फरहाद से अमर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की जादुई और दर्द भरी आवाज़ में डूबा ये गीत सीधे ज़माने के नाम एक पैगाम है।

शिरीन फरहाद। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को। तनवीर नकवी का ये गीत था और संगीत एस मोहिंदर का। शतों इश्क का मुकम्मल होना एक खूबसूरत हकीकत है, लेकिन इश्क का अधूरा रह जाना सदियों का इतिहास बन जाता है। पंजाब की मिट्टी से उपजी मिर्ज़ा साहिबा की ये दास्तां भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ प्यार तो बेइंतहा था लेकिन मुकद्दर में सिर्फ और सिर्फ जुदाई की तड़प लिखी थी।

श्रोताओं, नूरजहां के गाए फिल्म मिर्जा साहिबा के इस गीत के साथ ही आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की दीजिएगा अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। यह आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मथुरा और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का।
1: जनपद मथुरा के प्रभारी एवं प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न जन कल्याणकारी एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न हुई। यह बैठक वृंदावन स्थित गीता शोध संस्थान में आयोजित की गयी। बैठक में 5 जून 2026 से 21 जून 2026 तक चलने वाले समय के जन एवं जन जागरूकता अभियान के सफल संचालन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों एवं कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों योजनाओं उपलब्धियों तथा जन सामान्य के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर मंत्री संदीप सिंह ने गीता शोध संस्थान परिसर में वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि सेवा संस्कार सुशासन एवं सम्मान के मूल भाव के अनुरूप सादगी अनुशासन ईंधन बचत पर्यावरण संरक्षण तथा जन भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2026 को जनपद मथुरा में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जनपद में लगभग 6,17,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मथुरा के वन प्रभाग के प्रभागी वन अधिकारी DFO BS पटेल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों शैक्षणिक संस्थानों ग्राम पंचायतों तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से जनपद भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मथुरा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 25 प्रमुख धार्मिक कुंडों के संरक्षण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि ब्रज की पवित्रता और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। यहां धार्मिक कुंडों और तालाबों को प्रदूषण से बचाने के लिए 406 ग्राम पंचायतों के तालाबों और 25 धार्मिक कुंडों के संरक्षण का विशेष अभियान चलाया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल के अनुसार जल को दूषित होने से बचाने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मथुरा में विश्व पर्यावरण दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान दवासु परिसर में वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हुए कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और प्रभागीय वन अधिकारी DFO वेंकट श्रीकर पटेल शामिल हुए। यहां कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र ने पेल जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने आम और DFO वेंकट श्रीकर पटेल ने शहतूत का पौधा लगाया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना था। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान दवासु के कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र ने बताया कि
2: करीब 384 पौध को लगाया गया। अब हर बच्चे ने हर फैकल्टी ने अपना माँ के नाम में पौध लगाया है और आगे वाला अगले साल तक उसका देखभाल करेगा।
1: मथुरा जनपद के राया निवासी युवा नेता और सामाजिक नीतीश पाठक ने प्रयागराज में आयोजित युवा संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्हें इस आयोजन में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया जिससे उन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। युवा संसद सत्र के दौरान नीतीश पाठक ने एक संसद सदस्य की भूमिका निभाते हुए नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में उन्होंने नारी को माँ सरस्वती का स्वरूप बताया। पाठक ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण राष्ट्र की प्रगति का आधार है। मथुरा जिला न्यायालय परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विकास कुमार की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय परिसर में समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश और अन्य न्यायाधिकारी गण द्वारा जनपद न्यायालय परिसर मथुरा में वृक्षारोपण किया गया। जिला सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण की अनीता सिंह द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वृक्षों की उपयोगिता के संबंध में बताया गया तथा सभी से अपील की गई कि साफ सफाई का ध्यान रखते हुए पर्यावरण को संरक्षित रखने हेतु अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और उनका संरक्षण करें।
0: मथुरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश त्रिपाठी का।
3: जिले में इस महीने की शुरुआत जनपद वासियों को समय रहते मौसम संबंधी सटीक जानकारी उपलब्ध कराने तथा आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल के साथ हुई। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे के निर्देशन में जनपद में 5 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 34 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन स्थापित किए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि इन आधुनिक स्टेशनों के माध्यम से तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति, दिशा, वायु दाब जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां वास्तविक समय में प्राप्त की जा रही हैं। इससे मौसम की सतत निगरानी संभव हो सकेगी तथा किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा या मौसम परिवर्तन की स्थिति में प्रशासन समय रहते आवश्यक कदम उठा सकेगा। जनपद में स्थापित 5 ऑटोमेट्रिक वेदर स्टेशन तहसील सदर कुंडा लालगंज पट्टी एवं रानीगंज में संचालित हैं, जबकि 34 ऑटोमेट्रिक रेन गेज स्टेशन विभिन्न विकास खंडों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने जनसामान्य से अपील करते हुए कहा कि मौसम संबंधी अद्यतन जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करें तथा आपदा अथवा खराब मौसम की स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल अधिकारी सूचना पर भरोसा करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मौसम एवं वर्षा से संबंधित रियल टाइम डेटा उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट पर

0: कराया जा रहा है, जिससे आम जन भी सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिले में इस महीने 15 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाली योग सप्ताह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस संबंध में परियोजना निदेशक डीआरडीए दयाराम यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुमन कुशवाहा ने बताया कि दिनांक 15 जून से 21 जून तक जनपद में योग सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने योग सप्ताह कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। परियोजना निदेशक ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी योग्या अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित कराएं। तहसील, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर योग्या अभ्यास कराए जाने की समुचित व्यवस्था योगा संस्थाओं के साथ बैठक कर ली जाए, जिससे योग सप्ताह के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पुलिस लाइन में भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री, जन प्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं, समाज सेवी, व्यापारी व जनपद के अन्य गणमान्य नागरिक व पत्रकार बंधुओं का सामूहिक योग्या अभ्यास कराया जाएगा। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान में बैठे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह बात भारत सरकार के प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि ने समीक्षा बैठक के दौरान की। जनपद में संचालित केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि ने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों को मिल रहे लाभ तथा लंबित कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें, ताकि गरीब, दलित, पिछड़े एवं वंचित लोगों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका वास्तविक लाभ गांव और शहर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। बैठक के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी संतोष कुमार सिंह, संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पंचायत पहुता में इस महीने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 11वीं वाहिनी द्वारा आपदा प्रबंधन एवं बचाव को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी देना रहा। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन के उप निरीक्षक प्रभात सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी आपदा के दौरान सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए तथा जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रशासन एवं राहत एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने लोगों को प्राथमिक उपचार, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के तरीके तथा आपातकालीन सहायता नंबरों की जानकारी भी। कार्यक्रम में सीपीआर देने की प्रक्रिया का डेमो करके दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ की टीम ने आकाशीय बिजली, डूबने से बचने आदि प्रबंध आपदा से बचाव के व्यवहारिक उपायों का प्रदर्शन भी किया, जिसे ग्रामीणों ने काफी रुचि के साथ देखा और जानकारी प्राप्त की।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:25 हुए हैं। पेश है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ब्रह्मदेव आर्य की गाई रागिणी।

लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रह्मदेव आर्य की गाई रागिणी।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं।

0: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सुन रहे हैं ब्रह्मदेव आर्य की गाई रागिणी और कार्यक्रम है धरती गाती है।

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मदेव आर्य की गाई रागिणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम बात आसपास की, वाचन स्वर एवं संकलन दिव्य मकंडवाल और इशिका कौशिक का है और ये हमारा पूर्व प्रसारित कार्यक्रम है।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आसपास की में आपका स्वागत है। मैं हूँ इशिका कौशिक।
1: और मैं दिव्यम कंडवाल।
0: और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, बात आसपास की हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ स्थानीय समस्याओं व मुद्दों पर भी आपका ध्यान केंद्रित करते हैं।
1: पता है, आज सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब हो गया। एक फोन आया कि मेरा बिजली का बिल जमा नहीं है और रात को 9 बजे कनेक्शन कट जाएगा।
0: क्या बात कर रहे हो, तुमने तो पिछले हफ्ते ही जमा किया था ना?
1: वही तो, पर वो इंसान इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि उसने कहा, बस एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर 100 रुपए की अपडेट फीस जमा कर दो। मैं बस क्लिक करने ही वाला था कि मुझे शक हुआ।
0: शुक्र है तुमने नहीं किया भाई, यही तो नया तरीका है ठगी का। आजकल सभी जगह यह बहुत प्रचलित है, इसलिए कार्यक्रम बात आसपास की में हम शुरू कर रहे हैं एक विशेष साइबर क्राइम अवेयरनेस सीरीज।
1: इसलिए आज हम बात करेंगे बैंकिंग फ्रॉड की। हमारे साथ होंगे पुलिस प्रशासन विशेषज्ञ और कुछ पीड़ित।
0: आइए बात करते हैं बैंकिंग फ्रॉड से प्रभावित कुछ व्यक्तियों से।
2: आपका नाम?
3: अक्षी,
2: आपके साथ क्या घटना हुई?
3: मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार कि लोन लेने के लिए वीडियोस आती हैं कि आप हमारे यहाँ से इतने का लोन ले सकते हैं, उस पर मैंने क्लिक नहीं किया, बट वहां से उन लोगों का फिर कॉल बैक आया कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने करा ये कि उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, फिर उसके बाद उनका कॉल आता है कि आपने इतने का लोन लिया, लेकिन फिर मैंने यही बोला कि हमने तो लोन लिया ही नहीं है, आपने
2: जी
3: पैसे दिए हैं।
2: हाँ जी,
3: तो उन्होंने कहा कि आप पैसे दीजिए, और हर बार तीनों अलग अलग आईडी से पैसे उनके आए थे। के बाद हमने उनसे यही पूछा कि किस आईडी पे आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो 9-10 हजार रुपए उन्होंने दिए थे, उसके बाद उन्होंने 25-30 हजार रुपए वो मांग रहे थे। अब इतना अमाउंट हम क्यों दें? और उसके बाद उन लोगों का डेली कॉल आ रहा था, डेली ये प्रोसेस लगभग एक हफ्ता चला था। उस बीच में हुआ ये कि उन्होंने फोन हैक कर लिया था, उन्होंने डीपी से फोटो ले ली और उस फोटो की गलत फोटोज बना के उन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी थी। फिर धीरे धीरे हमारी उनसे बात हुई और हमने अपना सारा, हमारे अकाउंट्स थे वो सारे हमने बंद कर दिए, लेकिन हमने अपना फोन एक्टिव नहीं करा, हमने उन्हें पैसे ट्रांसफर नहीं करे। फिर हमने उन्हें यही बोला कि आप अगर चाहिए तो आप यहाँ आ जाइए।
2: आपका नाम?
3: मेरा नाम ज्योति है।
2: ज्योति जी, आपने किस तरह का साइबर फ्रॉड अपने साथ अनुभव किया?
3: देखिए, जैसे हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, स्क्रॉल करते हैं ना हम, तो वहाँ एड्स आते रहते हैं। तो एक ऐसी एड मेरे पास आ रहा था, तो जो एड आ रहा था उसमें ना बड़ी सुंदर सुंदर से साड़ी थी। अब मेरे को ये लगा कि जैसे हम शॉपिंग कर लेते हैं, तो मैं शॉपिंग कर लूंगी। मैंने सीधे उसमें बाय नाउ करके और वो जो है अपनी रिक्वेस्ट वहां डाल दी। उसमें मैंने ये भी किया था, एक तो ये होता है कि हम कार्ड से पेमेंट कर देते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसमें पूरा आ रहा था कैश ऑन डिलीवरी, तो जस्ट मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया और वो अपना ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया। तो एक हफ्ते बाद वो ऑर्डर मेरा आया, आने के बाद मैंने वो ऑर्डर रिसीव कराया,
2: हाँ जी,
3: मैंने जब वो ओपन किया तो उसमें जो साड़ियां निकली, आप यकीन मानो वो साड़ियां ऐसी थी कि वो आप 100 रुपए में भी नहीं लोगे। कुल खराब कपड़े हम निकाल देते हैं अपने घर से, वो वाली साड़ियां थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आ गई, हो सकता है बाय मिस्टेक आ गई हो। फिर रिटर्न की रिक्वेस्ट डाली तो वहां से उन्होंने मुझे अपना ब्लॉक कर दिया।
1: उपस्थित हैं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय, कार्यालय नजीबाबाद। सर, नजीबाबाद क्षेत्र में बैंकिंग फ्रॉड के सबसे ज्यादा मामले किस तरह के?

0: नजीबाबाद क्षेत्र में सबसे ज्यादा मामले नौकरी और वर्क फ्रॉम होम या फिर विदेश भेजने को लेकर के या फिर ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के सबसे ज्यादा मामले ये हैं।
1: सर, क्या अपराधी स्थानीय हैं या फिर बाहरी राज्यों से ऑपरेट कर रहे हैं?
0: ज्यादातर जो अपराधी हैं वे लोग दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल उसी क्षेत्र के हैं, इधर के नहीं है।
2: सर, अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो गोल्डन और में सबसे पहले वो क्या कर सकता है?
0: सबसे पहले आप 1930 पर कॉल करके अपनी सभी बैंक डिटेल्स बताकर अपने अकाउंट को होल्ड करा सकते हैं। उसके बाद आप संबंधित थाने पर जाकर, साइबर हेल्प डेस्क होती है हर थाने में, वहाँ पे जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। संबंधित जो पुलिसकर्मी होंगे वो तुरंत आपके बैंक डिटेल्स को फॉरवर्ड करेंगे और आपका जो भी अमाउंट होगा उसे होल्ड करा देंगे।
1: अगर सर कोई इस गोल्डन आवर में लेट हो गया है फिर वो क्या कर सकता है?
0: उस संबंध में भी आप जैसे ही साइबर हेल्प डेस्क पर पहुंचेंगे किसी भी थाने की, तो वो तुरंत जैसे एक खाते से दूसरे में पहुंच चुके हैं थाने या दूसरे से तीसरे में पहुंच गए हैं, तो वो उन सभी खातों को फ्रीज कर देते हैं ताकि आपका जो लीन अमाउंट है वो फ्रीज हो जाए। अगर आपके साथ कोई भी ऐसी घटना हुई है आप 1930 पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद आप साइबर हेल्प डेस्क पर जाकर के अपनी बैंक डिटेल्स लेकर के अभियोग पंजीकृत करा सकते हैं, जिसके बाद स्थानीय थाना जो भी होगा वो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।
2: सर, इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं?
0: इससे बचाव के लिए एक तो आपका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। किसी भी अनजान लिंक पर आप क्लिक ना करें, अनजान नंबर की वीडियो कॉल ना उठाएं, और जैसे कोई भी आपको कॉल कर देता है कि मैं आपका रिश्तेदार बात कर रहा हूं और आपसे वो कहेगा कि मैंने आपके खाते में गलती से पैसे डाल दिए हैं और आप मुझे इतने रुपए वापस कर दो, वो आपको कोई भी एक तरीके से फ्रॉड मैसेज भेज करके आपसे ही आपके अकाउंट से पैसे डलवा लेगा। दूसरा, आप किसी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी ऑनलाइन साइट्स हैं इनसे आप जो है खरीदारी ना करके रजिस्टर्ड ऐप से ही खरीदारी करें।
1: फाइनेंशियल लिटरेसी के विषय में आइए जानते हैं साहू जैन महाविद्यालय वाणिज्य विभाग से डॉक्टर परमिल कुमार जी से। सर, फिशिंग और विशिंग क्या है? अपराधी लोगों के लालच या डर का फायदा कैसे उठाते हैं?
3: हम बात करते हैं फिशिंग और विशिंग की, तो यहाँ फिशिंग फ्रॉड से अगर संबंधित हम देखते हैं तो ये जो एक तरह का ये फ्रॉड होता है, जो स्कैमर्स होते हैं एक तरह से भोले भाले लोगों को लूटते हैं, उनके साथ कपट करते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ जो रेप्यूटेड एंटिटीज हैं उनके तरह अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और जिसके चक्कर में हम लोग या आम आदमी फंस जाता है। कैसे? जैसे उन्होंने कोई मेल आपके पास भेजी, वो किसी कंपनी के नाम से बहुत मिलता जुलता नाम होगा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज से मिलता जुलता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप उसको ओपन करके देखते हैं तो कई बार वो लिंक आपको किसी गलत जगह ले जाता है जहां पर वो आपकी जो जरूरी सूचनाएं होती हैं वो चुरा लेता है, तो जिसके कारण वो भविष्य में आपको एक तरह से वित्तीय रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये केवल ईमेल के थ्रू नहीं, ये जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जैसे व्हाट्सएप में भी कोई ऐसा URL या कोई लिंक आ सकता है, या फेसबुक में भी आ सकता है, या इंस्टाग्राम में भी हो सकता है कि वहां पर कोई आपने विज्ञापन देखा कि ये प्रोडक्ट है भाई, जैसे सपोज करो कोई शूज है और उसने कहा है कि ये यू कैन गेट इट इन ₹299। आप देखते हैं कि प्रोडक्ट तो ₹2000 का है लगभग, लालच में आप उसको लिंक को क्लिक करते हैं जिसके कारण वो आपको बेवकूफ बनाकर आपसे 299 एक तरह से हड़प लेते हैं। तो ये तो फिशिंग होती है। जो फिशिंग और विशिंग में डिफरेंस इतना है, फिशिंग हमारी रिटर्न फॉर्म है, विशिंग में एक तरह से हमारे पास एक वॉइस आती है, आवाज आती है, जैसे आपको कोई कॉलर बात करता है आपसे कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ, या मैं इस इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ, या मैं इस कॉलेज से बात कर रहा हूँ, या मैं आपका फ्रेंड हूँ, आपका रिलेटिव हूँ, वो भी इस तरह से कपट कैसे करते हैं, तो कई बार वो वॉइस का क्लोन कर सकते हैं, जैसे आपके किसी रिश्तेदार की, आपके पेरेंट्स की, आपकी मदर फादर की वॉइस को क्लोन करके वैसे शो करते हैं कि वो किसी प्रॉब्लम में हैं और आप उनकी हेल्प करें थ्रू मनी। कई बार वो आवाज़ इतनी मिलती जुलती होती है क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टाइम है इसमें आवाज़ को क्लोन करना बहुत आसान काम हो गया, वीडियो एडिट करके बिल्कुल उसे एक फर्जी वीडियो को बिल्कुल ओरिजिनल जैसा दिखाना वो भी बहुत आसान काम हो जाता है। तो जिसके कारण दूसरा जो पक्ष है अगर उसे इसके बारे में बहुत अधिक नॉलेज नहीं है तो वो इसमें फंस जाता है और कई बार वो उसके अनुसार जो उसने पैसा मांगना चाहा या जो कोई रिक्वेस्ट की उसने कि मुझे आप 1000, 2000, 5000, 10000 जो भी ये दे दीजिए, मैं इमरजेंसी में हॉस्पिटल में हूँ, अभी ये मुझे इमरजेंसी है, मैं अभी आपको दे दूंगा, आपको लगता है तो मेरे मित्र की, मेरे रिश्तेदार की आवाज़ है, आप तुरंत बिना कुछ सोचे समझे उसको अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो मनी तो किसी और के पास चले गई, वो आपके रिश्तेदार नहीं थे। तो इस तरह से ऐसे जो फ्रॉड होते हैं उन्हें हैं विशिंग, तो ये हो सकती है आपकी किसी कॉल के थ्रू हो सकती है, और जो फिशिंग है वो ईमेल या सोशल मीडिया पर कोई लिंक यूआरएल वगैरह उस तरह से होती है।
1: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से यह बात साफ है कि जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। साइबर क्राइम का जाल बहुत बड़ा है और इससे आप तभी बच पाएंगे जब आप लगातार अपने आप को अपडेट रखेंगे।
2: सही कहा। तो श्रोताओं, सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो तो 1930 डायल करें और स्थानीय थाने में रिपोर्ट अवश्य करें।
1: तब तक के लिए मुझे दिव्यम कंडवाल
2: और इशिका कौशिक को दीजिए अनुमति।
1: कल फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम बात आसपास की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10 बज रहे हैं। लीजिए पेश है हमारे श्रोताओं के द्वारा भेजे गए फरमाइशी पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम गीत तुम्हारे। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और आज का ये कार्यक्रम लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ मैं, राजवीर। तो हमारे जो भी श्रोता साथी जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से और सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के गीत इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, पता और अपनी फरमाइश लिख करके भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9457078288। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम पर्वत से। जान निसार अख्तर का ये गीत है और इस गीत को जयदेव के संगीत निर्देशन में अपनी मधुर आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। और इस गीत को सुनने के लिए जो हमारे पास फरमाइश आई है वो आई है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा की ओर से। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से फरमाइश कर रहे हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। ये मैसेज हमें मिला है मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, वसु और विशाल मिगलानी की ओर से। ये फरमाइश हमारे पास आई है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा की। इसी गीत को सुनना चाहा है विलेज एंड पोस्ट राहु नंगली से आचार्य सत्यवीर चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान, कनिष्का भव्या, सीमा रानी, राघव चौहान और वेदांश चौहान ने। यह मैसेज हमारे पास आया है सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले। शाही मार्केट स्योहारा जनपद बिजनौर से हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात चौधरी, अदीप चौधरी और कादिर चौधरी। ये फरमाइश है संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता। मोहल्ला हलवायन कस्बा शेरकोट जनपद बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। मजनू का टीला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। इसी गीत की फरमाइश हमें कर भेजी है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने। यह मैसेज आया है फुलांग निज़ामाबाद तेलंगाना से एमए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल की ओर से। कंवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाद भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म प्रेम पर्वत का ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम पर्वत का एक गीत। गीत लिखा जानिसार अख्तर ने और इसे संगीतबद्ध किया जयदेव ने। आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म महबूबा से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आनंद बख्शी का एक गीत है और संगीत है आर डी बर्मन का। सुनना चाहा है श्री गणेश अविका आर्ट श्री रामपुर से, अशोक कुंभार अविका जीविका सानू कुंभार और अर्चना कुंभार ने। ये पत्र हमारे पास आया है जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश से नरेंद्र कुमार नेताम की ओर से। कर्नाटक स्टेट चिन्ना तिरुपति से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं प्रकाश श्यामला अश्वनी आनंद और मानवित। गांधी चौक रोपड़ से ये पत्र आया है हरदेव मेका बलविंदर ब्रक और जैतिक ब्रक और मेका ब्रक की ओर से। मेन बाज़ार नेहटोर उत्तर प्रदेश से फरमाइश कर रहे हैं एम जुल्फकार राही एम मुमताज राही एम जुनैद राही एम सबागुल अल सबागुल गुलफिशा रानी मोहम्मद अयान फरीदी और मोहम्मद कैफ फरीदी। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश ठाकुर तारनी ठाकुर सूरज ठाकुर सुजला ठाकुर ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। अस्तुपुरा जिला मऊ उत्तर प्रदेश से मजहर अली अंसारी रजिया बेगम अंसारी सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं आज़ाद अली अनवर रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान मुन्नू प्रकाश शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं नारायण भाऊ बिट्ठल राव खर्चे ललिता रानी खर्चे परी संजना खर्चे गणेश कार्तिक खर्चे ब्रोनो उषा सोरना खर्चे स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से फरमाइश की है नरेंद्र नरवाड़े ज्योति नरवाड़े आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार ने। ये पत्र हमें मिला है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा बेगम सिद्दीकी रियाज रिफाकत रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ की ओर से। बक्सर बिहार से फरमाइश कर रहे हैं शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी असलम अंसारी अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से हैं आसमा खातून अंसारी राज एच डी अंसारी मेहताब अंसारी आफ्ताब अंसारी और मेराज अंसारी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी वीपी रंजू अशोकपुरी सुशीलपुरी बीकेपुरी कैलाशपुरी अनीतापुरी ममतापुरी मेगापुरी पूजापुरी गगन कपूर गुंजन कपूर लालसा कपूर रामा मलिक कुणाल मलिक निधि मलिक हरीशपुरी सतीशपुरी राकेशपुरी विनोदपुरी पालीपुरी डीसीपुरी अरुणपुरी नेहापुरी एकतापुरी शम्मीपुरी बोडीपुरी सुनीलपुरी वीकेपुरी और आरएसपुरी। ये पत्र हमें मिला है महेरनगर उत्तराखंड उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही सरिता गवाणकर और प्रिंस एकांश गवाणकर की ओर से। बदलापुर मुंबई से हैं सिद्धांत गवाणकर और प्रणीता गवाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं शैलेश गवाणकर वैशाली गवाणकर श्वेता सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर परी। ये पत्र आया है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अलतमश खत्री रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की ओर से। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा दतरंगी से भागवत वर्मा लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से फरमाइश की है दुर्गाराम साहू ने। ये पत्र हमें मिला है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल रीता देवी शिल्परानी और आकाश कुमार की ओर से। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं मानिक राम प्रजापति जानकी प्रजापति घनश्याम हरिशंकर प्रशांत और रत्नेश प्रजापति। मनकारा मंदिर बीडिया कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से फरमाइश की है बेनी सिंह सागर पन्नीलाल सागर आशीष कुमार सागर अमर सिंह हितेश सागर उर्फ बंटी राजेश कुमार वर्मा रूबी भारती एकता भारती दिव्या भारती रचना भारती ओमवती भारती रवनक शुगुन सारांश आयांश अदिति वर्मा शिवांश और पृथ्व सिंह ने। तो पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म महबूबा का ये गीत।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। झुक गया आसमान, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। हसरत जयपुरी का ये गीत है और संगीत है शंकर जयकिशन का। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं मोहल्ला नादे हिंद नजीबाबाद से गीता रानी वर्मा, अनिता वर्मा, अमित वर्मा, नैना वर्मा, मेघा वर्मा और सुरेंद्र सिंह वर्मा। ये पत्र हमारे पास आया है डाबर तालाब लोनी से रज़ा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन और मरियम और बुशरा की ओर से। ये फरमाइश है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, ग़ुलाम साबिर राही और महराज जहाँ की। दौलत बाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी की। फरमाइश कर रहे हैं रहमानिया मोहल्ला महसूल सीतामणि बिहार से वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, तलत जहाँ नाज, फरहत जहां नाज और रिफात जहां नाज। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से हैं राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे और गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से फरमाइश की है विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद ने। यह पत्र मिला है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, वंश बत्ता और समस्त बत्ता परिवार की ओर से। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर से फरमाइश की है विमल वर्मा, नीतू वर्मा और प्राची ने। गंज डुंडवारा से मोहम्मद फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शमा परवीन शेख, अलकमर बेगम, अफसाना महजबी, मिर्ज़ा नसरीन बेगम, अरहान शेख और आलिशान शेख ने। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। ये मैसेज हमारे पास आया है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा की ओर से। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, आलिया, साइना, महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर। लिसनर्स ग्रुप मगनपुर झारखंड से फरमाइश की है अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली, बेबी निशा और घर के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमें मिली है एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्बई सिल्लोड जिला छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के की ओर से। नेहरू चौक पैठण से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। और जालना शहर से फरमाइश की है सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव ने। ये मैसेज हमारे पास आया है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों की ओर से। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर झुक गया आसमान फिल्म का ये गीत।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। एक बार मुस्कुरा दो, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं। आवाज़ किशोर कुमार की है, इंदिवर का ये गीत।

इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली और आफरीन खान। फरमाइश की है यासीन शेख चांद फारूक फूल वाले मोसा करीम ने, नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से। और नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से ही हैं अज़ीज़ भाई, मतीन भाई और अब्दुल रहमान। ये फरमाइश हमारे पास आई है ज़िला खरगोन सनावल मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई जान भाई, राजकुमार बोडाना। और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप। ये मैसेज है सरगुजा मैनपाट से रूबीना थापा, सोनम थापा, सोनिया थापा और रेशमा थापा की ओर से। जूट मिल रायगढ़ से फरमाइश कर रहे हैं डब्लू बेलदार, आदिबा बेलदार, शरफुद्दीन बेलदार और आसमा बेलदार। ये मैसेज आया है ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया की ओर से। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जिशान वारसी। ये फरमाइश है जेल रोड जालंधर से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आसमा कौर और धर्मजीत, फातिमा कौर की। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म एक बार मुस्कुरा दो से ये गीत।

प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और इनके दोस्त हैं सुरेश चौरसिया। ये मैसेज है महफूज उर्फ पटेल अंसारी, फिरदोस काकू, अब्दुल अंसारी, हुमैरा अंसारी, हिफ्जा अंसारी, जिक्रा अंसारी, हबीबा अंसारी, हलीमा अंसारी और हसन चिट्टू का। आपने हमें मैसेज किया है संगीता टाकेच साहगंज से, आगरा से। इसी गीत की फरमाइश की है दीदार रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया ज़िला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल ने। गमरिया जमशेदपुर से हैं विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। सहारनपुर से फरमाइश की है सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग ने। यह मैसेज है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया का, बागपत उत्तर प्रदेश से। उत्तम नगर दिल्ली से फरमाइश की है कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म भाभी की चूड़ियां का ये गीत।

भाभी की चूड़ियां। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। गीत नरेंद्र शर्मा का था और संगीत सुधीर फड़के का। और अब कार्यक्रम का जो अगला गीत है वो हमने लिया है फिल्म बेवफा सनम से। रानी मलिक के लिखे इस गीत को मिलिंद सागर के संगीत निर्देशन में अपनी आवाज़ दी है सोनू निगम ने। और इस गीत को सुनना चाहा है

0: बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने।
1: और आप हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, सूरज और कुशल वर्मा। आप हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और नानक चंद। जवाहरनगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। आप हैं बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और रिधान खुराना।
0: विवेक, अगला मैसेज हमारे पास कहाँ से आया है? यह है दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का। और इसी गीत को सुनना चाहा है गांव कैरों जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पौत्र गुरशबद ने। फरमाइश कर रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता हुजा। और ये मैसेज है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेगा मस्कीन का। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिधान खुराना। और ये मैसेज हमारे पास आया है जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, मनोज भ्याण फरमाइश कर रहे हैं। और ये मैसेज है रघुवंशी पूजा, ये मैसेज है गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, आराध्या खड़से, वैष्णवी खड़से, कुमारी वंदना, मराठा देवी। और फरमाइश कर रहे हैं धनोरा, धनोरा बिटाली, तहसील नांदूरा, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। तो पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर बेवफा सनम का ये गीत।

0: बेवफा सनम, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे सोनू निगम को। रानी मलिक का ये गीत था और संगीत मिलंद सागर का। और अब सुनिए सनम बेवफा फिल्म में विपिन सचदेवा और लता मंगेशकर को। सावन कुमार का ये गीत है और संगीत है महेश किशोर का। और विवेक, सुनने वाले हमारे जो श्रोता हैं वो कौन है?
1: मोहल्ला अफगानान शेरकोट से हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और मोहम्मद जैन, और इनके साथ हैं जन्नत
0: जी। अगला मैसेज कहाँ से
1: है? को सुनना चाहा है दादरी गेट भिवाणी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है गाँव खरकड़ा चौबीसी से। फरमाइश करता है गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोत और तमन्ना कांगड़ा। आप हैं रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, दवीरुल हसन, बेगम शबनर, माफ़ कीजिएगा, बेगम शबनम अनवार, नाजमा बेगना, नाजमा बेगम नाज और भावी सरिता गौतम। इसी गीत को सुनना चाहा है कांकेर संबलपुर से भागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। आप हैं गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शमा परवीन शेख, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से हैं पप्पू राजा दिलखुश, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुश दिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुश दिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुश दिल, संजीव बंटी जिंदल और इनका पूरा ही खुश दिल परिवार।
0: और ये मैसेज हमारे पास आया है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया की ओर से। नगीना से हैं अनिल विनोचा, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका अरोड़ा, सहज अरोड़ा और गीत अरोड़ा। ये मैसेज हमारे पास आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर का। मलकापुर से हैं नारायण इंगले, सोपान तायडे और आशीष मुर्रेकर। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश कर रहे हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। और ये मैसेज है मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी का। सिकंदरा राव से फरमाइश की है मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन ने। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सनम बेवफा फिल्म का ये गीत।

0: सनम बेवफा। इस फिल्म में भी आपने सुना विपिन सचदेवा और लता मंगेशकर को। सावन कुमार के इस गीत को संगीतबद्ध किया महेश किशोर ने। और अब कार्यक्रम में ये अंतिम फरमाइश, अंतिम पेशकश फिल्म कुछ कुछ होता है से। आवाज़ें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की। समीर का ये गीत है और संगीत है जतिन ललित का। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं
1: जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमे बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। इस गीत को सुनना चाहा है शेरवाली स्कूल गंज डुंडवारा से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। भुचो कैचिया बठिंडा पंजाब से हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और विद्या कुमारी। वडिंगखेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से हैं दिनेश चौहान, डांगरी से हैं बाबू राम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से हैं खुदा बख्श खलीफा।
0: और ये मैसेज हमारे पास आया है आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए और संजीव डाबे राव का। इसी गीत को सुनना चाहा है लाल माता सुदामा नगर रटलाई से, जिला झाड़ावाड़ राजस्थान से, हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी ने। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है आप सभी की पसंद पर फिल्म कुछ कुछ होता है।

उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों के गाए फिल्म कुछ कुछ होता है कि इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम गीत तुम्हारे संपन्न करने की मुझे यानी राजवीर को दीजिएगा अनुमति। और अब आगे के कार्यक्रमों के साथ स्टूडियोज में है विवेक प्रताप सिंह।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।
1: हमें तो पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था।
2: मुझे भी तो तुम दोनों से पहली नजर में प्यार हो गया था। I said, what gorgeous sexy men. साथ में गुंडे मगर ख्वाब बड़े बड़े।
3: कयामत कयामत कयामत।

कयामत। इस फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे सोनू निगम और हेमा सरदेसाई की आवाज़ में। गीतकार थे समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कांटे फिल्म का गीत सुनिधि चौहान और आनंद राज आनंद की आवाज़ में। गीत और संगीत भी आनंद राज आनंद का है।

0: कार्यक्रम चित्रपट संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नचिपापात केंद्र से।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जसविंदर नरूला और सुखविंदर सिंह की आवाज में समीर का लिखा गीत, और संगीत है संजीव दर्शन का। फिल्म का नाम है दीवाने।

मासूम। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और साधना सरगम की आवाज़ में। गीत और संगीत आनंद राज आनंद का था। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश हमने ली है फिल्म नाजायज से सोनू निगम की आवाज़ में। गीतकार हैं राहत इंदौरी और संगीत है अनु मलिक का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की।
3: जी विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना।
3: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
2: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
3: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के

0: बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ।
0: जी
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया।
0: जी
1: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की,
0: जी
1: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है।
0: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओ अब हम चर्चा करेंगे इथोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि यह समारोह होता कैसे है। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती हैं।
0: जी
1: फिर क्या होता है विमलेश जी?
0: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है, ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
1: वाह वाह जी।
0: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
0: जी
1: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं।
0: जी
1: फिर कॉफी परोसी जाती है।
0: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है।
1: जो थोड़ी हल्की होती है, ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है।
0: जी
1: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
0: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है, जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
0: जी
1: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
0: जी हाँ श्रोताओ, तो कैसी लगी इथोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
1: और अब आज का प्रश्न सुनिए। आज की ही जानकारी से तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
0: इथोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें, और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: दोनों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं।
1: ओ।
2: और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओहो।

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहां खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहां के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहां प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने,
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
2: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
2: बाय
0: बाय।
2: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली
0: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
4: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
4: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
4: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
4: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
4: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
4: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
4: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
4: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
2: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
1: तो करो ना सुनीता।
2: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 9:30 पर रिले किया जाएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय। ये कार्यक्रम आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे।

शाम 7:32 पर प्रसारित होगा हमारे लखनऊ केंद्र से कानून की बात। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अब से कुछ देर बाद 12:05 पर आप सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन।

अपराह्न 1:15 पर घर संसार कार्यक्रम में आज क्रम थारा स्वास्थ्य में आप सुनेंगे डॉक्टर पूनम सैनी, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नजीबाबाद से अंजना की बातचीत, जिसका विषय होगा लू लगने के कारण और उपचार। विविध कलाकारों के स्वर में राजस्थानी लोकगीत आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम में अपराह्न 1:45 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन में 2:30 पर। कार्यक्रम होगा संदेश.com।

मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आज जानकारी दी जाएगी। अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना और मेगा क्लस्टर योजना की शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में आज क्रम रहेगा यूथ कनेक्ट और लव स्टोरीज़।

जिसका विषय होगा पॉली हाउस की खेती का महत्व। इसके अलावा डॉक्टर फूलचंद जाट, प्रधान वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ से सुवेंद्र सिंह द्वारा की गई भेंटवार्ता का विषय होगा समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन द्वारा बाजार आधारित उर्वरकों जैसे यूरिया डीएपी के उपयोग में कमी।

प्रधान वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ से सुवेंद्र सिंह द्वारा की गई भेंटवार्ता का विषय होगा समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन द्वारा बाजार आधारित उर्वरकों जैसे यूरिया डीएपी के उपयोग में कमी।

पर सुगम संगीत कार्यक्रम में गीत संध्या कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे रात 8 बजे और रात 10 बजे होगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:05 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत में आइए अब सुनते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। राग पंचम से गारा, ताल कहरवा, तबला पर संगत कर रहे हैं आनिंदो चटर्जी।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। राग था पंचम से गारा, ताल कहरबा, तबला पर संगत कर रहे थे अनिंदो चटर्जी। हम आकाशवाणी के नचिपाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी।

गुलाम फिल्म का गीत अभी आपने सुना, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीतकार थे समीर, संगीतकार जतिन ललित। कार्यक्रम की अगली पेशकश हमने ली है फिल्म अक्सर से, हिमेश रेशमिया की आवाज़ में। शब्द रचना समीर की, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: कार्यक्रम चितपट संगीत, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नचिकेता केंद्र से, माफ कीजिएगा, कार्यक्रम मिड डे मेलोडी, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नचिकेता केंद्र से।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: मिड डे मेलोडी कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म गुरु से। गायक कलाकार हैं हरिहरन और अलका याग्निक, गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार ए आर रहमान।

दूध का कर्ज। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत था अनु मलिक का। कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म माचिस से, हरिहरन और सुरेश वाडेकर की आवाज में। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार विशाल भारद्वाज।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम में डेमेलोडी अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति

0: देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
1: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, इस भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, इस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

घर संसार कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को थारे बहना कुमुद की प्यार भरी राम राम। थारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम में थारा सभी का प्यार से स्वागत करें हम। और सुनाओ बहनों अपने हालचाल, तुम सब कैसी हो? थारे परिवार में थारे ढोर डंगर सब चौखे? अरे खेती बाड़ी भी बढ़िया चल रही? बस बहना इस

0: गर्मी में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखियो। बिना परिवार में किसी एक का भी बीमार होने का मतलब है पूरे परिवार को दिक्कत। सच्ची में पूरा ही परिवार उथल पुथल हो जा। और बहना हम तो कतई ना चाहने के अकमारी बहने परेशान हूं मैं। बहना थारी गैल रिश्ता ही ऐसा है हमारा, और इसीलिए हमारी पूरी कोशिश रहो कार्यक्रम के जरिए थारा ज्ञान भी बढ़ा में, थारा भरपूर मनोरंजन भी करवा में और थारी सेहत का भी ध्यान रख लें। ये रानी जी जी को देखियो, ये तो सारा काम निमटा के बासन असन सफा करके बैठी हैं आज। ये सांझ के मेहमान आ रहे दिखे हैं। हाँ बेना, बालकों का भी जी कर रहा है, छुट्टी पड़ रही है उनकी, नानी के घर ही हुई है हमें। घर देखो कितना चमका रखा है इन्होंने। तो बहना थारे से हमारी बातें थे, चलो ही जाएंगी कार्यक्रम में आगे भी बढ़ेंगे, पर उससे पहले सुन लें थोड़े से जरूरी संदेश।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
5: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
7: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: इन जरूरी संदेशों के बाद सभी बहनों का एक बार फिर स्वागत थारे अपने कार्यक्रम घर संसार में। और आज कार्यक्रम लेकर हाजिर है थारी बहना कुमुद। बहना, यो बात तो तुमने भी अपने बड़ों से सुनी होगी, अक पांचों उंगली एक सारना ही होती। तो यो बात तो जिंदगी के हर पहलू पर लागू हो है। अब तुम यो ही देख लो, शहरी दुनिया में कितने देश हैं और हर बिना हर देश की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, सभ्यता और अपनी अलहदा पहचान है। सारे देश अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व करने के साथ साथ दूसरे देशों की सभ्यता संस्कृति को भी पूरा मान सम्मान देवे, यो भी बड़ा ही जरूरी है। इसी धारणा को मान्यता देने के वास्ते संयुक्त राष्ट्र ने 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करा है। ये मानना बहना, देखियो ये माला बहना तो अभी अभी आई दिखे हैं, ये सोच रही होंगी एक जाना हम की क्या बात कर रहे हैं। तो बहनों, हम बात कर रही आज मनाए जाने वाले खास दिवस की, जो है सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसका मतलब है सारी दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों और समाजों के बीच आपसी समझ, सम्मान और विचारों का आदान प्रदान करना। तुमने भी टीवी वीवी में तो देखा ही होगा, अब दूसरे देशों के कलाकार अपनी कला दिखाने हमारे देश में आवे और हमारे देश के कलाकार भी ऐसे ही दूसरे देशों में जावे, जिससे वे भी हमारे देश की संस्कृति से परिचित हुए। इससे बिना आपस में एक दूसरे की संस्कृति को जानने समझने का मौका मिला है और एक दूसरे के लिए मान सम्मान भी बढ़ा हो। इस दिवस को मनाने के खास उद्देश्य भी तो यही है, एक अलग अलग समुदाय एक दूसरे का इतिहास जानने, एक दूसरे की परंपराओं और संस्कृतियों को गहराई से समझें, जिससे आपसी भेदभाव या ऊंच नीच की भावना ना ही पनपे। ये देखो, हमारे भी गैल भी तो कितने सारे पड़ोसी रहे हैं, जरूरी थोड़ी ही सारे एक ही धर्म को मानते हों, एक ही बिरादरी के हों, नहीं ना? तो फिर हम उनके गैल अपनापन से रह नहीं रहते, उन्हें पता भी ना लगता आपस में जब इतने मिलजुल के रह हैं। तो यही इसी तरह यो दिवस भी हैगा, भाई इसमें देशों की बात है, हम अपने पड़ोसों की गैल ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो बहना, इस दिवस को मनाने का एक और जरूरी मकसद है, वो है टकराव का समाधान। मतलब यो मानना अब दुनिया को हथियारों के दम पे कतई नहीं चला जा सकता, बल्कि आपसी बातचीत के जरिए बहुत सारी समस्याओं का हल काढ़ा जा सके। या नू कह लो, अब पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने की हमारे देश भारत की संस्कृति को मान्यता देवे है यो दिवस। बिना स्टैम्प सारी दुनिया

मैं वैसी उथल पुथल हो रही। एक कहीं युद्ध छिड़ रहा, कहीं महामारी फैल रही, और कहीं बाढ़ और तूफान के रूप में कुदरत अपना कहर बरपा रही। ऐसे में इंसानियत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ उसे नित नए बदलाव का सामना करना पड़ रहा। आपसी बातचीत, मिलकर काम करने, एक दूसरे की मदद करने की जरूरत अब पहले से ज्यादा हो रही है ना। इसलिए बहनों, इस दिन की अहमियत और भी ज्यादा हो जा रही। इसी के जरिए आज पूरी दुनिया में शांति और मानव कल्याण का जो रास्ता खुलेगा उसकी तो बात ही अलग होगी। और एक साथ मिलकर हम सब तरक्की कर पाएंगे, साथ ही मदद के नए रास्ते भी निकलेंगे। भाई, किसी ना किसी देश पर कोई ना कोई मुसीबत तो आई जा है। अब देखो, कोरोना ही आया था तो पूरी दुनिया उस समय एक साथ थी, सब एक दूसरे की मदद कर रही थी जितनी हो सक रही थी। तो बहनों, सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सभ्यताओं की विविधता की अहमियत के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आपसी बातचीत के लिए, सम्मान के लिए दुनिया को मिलकर चलने का मौका देवो, जिससे दुनिया में आपसी टकराव और भेदभाव खत्म हो और शांति की धारणा बनी रहे। तो बहनों, यो तो हुई आज के खास दिवस की बात। अब बात हो जाए थारी सेहत की भी, पर उससे पहले सुन लें थोड़े से और जरूरी संदेश।

0: चैनल हर पल चंदन का एहसास।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: हाँ तो बहना, संदेशों से पहले हम बात कर रहे थे थारी सेहत की, तो देखो हाल चाल तो हम थारे आते ही बुझे हैं, और अच्छा भी लगा है जब पता लगा तुम ठीक ठाक हो। पर इस चिलचिलाती गर्मी में तुम और थारा परिवार दोनों ठीक ठाक रहे हो, यो ही सोच के आज के खास क्रम थारा स्वास्थ्य में हम लेके आए हैं यो भेंट वार्ता, डॉक्टर पूनम सोनी से अंजना की बातचीत। विषय है लू लगने के कारण और उपचार। हमारी गैल तमें भी पूरे ध्यान से सुननी है यो बातचीत। काम जरा एक देर बाद कर लियो, पहले सुन लो ध्यान से।
4: लू के कारण और उपचार। श्रोता बहनों, इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर पूनम सोनी। आप हैं महिला चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नजीबाबाद में। तो डॉक्टर पूनम, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
5: धन्यवाद अंजना जी, और सभी श्रोताओं को नमस्कार।
4: डॉक्टर पूनम, जैसा कि आज हमारा विषय है लू के कारण और उपचार, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि लू लगने के मुख्य कारण ऐसे कौन कौन से हैं जिनसे मनुष्य बहुत जल्दी प्रभावित होता है।
5: लू के मुख्यतः कारण है कि जो 12 से 4 के समय होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। दूसरा कि अगर हम बिना घर से पानी वगैरह पी के निकलें तो लू लगने की ज़्यादा संभावना रहती है। यदि हम खाली पेट घर से निकलें तो भी लू लगने की अत्यधिक संभावना रहती है। जो व्यक्ति धूप का ही काम करते हैं, जैसे खेतों में काम करते हैं या चिनाई वगैरह करते हैं, तो उनको भी बहुत जल्दी लू लगने की संभावना रहती है।
4: अच्छा, जैसे आपने बताया कि बहुत अधिक जो धूप में काम करते हैं उन व्यक्तियों को अधिक लू लगने की संभावना रहती है, और धूप में व्यक्ति काम कर रहा है क्योंकि उसका वो पेशा है, या उस समय उसको कोई सावधानी रखनी चाहिए जिससे वो उसका काम भी होता रहे और वो बीमार भी ना पड़े।
5: सबसे पहले तो उसे यही सावधानी रखनी चाहिए कि जब भी काम करने जाए तो पानी पी के निकले, अपने सिर को ढक कर के रखे, कोशिश ये करे कि अपने काम के बीच बीच में भी उठ के पानी पीता रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें वाटर लॉस ही होता है। इसलिए सबसे पहला तो उसको यही बका, और ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहने, क्योंकि जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और अगर हम गहरे रंग के कपड़े पहनेंगे इस समय तो वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमें लू लगने की और ज़्यादा संभावना रहती है।
4: अच्छा, जो व्यक्ति अधिकतर अपने घर में बैठ करके काम करते हैं उन्हें भी लू सता जाती है कभी कभी, तो वो किस कारण होता है डॉक्टर?
5: वो इस कारण होता है, जैसे देखिए, हम अगर किसी कमरे में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो भी हमको लू लग सकती है।
4: अच्छा।
5: हाँ, और अगर हम उस समय भी अपना काम में बिजी हैं, हम पानी नहीं पी रहे हैं, तो वो भी हमें लू लग सकती है। और खासतौर से महिलाएं जो रसोई घर में काम करती हैं, तो उनको तो खासतौर से जब रसोई घर में काम करने जाएं तो पानी ज़रूर पी के फिर अपना रसोई का काम शुरू करें। तो इतना अब हाँ, महिलाओं को तो इतना ध्यान रखना ही है, और जो पुरुष घर में कमरों में बैठ के कर रहे हैं तो वहाँ पे पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, कूलर लगा सकते हैं, एयर होना चाहिए जिससे कि वहाँ मौसम ठंडा रहे, कमरा थोड़ा सा ठंडा रहे, ऐसा नहीं कि बहुत तेज हीट है।
4: अच्छा।
5: और किसी किसी का व्यवसाय ही होता है, जैसे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, भट्टियों के पास काम कर रहे हैं, तो उनको भी अपना खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। मेन इसमें यह है कि पानी पीते रहें और एक ORS जरूर अपने साथ रखें, कि थोड़ी थोड़ी देर में ORS वगैरह लेते रहें। और जैसे घर में है तो छाछ, दही, मट्ठा, ये सब मतलब हमको पेय पदार्थ ज्यादा लेने हैं।
4: महिलाएं जब रसोई में काम करती हैं, बहुत अधिक देर तक उन्हें रसोई में रहना पड़ता है, तो क्या वो रोटी सेकते हुए पानी पी सकती हैं अगर उन्हें प्यास लगे तो?
5: हाँ, थोड़ा सा पानी पी सकती हैं, एकदम जैसे बहुत तेज पसीना आ रहा है उस समय ना पिए, अगर हाँ। उस समय पीना है तो एक आध घूंट पी लें।
4: अच्छा, जो हमारी ग्रामीण बहनें हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम भी ग्रामीण बहनों के लिए है, तो हमारी बहनें खेतों पर भी काम करती हैं, बहुत लंबे समय तक खेतों पर, कभी सब्जी की तुड़ाई तो कभी निराई गुड़ाई, कभी और अन्य काम वो करती हैं खेतों पर, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप?
5: वो भी अपना ढीले वस्त्र पहन करके जाएं, पानी वगैरह पी के जाएं, और अपने साथ पानी का साधन लेके जाएं जिससे जब उन्हें जरूरत पड़े तो पानी पीते रहें, और अपने सिर को ढक करके रखें।
4: अच्छा,
5: जिससे कि डायरेक्ट सूर्य की

0: इस गर्मी के समय में ऐसे कौन से पदार्थ अधिक लें जिनसे हमारा शरीर हष्टपुष्ट बना रहे, स्वस्थ बना रहे, विशेष तौर से हम गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जानना चाहेंगे।
1: बच्चों के लिए, बुजुर्ग और सभी आम जनों के लिए जो इस समय मौसमी फल आते हैं वो रस से भरे हुए होते हैं। ईश्वर ने मौसम बनाया है तो उसी हिसाब से

0: वह ध्यान रखें।
1: सबसे पहले तो उसे ORS पीना चाहिए, क्योंकि
0: अच्छा।
1: गर्भवती महिला के साथ दो जान जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और सबसे पहले अस्पताल ही ले जाना चाहिए और घर में जो भी हमारे पेय पदार्थ हैं उनको पिला देना चाहिए। और बाकी ठंडे पानी से उसकी स्पंजिंग वगैरह ये तो हमें करना ही है।
0: कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भवती महिला समझ ही नहीं पाती कि उसको जो जी मिसला रहा है वो गर्भावस्था के कारण मिसला रहा है या फिर लू लगने के कारण मिसला रहा है, या अचेतन अवस्था जो आती है कभी कभी लू लगने के भी कारण आ जाती है। तो इसमें कैसे वो अपने आप को पहचाने कि उसको लू लगी?
1: जो उल्टी आएगी अगर गर्भावस्था के कारण आ रही है तो उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा,
0: अच्छा।
1: लेकिन अगर लू लगने के कारण अगर उल्टी आ रही है तो उसमें टेम्परेचर भी साथ में बढ़ा हुआ आएगा उसके। यही मेन अंतर है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, शरीर बुखार आता है मरीज को, और उसमें जो गर्भावस्था की उल्टियां होती हैं उसमें बुखार नहीं आता है।
0: अच्छा, सामान्य थकान और लू लगने पर थकान जो महसूस होती है उसमें क्या अंतर पाएगा मरीज?
1: लू है उसको हीट स्ट्रोक कहा गया है, तो हीट स्ट्रोक का मतलब है कि हीट का आक्रमण,
0: अच्छा।
1: तो वो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और उस समय हमारी मांसपेशियों में ऐठन होने लगेगी और बहुत ज़्यादा एकदम पसीना आएगा पहले तो, और जब पसीना आते आते पसीना रुक जाएगा और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा
0: अच्छा।
1: और उस समय हमारा पसीना निकलना बंद हो जाएगा। तो जो हमारी प्राकृतिक रूप से हमारा शरीर पसीना निकाल के ठंडा करता है तो वो उसकी प्रक्रिया रुक जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, उसकी त्वचा ड्राई और गर्म रहेगी, तो उस समय उसे बेहोशी सी आने लगेगी। थोड़ी
0: अच्छा।
1: बहुत थकान में तो ऐसा होता है कि उसे लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा हाथ पैरों में दर्द हो रहा है ये है, लेकिन उस समय उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसमें उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा।
0: फिर हो
1: हाँ, जी
0: सकता है।
1: मिचलाने लगेगा,
0: अच्छा।
1: घबराहट होने लगेगी, उल्टी भी हो सकती है।
0: अगर मरीज घर पर ही है और उसको ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो प्राथमिक उपचार क्या करें?
1: प्राथमिक उपचार में सबसे पहले उसको पानी पिलाएं, ORS पिलाएं, दही छाछ वगैरह हो, मट्ठा हो तो वो पिला देना चाहिए,
0: अच्छा।
1: और उसके पूरे शरीर की स्पंजिंग करनी चाहिए, गीला कपड़ा लेके उसके पूरे शरीर को पोंछना चाहिए और माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए।
0: अच्छा।
1: ये हम घर पर कर सकते हैं, और अगर फिर भी स्थिति बिगड़ रही है तो जो भी पास में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर उनको ले जाना चाहिए।
0: अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि पास में अस्पताल हो तो ले जाना चाहिए, तो अगर स्थिति गंभीर है और डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ गया है तो वहां पर वो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो उसको कोई परेशानी ना हो? अपने साथ किन किन चीजों को वो लेकर के जाए?
1: वो रास्ते में भी अगर थोड़ी दूर पे है तो इस उसके शरीर को स्पंजिंग करते हुए लेके जाएं और अब पानी पिलाते हुए, ORS वगैरह पिलाते हुए ले जाएं।
0: अच्छा, जैसे मरीज आपके पास से दवा लेकर के चिकित्सा करा करके चला गया है तो घर पर भी उसको क्या सलाह देंगी उसे स्वस्थ रखने के लिए?
1: उसको जब भी वो हीट स्ट्रोक से उबरा है तो उसको थोड़ा आराम करना चाहिए एक आध दिन, और उसके बाद अपने पेय पदार्थों का ज़्यादा सेवन करता रहे और गर्मी से थोड़ी दूरी बना के रहे। 2-4 दिन अगर खेत पे काम करने जाता है तो 2-4 दिन की छुट्टी ले ले उसके बाद जाए, और अपना पेय पदार्थ जितना वो पीता रहेगा तो उसको फिर लू नहीं लगेगी।
0: यानी आराम करने की आवश्यकता है 2 या 4 दिन, उसके बाद ही वो काम पर लौटे।
1: जी,
0: अच्छा, जैसे गांव में अधिकतर कहते हैं कि भाई अपने साथ प्याज रख लीजिए या आम का पन्ना बना लीजिए, क्या ये भी वास्तव में लू
1: हाँ
0: से
1: ये
0: हमें
1: बहुत
0: बचाते
1: बहुत
0: हैं?
1: फायदा करते हैं, क्योंकि प्याज की तासीर भी ठंडी होती है और आम वगैरह जो कच्चे आम हैं वो भी बहुत फायदा करते हैं लू मूल।
0: अच्छा, इसके अतिरिक्त क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारी बहनों को जिससे वो लू से बची रहे?
1: सभी बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं मेन इसमें पानी पीने का है, कि पानी पीते रहें, ORS पीते रहें, और अपने भाई गांव है तो गांव में छाछ मट्ठा वगैरह मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा वो पीते रहें।
0: जी।
1: और दूसरे एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि खरबूज और तरबूज खा के घर से बाहर ना निकलें धूप में, पानी की मात्रा तो काफी होती है लेकिन मिनरल्स कम होते हैं।
0: अच्छा
1: तो जब हम इनको खा के धूप में बाहर निकलते हैं तो हमारे शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, इसलिए ये खा के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।

0: धूप में, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इसमें तो बहुत पानी की मात्रा है, हम इसको खा के निकलेंगे तो हमको लू नहीं लगेगी, लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि जब हमारा पसीना निकलता है तो हमारे शरीर से मिनरल्स भी निकलते हैं, तो वो उनकी पूर्ति नहीं कर पाता है। और जो हमारा प्लेन वाटर होता है उसमें तरह तरह के मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें पसीना निकलने पर भी बेहोशी वगैरह नहीं आती है। और अपना जब घर से निकलें, खेतों में काम करने निकलें, तो अपना सिर ढक के रखें, पूरे बांह के कपड़े पहनें, और पानी को जरूर लेके जाएं। अगर ओआरएस वगैरह हो, ओआरएस नहीं भी हो तो एक बोतल में 2-3 चम्मच चीनी मिला लें और 2-3 चुटकी नमक मिला के, और वो ले जाएं अपना, वो पीते रहें अपने काम करते समय।
1: तो केवल नमक और पानी और
0: नमक,
1: थोड़ा सा शक्कर
0: हाँ,
1: अगर वो डाल करके पीते रहेंगे तो लू नहीं सताएगी।
0: तो नहाएं जरूर इसमें, आप 2-3 बार नहा सकते हैं गर्मियों में, तो 2-3 बार नहाएं, ना नहाने में आलस ना करें।
1: तो कुल मिलाकर के लू से बचाव के लिए यदि हमारी बहनें साफ सफाई का ध्यान रखें, घर से
0: जी
1: बाहर निकलें तो सुबह और शाम में निकलें, अगर धूप में निकल रही हैं तो छाते का प्रयोग करें, चश्मे का प्रयोग करें, और खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें,
0: जी
1: और यदि गर्म स्थान पर जा रही हैं तो कम से कम 2 गिलास पानी पी करके निकलें और साथ में पानी ले करके भी जाएं।
0: जी और
1: तो
0: सूती कपड़े पहने और ढीले कपड़े पहने, टाइट कपड़े ना पहने,
1: जी
0: सूती और ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहने, ये इन्हें बहुत सहायता करेगा लू से बचने के लिए।
1: तो डॉक्टर पूनम, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारी श्रोता बहनों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: बहनों, अभी तम सबने आज के खास क्रम धारा स्वास्थ्य के अंतर्गत डॉक्टर पूनम सोनी से अंजना की बातचीत सुनी। विषय था लू लगने के कारण और उपचार। बहनों, ये बातचीत सुन के हमने जाना अगर लू किस वजह से लग सके है, क्या क्या कारण हो, और अगर किसी को लू लग जा तो बहना क्या प्राथमिक उपचार दे सके हैं जब तक उसे डॉक्टर के पास ले जाया जा उससे पहले। और ध्यान से सुना तुमने, डॉक्टर दीदी ने कुछ सावधानी भी बताई हैं जिन्हें ध्यान में रखेंगे तो लू लगने का डर ही ना रहने का। अब मुझे पूरी उम्मीद है तुम सब ने ये जो बातें हैं बड़ी ध्यान से सुनी और गांठ भी बांध ली होंगी। चलो तो इसी बात पे थोड़ा सा गीत संगीत का भी आनंद ले लें। आओ सुने यो प्यारा सा लोकगीत दिलराज कौर की आवाज में।

तो बिना कैसा लगा तुम्हें यो गीत? चोखा लगा? ए थारी गैल बैठ जा, तो हम तो टाइम देखना ही भूल जा। पर बिना यो घड़ी तो अपनी चाल से चलो ही जा है, किसी के लिए रुकेगी थोड़ी। तो जाने से पहले थारे से कहना चाहेंगे, आज का कार्यक्रम तुम सबको कैसा लगा? अपनी राय हमें पते पर चिट्ठी लिख के जरूर भेजो। हमारे हमारा पता लिख लो, कार्यक्रम घर संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 246763। चिट्ठी जरूर भेजो, हमें इंतजार रहेगा भेना। हाँ, एक और जरूरी बात, तुम सब फोन पे व्हाट्सएप चलाना तो जानती होंगी, ना आता तो सीख लियो, बालकों से सब सिखा देंगे। उस पर भी अब हमारे नंबर पर मैसेज कर सको हो तुम, अब बता सको कि तुम्हें कार्यक्रम कैसे लग रहे या क्या और जोड़ना चाहो हो तुम कार्यक्रम में। तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर भी लिख लियो, 9457078288। अब अगले कार्यक्रम तक के लिए अपनी बहना कुमुद को दो अनुमति। बहनों, राम राम।

अभी आपने सुना कार्यक्रम घर संसार। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। अपराह्न के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकधारा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के स्वर में राजस्थानी लोकगीत।

0: लोकधारा कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नचिपापाद केंद्र से।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: कार्यक्रम लोकधारा में आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों के स्वर में राजस्थानी लोकगीत।

0: इसी के साथ कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नचिपापद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। अपराह्न के 2 बजने वाले हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi sets record as India's longest serving elected

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री।

0: मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के

0: स्तर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानाई के, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
2: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
2: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

0: हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी।

कार्यक्रम है संदेश डॉट कॉम जो आधारित है आपके व्हाट्सएप मैसेज पर। इस कार्यक्रम में हम आपसे पूछते हैं कुछ गानों पर आधारित सवाल जिनके जवाब आप देते हैं हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नोट कर लीजिए सबसे पहले तो हमारा मोबाइल नंबर जिस पर आप अपने संदेश हमें भेजेंगे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457077288। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9457077288। तो कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है, फिल्म है बाहरें फिर भी आएंगी। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफ़ी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने। इसमें आपको बताना है कि ये गीत किन्होंने लिखा है। इसके बाद हम आपको इस गीत से जुड़ी एक रोचक जानकारी भी देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा गीत और जवाब दीजिएगा जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457077288 पर।

ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बहुत सारे उत्तर हमारे पास आए हैं हमारे श्रोताओं के। हम आपको जो हमने पूछा था पहले तो वो बता देते हैं, फिर इसका जो उत्तर था वो बताएंगे। हमने पूछा था कि ये गीत किसने लिखा है, यानी इस गीत के गीतकार कौन है। तो गीतकार हैं अनजान और आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, संगीत था ओपी नैयर का। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब लिखकर भेजे हैं। ये मैसेज हमारे पास आया है विजेंद्र उपाध्याय का, मोरना मुजफ्फरनगर से। और इनके अलावा सही जवाब देने वाले हैं बीरमगांव गुजरात से अजीत कुमार भावसार, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल रॉय, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हेना कौसर, शाही मार्केट सिहारा बिजनौर से हैं आसिफ चौधरी, बेगम रेहाना, अराफात चौधरी, अदीब और कादिर चौधरी, थाना शिवाला कला ग्राम जुझैला से हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयसा, साइना महविश, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर, मुंबई से हैं अनु बड़जातिया, शमशुल खान और अनुराज बेनारा, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू इस्माइल खुशदिल और पूरा ही खुशदिल परिवार, ग्राम बपोस्ट राहु नगली आचार्य, सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान और कनिक्षा ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। तो हमने कहा था कि इस गीत से संबंधित एक रोचक जानकारी भी हम आपको देंगे। तो वो रोचक जानकारी है कि जो अनजान साहब हैं ये गीतकार समीर के पिता हैं। तो इस रोचक जानकारी के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है। फिल्म है जीते हैं शान से। इस गीत को आवाज दी है अनु मलिक और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार अनु मलिक हैं। इस गीत के लिए आपको बताना है कि अनु मलिक का पूरा नाम क्या है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, अनु मलिक का पूरा नाम क्या है।

0: साथ तेरा मांगा सबको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: मांगता हमको लेले नहीं मांगता हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता
1: तो कौन मांगता
2: ए जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

जीते हैं शान से। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनु मलिक की आवाज़ में और साथ में थी कविता कृष्णमूर्ति। गीतकार थे हिंदी पर संगीतकार अनु मलिक। हमने पूछा था इस गीत के लिए एक सवाल, सवाल था कि अनु मलिक का पूरा नाम क्या है। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिखकर भेजे हैं। अनु मलिक का पूरा नाम है अनवर सरदार मलिक। जिन्होंने हमें सही उत्तर लिखकर भेजे हैं वो हमारे श्रोता हैं। ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। शाही मार्केट से।

0: जिला बिजनौर से हैं आसिफ चौधरी और बेगम रेहाना। कांट से हैं विष्णु अग्रवाल। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। मुंबई से हैं अनु बड़जात्य, शमशुल खान और अनुराज बेनारा। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हैं बबलेश पवार। इसके अलावा एक और जानकारी हम आपको देना चाहेंगे इसी गीत के बारे में कि ये जो गाना था जुली जुली जो आपने सुना और बहुत सारी शादियों में भी ये गाना आपने सुना होगा, ये ऐसा गाना है जो अनु मलिक ने पहली बार बॉलीवुड में गाया था। तो अनु मलिक का जो गाना है जो उन्होंने बॉलीवुड के लिए गाया था वो यही गाना है। कितना प्यारा गाना है। आते हैं थोड़ी देर में, आप तब तक सुनिए ये कुछ जरूरी संदेश।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: की गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
5: तो इंतजार किस बात का,
4: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
5: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
5: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
4: और हमारा ईमेल आईडी है
5: akashwaninajibabad@gmail.com।
4: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
5: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दयावान से। गायक कलाकार हैं ज्वाली मुखर्जी और सपना मुखर्जी। गीतकार हिंदी पर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमारा सवाल है कि ये गाना कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री हैं, बहुत ही अच्छी अदाकारा हैं, आपने उन्हें कई फिल्मों में देखा होगा। तो आपको यही बताना है कि किस हीरोइन पर ये गाना फिल्माया गया है।

इस गीत के लिए बहुत सारे गलत जवाब हमारे पास आ रहे हैं, तो कृपया अपने जो उत्तर हैं वो सही कर लीजिए। अभी गाना चल रहा है, हम मिलते हैं गाने के बाद।

ये गाना था दयावान फिल्म का और ये फिल्माया गया था रम्या कृष्णन पर। हीरोइन का नाम है रम्या कृष्णन। हमने यही सवाल आपसे पूछा था कि ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, तो सही जवाब है रम्या कृष्णन। इन्हें आपने कई फिल्मों में देखा होगा, जैसे बाहुबली, खलनायक और बड़े मियाँ छोटे मियाँ। एकमात्र हमारे पास इसका सही जवाब आया है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार जी का। कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार अनु मलिक। इसके लिए आपको बताना है कि फिल्म का नाम क्या है। जो गीत अब आप सुनेंगे, इसकी फिल्म का नाम आपको बताना है।

ये जो गीत अभी आपने सुना, ये था फिल्म फिदा से। सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से हैं, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी। बड़ापुर बिजनौर से हैं मोहम्मद उजैफ। नजीमपुर से हैं योगेश कुमार, उमेश रानी, आयुष, परी, ईशु। और ग्राम बपोस्ट राहुनगली से हैं सीमा रानी, राघव चौहान और वेदांश चौहान। तो सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सही उत्तर भेजे और जिन्होंने कार्यक्रम में सहभागिता की अपने गलत उत्तर देकर भी। कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कीजिएगा सही उत्तर देने की। तो इसी के साथ कार्यक्रम संदेश.com यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नचिपापात केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, अब हमारी प्रथम सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। शाम 5 बजे अपनी दूसरी प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे नित्य चर्चाएं करते हैं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के विषय में। तो आज इसी क्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे हस्तशिल्प और कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना और मेगा क्लस्टर योजना के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के विषय में। अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना AHVY वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम NHDP की एक प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में दस्तकारों कारीगरों को वित्तीय तकनीकी और विपणन सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना विशेष रूप से क्लस्टर यानी समान शिल्प वाले कारीगरों के समूह पर आधारित है। चिन्हित शिल्प समूहों को 5 साल के लिए तकनीकी वित्तीय और सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें प्रोड्यूसर कंपनीज यानी कि उत्पादक कंपनियों के रूप में संगठित किया जाता है। योजना के तहत

कारीगरों को नए डिजाइन विकसित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं और उन्नत और आधुनिक उपकरण मुफ्त या सब्सिडी पर दिए जाते हैं। साथ ही कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मेलों यानी कि क्राफ्ट बाजार्स और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय मदद और यात्रा भत्ता दिया जाता है। पारंपरिक कला को आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप ढालने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ये योजना विशेष रूप से ग्रामीण, दूरदराज के क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर कारीगरों के समूहों के लिए है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कारीगर वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त हस्तशिल्प के कार्यालय, जिला उद्योग केंद्र या आधिकारिक माई स्कीम पोर्टल के माध्यम से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के विषय में, और अब बात करते हैं मेगा क्लस्टर योजना के विषय में। मेगा क्लस्टर योजना भारत सरकार के वस्त्र और उद्योग मंत्रालय द्वारा असंगठित पारंपरिक उद्योगों जैसे हथकरघा, हस्तशिल्प और चमड़ा उद्योग आदि को आधुनिक बनाने, आधारभूत संरचना विकसित करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए चलाई जा रही एक प्रमुख पहल है। प्रत्येक मेगा क्लस्टर को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए से लेकर 70 करोड़ रुपए तक का भारी अनुदान 5 वर्षों की अवधि में दिया जाता है, जो कि क्लस्टर के आधार पर तय होगा। एक मेगा क्लस्टर के तहत कम से कम 15,000 से 25,000 हथकरघा या कारीगरों को शामिल किया जाता है, ताकि बड़े पैमाने पर उत्पादन और रोजगार सृजन हो सके। इसमें उन्नत तकनीक, साझा सुविधा केंद्र, डिजाइन स्टूडियो, धागा डिपो और उत्कृष्ट मार्केटिंग लिंकेज की सुविधा प्रदान की जाती है। देश के विभिन्न हिस्सों में चुनिंदा शिल्पों और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत वाराणसी, भागलपुर, मुर्शिदाबाद और शिवसागर जैसे क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यक्रम चल रहे हैं। चमड़ा और जूता उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केंद्र सरकार द्वारा मेगा क्लस्टर्स विकसित किए जा रहे हैं। कारीगरों के कल्याण, कौशल विकास और उन्हें वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए ये योजना सीधे तौर पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय हथकरघा संगठनों और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जैसी संस्थाओं द्वारा चलाई जाती है। आप माई हैंडलूम पोर्टल के माध्यम से हथकरघा क्लस्टर योजनाओं की अधिक जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। और अब चलते चलते आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। नीलम शर्मा पत्नी श्री राहुल कुमार दिनांक 28 अप्रैल 2026 से अपने निवास स्थान मोहल्ला जोशियान कस्बा वथाना नहटौर जिला बिजनौर से लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 32 वर्ष है। इनके आंख नाक कान औसत रंग गेहुआ और लंबाई 5 फीट है। इन्होंने जामनी व सफ़ेद रंग की कुर्ती और काले रंग का प्लाजो पहना हुआ है और इन्होंने पैरों में सैंडल पहने हुए हैं। इनके विषय में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया दूरभाष संख्या 9871932074 व 9454403138 पर सूचना देने का कष्ट करें। सूचना समाप्त हुई। मुस्कान पुत्री श्री महबूब अली दिनांक 4 मई 2026 से अपने निवास स्थान ग्राम अमखेड़ा संजरपुर थाना धामपुर जिला बिजनौर से लापता हैं। इनकी आयु करीब 23 वर्ष है। इनके आंख नाक कान औसत रंग गोरा और लंबाई 4 फीट 9 इंच है। इन्होंने लाल रंग की पार्टी वियर साड़ी और पैरों में चप्पल पहनी है।

ग्राम अमखेड़ा संजरपुर थाना धामपुर जिला बिजनौर से लापता हैं। इनकी आयु करीब 23 वर्ष है। इनके आंख नाक कान औसत, रंग गोरा और लंबाई 4

पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कानून की बात कार्यक्रम आज शाम 7:30 पर हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी हम आपको सुनवाएंगे आज शाम 5:15 पर। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर प्रधान वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ द्वारा डॉक्टर फूलचंद जाट से सुवेंद्र सिंह की बातचीत का विषय होगा समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन द्वारा बाजार आधारित उर्वरकों जैसे यूरिया डीएपी के उपयोग में कमी। विविध क्रम में आज शाम 6:45 पर विश्व नेत्रदान दिवस पर सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के उपाध्यक्ष श्री गुरिंदर सिंह से प्रमोद सिंह की बातचीत का विषय होगा नेत्रदान महादान। छाया गीत आप सुनेंगे आज शाम 6:55 पर। सुगम संगीत में आज शाम 7:45 पर भाई निर्मल सिंह खालसा के गाए शब्द सुनवाए जाएंगे। गीत संध्या कार्यक्रम सुनिएगा आज रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से दिल ने फिर याद किया। ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे आज रात्रि 10:00। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी और मैं हूं आपकी अपनी साथी राशि त्यागी और उम्मीद कर रही हूं आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा।
1: बिल्कुल दोस्तों, और अगर नहीं शानदार गुजर रहा है तो मैं हूं ना आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना। राशि और मैं, हम दोनों मिलकर आपके दिन को बहुत ही शानदार बनाएंगे
0: क्योंकि आज है दोस्तों वेडनेसडे और हमारा प्रोग्राम में होते हैं आज के दिन बैक टू बैक दिलचस्प सेगमेंट्स। तो बस आपको करना क्या है, एंजॉय करना है उन सेगमेंट्स को और साथ ही मुस्कुराना है।
1: राशि, तुमने एंजॉय तो चलो ठीक कहा, लेकिन मुस्कुराने को स्पेशली मेंशन किया, क्या बात है? वैसे मैं मालूम कर सकती हूँ क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल सना, क्यों नहीं मालूम कर सकती हूँ। मतलब सना, ऐसा होता है ना लाइफ में कि हम बहुत बिजी रहते हैं, जिंदगी में हम सब काम करते हैं, हर चीज का शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन मुस्कुराना तो हम भूल ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसलिए मेंशन किया ये बात कि मुस्कुराना और खुश रहना तो हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको मुस्कुराना और खुश तो जरूर रहना है।
1: सही कहा तुमने। तो प्यारे साथियों, खुश रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको सुनना है सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रोग्राम।
0: बिल्कुल दोस्तों, जिसमें हम मनोरंजन और जानकारी का ढेर सारा बेहतरीन संगम। और साथियों कहते हैं ना कि जो नॉलेज होती है वो कभी वेस्ट जाती नहीं है।
1: तो हम अपने दोस्तों की नॉलेज का टेस्ट ले लें क्या राशि?
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों, पेश है हमारा सेगमेंट बूझो तो जाने, जिसमें हमारा आज का सवाल है, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
0: और दोस्तों जिसका सही जवाब आपको लिख भेजना है हमारे एफवी पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर।
1: तो दोस्तों, हमें रहेगा आपके ढेर सारे मैसेजेस का इंतजार। तब तक के लिए आइए आपको सुनवाते हैं आज की शाम का ये पहला गीत।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
5: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
4: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
6: और डोज में क्या है?
5: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
6: अजी सुनते हो, इधर आ जाओ जरा। तुम
7: क्या हो गया?
6: तुम कोई भी काम ढंग से नहीं

0: करते हो?
1: अब क्या हुआ, क्या कर दिया मैंने ऐसा?
0: तुमने कल जो सिलेंडर लगाया था,
1: हाँ हाँ लगाया था,
0: पता नहीं कैसे लगाया, कल से दो बार दूध उबाला, दोनों बार ही फट गया।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
3: फ्रेंड्स, एक सवाल पूछते हैं। अगर एक इंसान बहुत टैलेंटेड है लेकिन महीनों तक प्रैक्टिस नहीं करता, और वहीं दूसरा इंसान एवरेज है लेकिन रोज मेहनत करता है, तो आगे कौन निकलेगा?
4: सना, तुम ये समझ लो कि ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि टैलेंटेड वाला, लेकिन दोस्तों सच ये बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम टैलेंटेड हैं तो हम तो जीत ही जाएंगे, लेकिन अक्सर जीत उस इंसान की होती है जो रोज मेहनत करता है।
3: यही तो आज का हमारा टॉपिक है राशि। टैलेंटेड तब नहीं, तब तक कुछ नहीं जब तक कंसिस्टेंसी ना हो।
4: बिल्कुल, टैलेंट एक गिफ्ट हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक चॉइस है जो आपको और हमें हमारी मेहनत के साथ आगे लेकर जाता है।
3: सोचिए, अगर आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी किताब है लेकिन आप उसे कभी खोले ही नहीं, तो क्या फायदा? ठीक वैसे ही टैलेंट भी तब तक बेकार है जब तक उसके साथ लगातार मेहनत ना हो।
4: और फ्रेंड्स, सक्सेस किसी एक दिन की मेहनत से तो होती नहीं है, वो तो छोटे छोटे एफर्ट्स का रिजल्ट होती है जो हम रोज करते हैं।
3: कई बार हम दूसरों को देखकर कहते हैं, यार वो तो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन हमें ये नहीं दिखता कि उसके पीछे कितने सालों की प्रैक्टिस और डिसिप्लिन छुपा होता है।
4: बिल्कुल सही कहा, टैलेंट आपको शुरुआत में थोड़ा एडवांटेज दे सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है।
3: इसीलिए अगर आज आपको लग रहा है कि आप किसी काम में परफेक्ट नहीं है, तो परेशान मत होइए, बस रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने के लिए कोशिश जरूर कीजिए।
4: क्योंकि दोस्तों याद रखिए, स्लो प्रोग्रेस इज द स्टिल प्रोग्रेस,
3: और एक दिन वही छोटे छोटे कदम आपको बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे।
4: और फ्रेंड्स, टैलेंटेड होना अच्छा है, लेकिन अगर आपके साथ कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है तो वो अधूरी कहानी है।
3: इसीलिए टैलेंट पर नहीं, अपनी कंसिस्टेंसी पर भरोसा रखिए, क्योंकि असली गेम चेंजर तो वही है।
4: बिल्कुल, इसी सोच के साथ मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो कभी रुकता नहीं है।
3: इसी संदेश के साथ वक्त हो गया है एक म्यूजिकल ब्रेक का,
4: तो चलिए दोस्तों चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक पर।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा

0: ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
1: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे भाग्यवान, जरा एक गिलास पानी तो पिला दो, बहुत थक गया हूँ।
1: हाँ हाँ, मैं तो इसी काम के लिए हूँ, अभी पिलाती हूँ तुम्हें मैं जल। कहाँ गए थे, इतनी देर हो गई, और तुम्हारा फोन भी नहीं मिल रहा।
3: वो तो मैं साथ लेके गया था, तुम्हें कैसे मिलता?
1: अरे अकलमंद, मैं कॉल की बात कर रही हूँ।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
4: तो दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं बहुत ही स्पेशल सेगमेंट लव स्टोरी की ओर। आपको पता है कि हम मंडे में हमारा फर्स्ट पार्ट जाता है और धीरे धीरे ये पार्ट्स हमारे आगे बढ़ते चले जाते हैं, और इस हफ्ते चल रही है हमारी लव स्टोरी उस मोड़ पर, तो जिसको प्रेजेंट किया है रुमान ने। तो चलिए चलते हैं तीसरे एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 3 की ओर।
5: दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे कॉलेज की गलियों से शुरू हुई एक मासूम दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत की सबसे खूबसूरत मंजिल तक पहुंच गई थी। वो लाइब्रेरी की मुलाकातें, वो कैंटीन की चाय, वो बरगद के पेड़ तले घंटों चलने वाली बातें, और फिर चांदनी रात में दिल की बात कह देने का वो हसीन लम्हा। आरिफ और माहिरा अब दो जिस्म नहीं, एक जान बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, मोहब्बत जब तक दिलों में रहती है बहुत आसान लगती है। असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब उसे दुनिया के सामने खड़ा होना पड़ता है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने को ही थी और उनके रिश्ते को एक नाम चाहिए था। एक शाम आरिफ ने हवेली के बड़े दीवान खाने में अपने वालिद से बात की। कमरे में पुरखों की तस्वीरें टंगी थी, सदियों की रिवायतें उन दीवारों पर सांस ले रही थी। अब्बू, मैं निकाह करना चाहता हूँ। वालिद मुस्कुराए, कौन है लड़की? और फिर जैसे ही माहिरा का नाम लिया गया, हवा का रंग बदल गया, मुस्कान गायब सी हो गई। एक गरीब लड़की, एक दर्जन की बेटी, मिर्जा खानदान की बहू। उन शब्दों में तिरस्कार था, घमंड था और सदियों पुरानी सोच का बोझ था। आरिफ ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, खानदान इंसान को बड़ा नहीं बनाता अब्बू, इंसान अपने किरदार से बड़ा होता है। उधर माहिरा भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रही थी। रिश्तेदार कहते, बेटी अमीर लोग मोहब्बत नहीं करते, वो सिर्फ शौक पालते हैं, मगर मोहब्बत डरती तो मोहब्बत ना होती। हर मुलाकात में दोनों एक दूसरे से एक ही बात कहते, जो भी होगा साथ होगा, अगर दुनिया खिलाफ हुई तब भी साथ होंगे। और फिर एक रात जब शहर की गलियां सो रही थीं, जब आसमान पर आधा चांद टंगा था, जब हवाओं में खामोशी का राज था, दोनों ने निकाह कर लिया। न शहनाइयां थीं, न रोशनियां, न बारात, बस दो धड़कते दिल, कुछ गवाह और अल्लाह का नाम। उस रात उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कभी कभी नई दुनिया बसाने के लिए पुरानी दुनिया छोड़नी पड़ती है। हवेली पीछे छूट गई, माँ की गोद पीछे छूट गई, दोनों की पुरानी जिंदगियाँ कहीं दूर रह गईं। लेकिन उनके पास एक चीज थी जिसे कोई उनसे नहीं छीन सकता था, वो थी उनकी मोहब्बत। उन्हें लगता था कि अब हर मुश्किल आसान हो जाएगी, मगर उन्हें क्या पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी, आप अगला पार्ट सुनना बिल्कुल भी मिस ना करें।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है वेडनेसडे, और वेडनेसडे में होता है हमारा स्पेशल सेगमेंट यूथ कनेक्ट। तो चलिए दोस्तों, कनेक्ट हो जाते हैं अपने यूथ्स के साथ।
3: गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त सना।
2: और मैं हूँ राशि। स्वागत है आपका युवाणी के सबसे मजेदार और धमाकेदार सेगमेंट यूथ कनेक्ट में।
3: फ्रेंड्स, आज हम स्टूडियो में नहीं बल्कि आपके बीच, आपकी गलियों और आपके शहर में मौजूद हैं।
2: बिल्कुल, क्योंकि यूथ कनेक्ट में हम मिलते हैं युवाओं से, सुनते हैं उनकी बातें और खेलते हैं कुछ मजेदार गेम्स।
3: और जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यूथ कनेक्ट में होते हैं 4 सब सेगमेंट।
2: बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले हमारा होगा सब सेगमेंट समय की सैर, जिसमें हम अपने दोस्तों को उनके पास्ट में लेकर जाएंगे।
3: फिर उसके बाद हमारा सब सेगमेंट होगा हूबहू
2: चार खेल, गलत है तो सही है। उसमें आपको सही जवाब के लिए नंबर नहीं बल्कि गलत जवाब के लिए मिलेंगे बहुत सारे नंबर।
3: और आखिर में होगा हमारा सुपर हिट सेगमेंट अरे दीवानो मुझे पहचानो, जिसमें हमारे दोस्तों को बतानी होगी अपने अंदर की कोई एक कमी और कोई एक अच्छाई।
2: बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के निकलते हैं लोगों के बीच। हेलो दोस्तों, हम जुड़ गए हमारी पहली साथी से। सबसे पहले जान लेते हैं उनका नाम।
4: माय नेम इज प्रीति रानी है।
2: तो प्रीति, हम ना आकाशवाणी से आए हैं और हमें हमारे सब सेगमेंट समय की सैर के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने, आप उनके आंसर देना पसंद करेंगी? तो प्रीति, हमारा आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आपको अपने अतीत में जाने का मौका मिले, यानी कि अपने पास्ट में जाने का, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसको आप चेंज करना चाहेंगी या कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप बदलना चाहेंगी?
4: जैसे कि मेरी बुआ की लड़की की शादी थी, जहां मैं तैयारी के लिए बहुत एक्साइटेड थी, जहां मैं जा नहीं पाई, मेरे पैर में चोट लग गई थी, इसलिए मैं ये मौका दोबारा लेना चाहती हूँ।
2: सच में ये तो बहुत रिग्रेट वाला मोमेंट है कि आपकी इतनी सारी तैयारी थी, इतना एक्साइटेड थी आप, और फिर भी आप वो शादी अटेंड नहीं कर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस सब सेगमेंट से जुड़ने के लिए, थैंक यू।
3: दोस्तों, अब अपने इस सेगमेंट को बढ़ाते हैं आगे और ले चलते हैं आपको और हम दोनों को, राशि और मुझे, अपने एक और नए युवा साथी की ओर। तो सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
5: माय नेम इज खुशबू प्रजापति।
3: खुशबू, तो हमारा एक सब सेगमेंट होता है गलत है तो सही है, जिसमें हम आपसे रेंडमली कोई 5 क्वेश्चंस करेंगे और आपको उनके गलत जवाब देने हैं। अगर आपने उन सवालों के सही जवाब दिए तो आप ये राउंड आउट हो जाएंगे। तो शुरू करें
5: जी।
3: तो सबसे पहला आपके लिए सवाल है, आज कौन सा दिन है?
5: मंडे।
3: मंडे। दूसरा सवाल हमारा आपसे है कि अभी कौन सा मौसम चल रहा है?
5: बरसात।
3: बरसात, बारिश बहुत ज़्यादा है, तो ज़रा सही से जाइएगा घर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है?
5: मैं।
3: हाँ, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, गाय क्या देती?
5: कोल्ड ड्रिंक।
3: कोल्ड ड्रिंक देती है राशि, गाय, पता चला तुम्हें। तो इसी के बाद हमारा अगला सवाल आपसे यह है कि अभी आप जाग रही हो?
5: नहीं, मैं सो रही हूँ।
3: सो रही है राशि, सुना तुमने।
6: और हम सोते सोते इनसे बात कर रहे हैं सपनों में।
3: बिल्कुल।
2: तो दोस्तों, प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे और हमारी एक और साथी हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उनका नाम।
7: मेरा नाम है नंदिनी प्रजापति।
2: आपका नाम है नंदिनी प्रजापति। तो नंदिनी, हमारा एक सब सेगमेंट जाता है जिसका नाम है अरे दीवानो मुझे पहचानो, तो क्या आप उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, आप एक्साइटेड आंसर देने के लिए?
7: जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
2: तो सबसे पहले आप बताइए कि अच्छाई क्या है आप में?
7: मतलब मुझे एकदम से गुस्सा नहीं आता, जैसे बहुत से लोग एकदम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आता जल्दी से।
2: मतलब हम कह सकते हैं कि आपका पेशेंस लेवल जो है वो बहुत हाई है, आपको बहुत कम गुस्सा आता है।
7: जी, बहुत कम ही गुस्सा आता है।
2: और आप एक और बात बताइए मुझे कि आपकी एक बुराई क्या है कि जो आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे अपने आप में चेंज करनी चाहिए या ये कोई अच्छी बात नहीं है?
7: मेरी बुराई है, मतलब मैं एकदम इमोशनल हो जाती हूँ, कोई भी मुझे इतना सा भी कुछ बोलेगा एकदम इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज्यादा।
2: अच्छा, मतलब आप कहने का मतलब आपका ये कि आपको बहुत जल्दी रोना आ जाता है।
7: एक बात तो है राशि, लड़कियों की कमियां या लड़कियों में सभी में होती है, हर छोटी छोटी बातों पे एकदम से ऐसे इमोशनल हो जाती है जैसे बहुत बड़ी कोई बात हो।
2: तो नंदनी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच।
7: वेलकम।
2: हेलो दोस्तों, तो हम मिल गए हमारे अगले साथी से। सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम।
8: अभिषेक त्रिपाठी।
2: तो हम आपसे, हमारा एक सब सेगमेंट जाता है हुबहू, कौन है जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में आइडियल मानते हैं?
8: मेजर सुधीर वालिया।
2: तो क्यों, ऐसा क्यों है कि आप उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं? दुनिया में इतने लोग हैं, उनकी तरह आप नहीं बनना चाहते?
8: क्योंकि वो इंडियन आर्म फोर्सेस में मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स में से एक थे और उन्होंने यूएस में एक इवेंट में पार्टिसिपेट करा था जहां उन्हें स्पेशल अवार्ड मिला था जो इंडियन आर्म फोर्सेस में शायद किसी को नहीं मिला।
2: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप हमारे सेगमेंट के साथ जुड़े, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के शुरू में हमने एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट, डेली सेगमेंट बूझो तो जाने के अंतर्गत आपसे एक सवाल किया था। भारत छोड़ो आंदोलन,
1: दोस्तों सवाल था भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई, और इसका सही जवाब है 1942। तो आइए जान लेते हैं इसी के साथ सही जवाब देने वाले सभी लिसनर्स के नाम। नारायण प्रधान, रियासत हुसैन सिद्दीकी, महेंद्र मोदी, शाहजी भोड़के, शाहरुनूर अंसारी, आसिफ चौधरी, नरेंद्र शर्मा, शेख मूसा, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अनिल विनोचा, अनिल बी घोड़के, गजानन येले, सुरेश गगनेजा, आफताब अंसारी, भुवन प्रकाश, अल्ताफ उजरे, राजेश वर्मा, निसार सलमानी, कैलाश, अरविंद कुमार, नवी हसन अब्बासी, राधेश्याम पांडे, एम अफजल ताज, एम खलील कुरैशी, शमसूल कमर, सदाशिव थौरात, नानक खन्ना, बलवंत कुमार, रामशरण, मुजफ्फर अली खान, गंगा सिंह रावत, एम डी यासीन अंजान, राजकुमार धीरज भाई, लाल मोहम्मद अंसारी, प्रवीण चौहान, संजय डिग्निया, बी कमल, फागुराम यादव, सिद्धार्थ राजपाल गजभे, शकील अहमद इदरीसी, जाकिर मंसूरी, तुलसी मस्कीन, आकाश रस्तोगी, उत्तम कुमार, रविंद्र कुमार, विजय सुलरकर, सुरेश खुराना, विठल सुरेशे, मोहम्मद सईद अब्बासी, बी आई धाकड़, गुरमीत सिंह, राम कुमार रेवाड़, जगदीश धाकड़, देवशंकर तामूरिया, नदीम बाकी, हीरामणि वर्मा, बबलेश पवार, फरियाद हुसैन, फनेश चंदन, नंद कुमार ठाकुर, सुदर्शन शाह, धर्मेंद्र छीपा और जॉन डिकैस्ट्रो।
0: तो चलिए दोस्तों, आपका हमारे प्रोग्राम में अपने जो कमेंट है मैसेज करने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपको छोड़ देते हैं अगले गीत के साथ।

दोस्तों ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा

0: केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
1: और दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियां आने वाले प्रोग्राम आप यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों आप लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों
0: इसी के साथ अपनी साथी सना और राशि को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
2: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभराए। वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप

0: इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक दो सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत

कृषि जगत कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को भैया जितेंद्र कुमार की राम राम। और भाई सब राज्य खुशी? देखो भाई सब ठीक ठाक होंगे और हमारे भाइयों की खेती किसानी भी ठीक ठाक चल रही होगी। भाई देखो अगर अच्छी गर्मी हो जाहा तो हमारे किसान भाइयों की जो फसल है ना वो ठीक ठाक हो जाए कर। भाई जल्दी बारिश हो जाहा तो हमारे गन्ने की जो फसल है, मान लो भैया 75 किसान भाइयों ने लगाई थी गेहूं की कटाई के बाद, भैया उसमें अगर इतनी बारिश हो जाहा तो भैया वो थोड़ा सा एक उसकी पैदावार में उसके उत्पादन में हमारे किसान भाइयों को नुकसान हो जाहा। तो भाई देखो जब मौसम ठीक हो जाहा तो हमारे भाइयों की पैदावार में कुछ बढ़ोतरी हो जाए कर। खैर भाई देखो गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी का मौसम भी ऐसी गर्मी हो रही है कि भाई बाब बुझो मत, गर्मी में रुका नहीं जा रहा। तो भाई हम तो किसान भाइयों से यो बात कहेंगे कि भाई वो अपनी सेहत के साथ साथ भैया अपने पशुओं का भी ध्यान रखें, क्योंकि भाई जब हमारी सेहत ठीक रहेगी कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा भाई तो हम तभी तो खेती किसानी के काम करेंगे। तो भाई आप अपनी जब भी खेत पर जाएं तो भैया एक पानी का इंतजाम रखें, यानी कि पानी की बोतल या पानी का डिब्बा, जिस तरह जिसमें भी आप पानी अपने खेत पर अपने आसपास ले आते हों भैया वो पानी का व्यवस्था अपने पीने की रखें। साथ ही साथ एक सिर पर रखने के लिए भैया कपड़ा, तौलिया या अंगोच्छा इस तरह का, इस टाइप का जरूर होना चाहिए ताकि भैया आपको सीधे जो है सूर्य की जो किरणें हैं वो प्रभावित ना कर सकें। दूसरे भैया हर घंटे में आप पानी पीते रहें और भैया पानी की कमी ना होने दें। साथ ही साथ भाई जब बात पशुओं की आती है, क्योंकि भाई हमारा खेती किसानी का काम है और भैया पशुपालन जो है वो एक दूसरे के पूरक

0: व्यवसाय हैं, क्योंकि बिना खेती के पशु अधूरे हैं और पशुओं के बिना खेती अधूरी है। तो भाई खेती में जब पशु हमारे काम कर रहे हैं तो भाई उनका ध्यान भी हमें रखना हो। तो भाई ध्यान हमें पशुओं का किस तरह से रखना है, भाई सुबह को आप जल्दी जो है पशुओं को बाहर बांधें, और भैया लगभग 9:30-10 बजे से पहले ही पहले भैया पशुशाला में पशुओं को अपने बांध दें। अब बांधना कैसा है भाई, उन्हें हमें नहवाना है और भैया साथ ही साथ ताज़ा साफ सुथरा पानी पिलाना है, उनके चारे खाने दाना मिश्रण की भी हमें ख्याल रखना है, क्योंकि भाई पशु जो होते हैं हमारे वो जो है हमसे कह तो सकते नहीं। तो भाई उनके हवादार पशुशाला में ध्यान रखना, यानी कि पंखा लगा होना चाहिए पशुशाला में ताकि भैया उन्हें गर्मी ना सतावे। तो इस तरह से भैया आप जो है अपनी पशुशाला का अपनी सेहत का भैया ध्यान रखें। और पशुओं की जब बात आती है भैया दुधारू पशुओं का, जब हम शाम को दूध दूधना बैठे हैं तो भाई उनके आसपास भैया मक्खी मच्छर लगन लगे हैं उन्हें, तो भैया उनके आसपास आप धुआं आवश्यक रूप से कर दें ताकि भैया पशु हमारा जो है हम पर्याप्त दूध दे सके। क्योंकि भाई जब पशु को हमारे मक्खी मच्छर लगो जहाँ तो भाई वो पूरा दूध हम नहीं दे पाता है, वो असहज महसूस करेगा। तो इस तरह से हम विशेष ध्यान अपने पशुओं का गर्मी के मौसम में रखना है, और आने वाला मौसम बरसात का है तो भैया उससे पहले पहले यानी कि बरसात आने से पहले पहले आप भैया अपने पशुओं में टीकाकरण आवश्यक रूप से करा दें। तो भाई देखो वैसे तो हमारे सभी किसान बहन भाई जागरूक भी हैं और समय से सारे काम भी पूरे करते हैं, लेकिन भाई देखो जागरूकता तभी जरूर समझ में आती है जब आप अपने पशुओं को समय से भैया सुरक्षित रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी खेती किसानी से अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। देखो भाई बातचीत तो हम और भी करेंगे, साथ ही साथ किसान भाइयों का मनोरंजन भी कराएंगे, लेकिन भाई कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: तो भाई संदेश के बाद एक बार फिर हमारे किसान भाइयों का स्वागत है, और भाई देखो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। भाई इस योजना के तहत तुम्हारे किसान भाइयों को क्या क्या लाभ मिल गया है, तो सबसे पहले हम बात यही करेंगे किसान भाइयों को कि भाई हमें जो है सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई ये योजना कौन से मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। तो भाई देखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। साथ ही साथ भाइयों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुछ ऐसी सूची बनाई गई है जिसमें भैया यो पता लगता है कि कौन हमारे किसान भाई पात्र हैं और कौन अपात्रता की सूची में आते हैं। तो भाइयों इस योजना के तहत तुम्हारे किसान भाइयों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जाती है। ये सहायता राशि 2,000 रुपये भैया 3 किस्तों में सालाना दी जाती है, यानी कि 2,000, 2,000, 2,000, यानी कि 3 बार किस्त हमारे किसान भाइयों के बैंक खाते में सीधे आती है। और भाई अब बात करेंगे हम कि कौन हमारे भाई इस योजना में पात्र होते हैं, कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और भैया कौन इस योजना के तहत अपात्र होते हैं। तो भाइयों ऐसे किसान परिवार जिनके नाम राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में खेती योग्य जमीन दर्ज है लेकिन वो किसी संवैधानिक पद यानी कि भैया किसी पद पर नहीं है, या जनप्रतिनिधि परिवार से न हों, और सरकारी कर्मचारी केंद्रीय एवं राज्य सरकार के के मंत्रालय या स्थानीय निकाय के सेवानिवृत या सेवानिवृत अधिकारी न हो। भाई वो ऐसे किसान हैं, वो भैया वो पात्र किसानों की श्रेणी में आते हैं। और भाई एक साथ और है, एक बात और है थोड़ी सी, कि भैया जिन किसान भाइयों के पास भैया संवैधानिक पद है, साथ ही साथ भैया वो जनप्रतिनिधि परिवार से हैं और भाई केंद्रीय या राज्य सरकार के तहत तो भैया वो पद रखते हैं, तो भाई वो जो है इसमें अपात्रता की सूची में आते हैं। दूसरे भाइयों, पहले ये योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी, अब भैया जमीन की ऊपरी सीमा हटा दी गई है। जिनका भूमि सत्यापन हो चुका है पीएम किसान पोर्टल पर ई केवाईसी द्वारा, बैंक और आधार कार्ड खाता दोनों एक जगह जुड़े हुए हैं, तो भाइयों वो जो है इस योजना के तहत पात्र होते हैं। दूसरे भाई, जो भैया सरकारी कर्मचारी ग्रुप डी के हैं भाई, वो भी इस योजना के तहत पात्र होते हैं। यदि जमीन किसी संस्था, अगर अपात्र की हम बात करें तो भाई जमीन किसी संस्था के नाम हो या ट्रस्ट कंपनी के नाम हो, तो भैया वो जो है अपात्रता की सूची में आते हैं। दूसरे भाई, यदि हमारे किसान भाई आयकर दाता हों, यानी कि ITR भरते हों या आयकर देते हों, भाई वो भी इस योजना में पात्र नहीं होते हैं। साथ ही साथ जो भैया पेशेवर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, चार्टेड अकाउंट हैं, आर्किटेक्ट हैं, जो कि पेशेवर संस्था से पंजीकृत हैं भाई, या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भैया वो भी जो है इस पीएम किसान सम्मान निधि में अपात्रता की सूची में आते हैं। साथ ही साथ भाई एक बात और है छोटी सी इसमें, कि भाई एक ही परिवार के पति पत्नी दोनों अलग अलग, मान लो दोनों के नाम जमीन है और भैया दोनों को ही भैया पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिल सकती है, एक ही उसके अंतर्गत पात्र होता है। और भाई एक बात और है कि जो भैया हमारे 60 साल से ऊपर हमारे किसान भाई हैं या भैया सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 या उससे अधिक है भाई, केवल ग्रुप डी को छोड़कर भाई वो भी इस योजना के तहत अपात्रता की सूची में आते हैं। तो भाई इस तरह से जो भी किसान भाई इसमें पात्र और अपात्र हैं, वो भैया अपनी खोजबीन निकाल कर भैया उसमें अपना KYC करा कर भैया अपना फार्म भर सकते हैं, अगर आप पात्र हैं तो। तो किसान भाइयों, आप पीएम सम्मान निधि का लाभ ले सकते हैं। अब भाइयों बात करेंगे हम खेती किसानी की, भैया ये तो हो गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में, ताकि भैया किसान भाइयों को जागरूकता हो कि भैया वो पात्र हैं या नहीं हैं, ताकि भैया वो भविष्य में भ्रमित न हों और भैया आप इस योजना का लाभ ले सकें। तो भाई देखो, हम खेती किसानी कर रहे हैं और खेती किसानी का भी हमारा प्रोग्राम है और खेती किसानी की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज भैया हम खेती किसानी में लागत खूब लगा रहे हैं, तो भाई लागत से मतलब यो है कि भैया फसल तो हम मौसमी उगा रहे हैं, लेकिन भैया लागत खूब लगा रहे हैं, फिर भी भैया लागत के अनुरूप हमें उत्पादन नहीं मिल रहा है। तो भाई आज हम बात करेंगे पॉली हाउस खेती के महत्व के संबंध में। भाइयों सबसे पहले पॉली हाउस जो होता है भैया, उसमें जो है हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि भैया पॉली हाउस होता क्या है। तो भाई वैसे तो हमारे सभी किसान बहन भाई जागरूक हैं, तो लेकिन फिर भी भैया हमारा बताने का काम है, किसान भाइयों को बता देते हैं कि भाई एक पॉली हाउस जो होता है वो भैया एक ऐसा ढांचा होता है जिसको कि प्लास्टिक सीट से ढक दिया जाता है। इसमें भैया सूर्य की किरणें सीधे पौधों को प्रभावित नहीं करती हैं। भाइयों पॉली हाउस के फायदे यदि हम बात करें तो भाई पॉली हाउस बहुत ही आधुनिक कृषि की एक बहुत ही क्रांतिकारी तकनीक है, क्योंकि ये फसलों को बाहरी मौसम, कीटों, बीमारियों से सुरक्षित रखकर साल भर उच्च गुणवत्ता वाली उपज और भैया सामान्य से 5 से 10 गुना अधिक उत्पादन हमारे किसान भाइयों को इसके द्वारा मिलता है। भाइयों अगर पॉली हाउस खेती के लाभ की हम बात करें, क्योंकि भाई देखो हम शुरुआत में जब भी किसी और जाते हैं या तकनीक के ओर जाते हैं, तो भाई देखो वहाँ थोड़ा बहुत खर्चा तो होता जरूर है, लेकिन भाई उसके लाभ अनेक होते हैं। भाई यदि हम खर्चे को देखेंगे तो फिर तो भैया हम जो है उत्पादन अच्छा नहीं ले सकते हैं, लेकिन भाई यदि खर्चे के साथ साथ, क्योंकि एक चीज और भी है, हमें जानकारी होनी चाहिए, पॉली हाउस यदि आप लगाते हैं तो भाई सरकार द्वारा भी इस पर छूट दी जाती है। भाई वो आप अपने कृषि विभाग द्वारा संपर्क करके छूट प्राप्त कर सकते हैं और पॉली हाउस की खेती कर सकते हैं। भाई देखो इसमें जो है आप मौसमी सब्जियां तो उगाई सकते हो, साथ ही साथ भैया टेम्परेचर नियंत्रित करके भैया उसमें जो है आप जैसे बेमौसमी सब्जियां हैं या बेमौसमी फसल हैं उनकी भी खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि भाई हमने देखा अक्सर कि भाई बेमौसमी जो सब्जियां होती हैं या बेमौसमी फसलें होती हैं या फल होते हैं भाई उनका जो रेट है बाजार में वो अधिक मिलता है, तो भाई पॉली हाउस लगा कर आप इसका लाभ ले सकते हैं किसान भाइयों।

0: हाउस से भैया मौसम यानी कि आंधी, बारिश, पाला और अत्यधिक धूप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भैया हमारी फसलों की सुरक्षा रहती है। साथ ही साथ भाई उत्पादन और गुणवत्ता की यदि हम बात करें तो भाई देखो नियंत्रित वातावरण मिलने से पौधे तेजी से बढ़ते हैं, जिससे भैया फसल की पैदावार पारंपरिक खेती से अधिक उत्पादन और गुणवत्ता वाली होती है। किसान भाइयों, इसमें आज हम जल का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं तो भाई उसको देखते हुए भैया पॉली हाउस की खेती में भैया ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिंचाई द्वारा भैया पानी का उपयोग किया जाता है, तो पानी की लगभग 40 से 50% मात्रा हमारी या बचत हो जाती है। किसान भाइयों, कीटों और रोगों की सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि भाई बाहर के कीट, वातावरण के कीट अंदर नहीं आ पाते हैं पॉली हाउस में, तो उससे भैया हमारे किसान भाइयों का कीटनाशकों पर होने वाला खर्च बच जाता है और भाई वर्ष भर हमारे किसान भाइयों को आय मिलती रहती है। भाइयों, वर्ष भर आय से मतलब यो है कि आप जो है उसमें चक्र अनुसार खेती करते रहते हैं, फसल चक्र अपनाते रहते हैं और भाई आपको बराबर आमदनी होती रहती है। किसान भाइयों, मुख्य रूप से पॉली हाउस में भैया शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, स्ट्रॉबेरी, गेंदा इत्यादि की खेती आप करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, यो तो बात हो गई भैया पॉली हाउस की खेती के महत्व की। अब भाई देखो खेती किसानी से जुड़ी और भी बात करेंगे, लेकिन भाई पहला कार्यक्रम में सुनते हैं ये थोड़े से प्रोमो।
1: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
2: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
1: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
2: खुशहाली का नया प्रयोग।
3: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
0: भाइयों ने ये भैया प्रोमो सुने, अब भाई कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। भाइयों, आज हम खेती किसानी में देखो कितना अधिक यूरिया, कितना अधिक डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं। भाई बराबर वाले खेत वाले ने भैया हम जो है एक यूरिया कट्टा डाला तो हम ये सोचा कि भाई हम 1.5 कट्टा अपने फसल में डालना, ताकि भैया हमारी फसल जो है इससे कमजोर ना रह जाए, इससे भैया अधिक उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिले। तो भाई ऐसी होड़ हम नहीं करनी है, हम होड़ वो करनी है जिससे उत्पादन हम अच्छा मिले और लागत हमारी कम हो। तो भाई लागत हमारी कम कैसे होगी? भाई लागत हमारी कम जब होगी जब भाई हमारे किसान भाई रासायनिक जो उर्वरक हैं भैया उन पर होने वाला खर्च से बच सकेंगे। और भाई उर्वरकों पर जो हो रहा है खर्च, उससे हमारे किसान भाई कैसे बचेंगे? भाई आप जो है अपनी फसलों पर 1 कट्टा डालने के बजाय, मान लो आपको 1 कट्टा भैया 40-45 किलो का यूरिया का मिला है, आप उसका फॉलियर स्प्रे करें अपने खेतों में अपनी फसलों पर, तो भाई वो लगभग 4 किलो में और 5 किलो यूरिया में ही हो जाएगा। तो भाई इस तरह से आपकी लागत भैया बच जाएगी, इस तरह से आप खेती किसानी करेंगे तकनीक द्वारा तो आपको अच्छा लाभ होगा। तो भाई एक ऐसी जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं, भाई जानकारी का विषय है समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन द्वारा बाजार आधारित उर्वरकों जैसे कि यूरिया डीएपी के उपयोग में कमी लाने के संबंध में। भाई जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर फूलचंद जाट, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में, और भाई उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया सुवेंद्र सिंह। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
4: भाइयों, हम खेती बाड़ी करते हैं और ये चाहते हैं कि हमें अपनी फसलों से बढ़िया उत्पादन मिल सके, अच्छा लाभ मिले, और इसलिए समेकित कृषि प्रणाली अपनाना बहुत ही आवश्यक है। और इसके माध्यम से जो हमारे उर्वरक हैं जैसे यूरिया है, डीएपी है, इनके उपयोग में भी कमी आ सकती है। तो समेकित कृषि प्रणाली क्या है और समेकित कृषि प्रणाली के द्वारा हम किस तरीके से अच्छा लाभ ले सकते हैं, अच्छी खेतीबाड़ी कर सकते हैं, कैसे उर्वरकों की कमी हम कर सकते हैं, तो इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फूलचंद जाट, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: तो देखिए डॉक्टर साहब, ये जो समेकित कृषि प्रणाली की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो कृषि प्रणाली है ये क्या है, इसको हमारे किसान भाई किस तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं?
5: देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है
4: जी,
5: जहाँ लगभग आधी से अधिक संख्या प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हरित क्रांति के बाद आप जानते हैं कि देश में कृषि करने के लिए रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया डी

0: पी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था।
1: जी
0: प्रारंभिक वर्षों में इन उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई, लेकिन समय के साथ साथ इनके अत्यधिक व असंतुलन उपयोग से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई, जो आज हमारे किसान भाई उसको समस्याओं से उलझे हुए हैं, जिनमें मिट्टी की उर्वरता में गिरावट आई है, जल प्रदूषण बढ़ा है, भूमि की गुणवत्ता में कमी आई है और पर्यावरण असंतुलन तथा किसानों की उत्पादन लागत में वृद्धि जैसी समस्याएं आज गंभीर रूप ले चुकी है। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मैनेजमेंट एक प्रभावी एवं टिकाऊ उपाय के रूप में सामने आया। ये कृषि प्रणाली के विभिन्न घटकों को एक दूसरे से जोड़कर प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने पर आधारित है। इसके माध्यम से किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरकों के निर्भरता में कमी की जा सकती है तथा कृषि को पर्यावरण के अनुकूल व लाभकारी बनाया जा सकता है।
1: देखिए बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जो हमारी खेती बाड़ी है उससे हमें अधिक लाभ लेने के लिए जो हम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं उससे जो हमारे खेत की मिट्टी है, जो खेत की उर्वरता है, वो कम होती जा रही है, साथ ही जल प्रदूषण होता जा रहा है। और इसके समाधान के लिए समेकित कृषि प्रणाली ये एक कारगर साबित हो सकती है, अच्छा उपाय हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं कि ये समेकित कृषि प्रणाली क्या है और इसका प्रबंधन किस तरीके से हमारे किसान भाई कर सकते हैं।
0: किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन ये एक पारंपरिक और पुराने समय से प्रचलन में है, लेकिन इसको साइंटिफिक तरीके से किसान भाई नहीं अपना रहे। तो इसमें क्या है कि समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन का अर्थ है खेती के साथ पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी तथा जैविक संसाधनों को जोड़कर ऐसी कृषि व्यवस्था विकसित करना जिसमें एक इकाई का अपशिष्ट यानी एक एक घटक का अपशिष्ट दूसरी इकाई के संसाधन बन सके। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, लागत में कमी, आय में वृद्धि और टिकाऊ कृषि विकास सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए पशुओं से प्राप्त गोबर एवं जैविक अपशिष्टों का उपयोग कंपोस्ट एवं वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाता है। इससे खेती को प्राकृतिक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता में कमी हो सकती है। यहाँ तक कि 50-60% तक जो रासायनिक उर्वरक है उनमें कमी की जा सकती है और अपने पर्यावरण, जल और किसान की आमदनी लगातार बनाए रखी जा सकती है।
1: जी बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो समेकित कृषि प्रणाली है उसका मतलब यह है कि हमारे किसान भाई खेती के साथ साथ जो हम पशुपालन करते हैं वो भी हम करें, साथ ही बागवानी भी करें, मत्स्य पालन करें, मधुमक्खी पालन करें और कृषि वानिकी को भी हम अपनाएं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें खेती से जुड़ा हर व्यवसाय करना है और इस तरीके से हमें खेती बाड़ी को करना है कि हमारी जो उपयोग है, जो हम अपनी मिट्टी का उपयोग करते हैं उसमें उर्वरकों को हम डालते हैं, वो कम से कम

मत्स्य पालन करें, मधुमक्खी पालन करें और कृषि वानिकी को भी हम अपनाएं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें खेती से जुड़ा हर व्यवसाय करना है और इस तरीके से हमें खेतीबाड़ी को करना है कि हमारी

0: जल की गुणवत्ता खराब होती है और जलीय जीवों पर कुप्रभाव पड़ता है। तीसरा है उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जब किसान भाई बाजार आधारित उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग करेगा तो कीमत लगातार बढ़ती रहती है। इससे किसानों की खेती की लागत बढ़ती जाती है और मुनाफा कम होता जाता है। इसी प्रकार मानव स्वास्थ्य पर भी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है रासायनिक रूप से, कि उनके खाद्य पदार्थों में रासायनिक अवशेष बढ़ जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए हानि। तरह तरह की आजकल जो बीमारियां किसान भाइयों में या मनुष्य में जो है या पशुओं में देख लो, तो ये अधिक उपयोग से रासायनिक उर्वरक के अधिक उपयोग से ये आजकल ये प्रभाव देखा गया है।
1: जी बिल्कुल, देखिए अत्यधिक जो हम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, इससे ये समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। जो हमारी मिट्टी है वो बीमार हो रही है, साथ ही पर्यावरण भी इससे प्रदूषित हो रहा है और फसल उत्पादन में भी जो है इसमें लागत में हमारी वृद्धि आ रही है और मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। कई तरीके की बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें संतुलित मात्रा में इन रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना है, उर्वरकों का इस्तेमाल करना है। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हमारे किसान भाई यूरिया और डीएपी जैसे जो रासायनिक खाद हैं, उर्वरक हैं, इनका इस्तेमाल कम कर सकते हैं।
0: किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली के द्वारा अपन डीएपी और यूरिया की कई प्रकार से कमी कर सकते हैं, जैसे कि जैविक खादों का उपयोग अधिक से अधिक करें, जिसमें गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद का अधिक उपयोग करना चाहिए। ये खादें मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाती है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कराती है।
1: जी,
0: जिसमें गोबर की खाद है कि अपन सभी जानते हैं कि गोबर की खाद मिट्टी की संरचना में सुधार करती है, जल धारण क्षमता बढ़ाती है, सूक्ष्म पोषण तत्वों की उपलब्धता बढ़ाती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता में भी वृद्धि करता है। इसी प्रकार वर्मी कंपोस्ट जो केंचुओं के द्वारा तैयार की जाती है वो पौधों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है तथा यूरिया डीएपी की आवश्यकता को बहुत अधिक मात्रा में कम कर देती है। यानी कि अगर वर्मी कंपोस्ट को ही अगर किसान भाई 4 से 5 टन प्रति हेक्टर, वो भी है फसलों के अनुसार, अगर किसान भाई डालता है तो मैं तो कहता हूँ कि 70 से 80% आपको रासायनिक उर्वरक की निर्भरता से आप कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उन पे रासायनिक खादों पे निर्भर रहो और आप वर्मी कंपोस्ट से ही आपके अपनी अच्छी फसल ले सकते हैं।
1: जी,
0: दूसरा है फसल चक्र भी अगर किसान भाई अपनाते हैं तो उससे भी फसल लगातार एक फसल उगाते हैं तो पोषक तत्व कमी होती है, जबकि फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की का संतुलन बना रहता है और उसमें दलहनी फसलों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। फसल चक्र में जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, उड़द है, इनसे कि ये फसलें क्या करती है कि नाइट्रोजन जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी में स्थिर करती है और इससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है और यूरिया की आवश्यकता कम हो जाती है। जैसे कि गेहूं के बाद मूंग की खेती, धान के साथ अरहर की मिश्रित खेती करने से जो यूरिया की आवश्यकता होती है उस पे में बहुत कमी आ जाती है। और दूसरा है किसान भाई जैविक उर्वरकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि जिसमें प्रमुख जैव उर्वरक हैं जैसे राइजोबियम कल्चर है, एजोटोबैक्टर कल्चर है, एजोस्पिरिलियम कल्चर है और पीएसबी
1: जी
0: जो फास्फेट घुलनशील जीवाणु होते हैं, अगर इनको अगर अपन बीज में मिला के या मिट्टी में अगर मिलाते हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है, रासायनिक उर्वरक की बचत होती है, पर्यावरण संरक्षण होती है, उत्पन्न लागत में कमी होती है। और मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक प्रबंधन है, इसमें है कि किसान भाई जो भी अगर रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं वो मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, इससे उसकी जो असंतुलित मात्रा में जो किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की देखा देख में अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उनसे बचा जा सकता है और अपना जो लागत है लागत में कमी की जा सकती है और उनसे किसान भाइयों को एक अच्छा मुनाफा होगा और लागत में कम। तो मृदा परीक्षण से भी कई प्रकार के लाभ होते हैं किसान भाइयों को कि आवश्यकता अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, उर्वरक की बचत होगी, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जा सकती है और फसल उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। और सरकार द्वारा आप जानते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को संतुलित उपयोग करने के लिए ये दिया जा रहा है
1: जी।
0: और तो इसे किसान भाइयों को एक संतुलित मात्रा में उर्वरक डालने के लिए

0: के माध्यम है और उसकी जानकारी उसको रखने के अनुसार उसको अपनी मिट्टी में डालना चाहिए।
1: बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें गोबर के खाद का इस्तेमाल करना है, साथ ही फसल चक्र हमें अपनाना है और जो हमारे जैविक उर्वरक है उनका भी हमें इस्तेमाल करना है, साथ ही मिट्टी की जांच बहुत ही जरूरी है। हमारे किसान भाइयों की मिट्टी की जांच भी करवानी है ताकि जो हमारे खेत की मिट्टी की रिपोर्ट है वो हमें मिल सके, सही दशा का हमें पता चल सके। और देखिए डॉक्टर साहब, इसमें हरी खाद की भी बात कही जाती है, तो हरी खाद हमारे लिए कितने मायने रखती है डॉक्टर साहब इसमें?
0: देखो हरी खाद जैसा कि किसान भाई, हम तो ये भी कहते हैं कि किसान भाइयों को गर्मियों में जो भी खरीफ फसल बो रहे हैं उससे पहले हरी खाद का उपयोग जरूर करना चाहिए,
1: जी
0: जिसमें ढेंचा है, सनई है, और कुछ स्थानों पे गंवार भी बोते हैं जिसको क्लस्टर बीन बोलते हैं,
1: जी
0: उसको किसान भाई गर्मी में बो और फसल जब 45 दिन की

0: प्राकृतिक पूर्ति होती है, यूरिया की आवश्यकता में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों को हरी खाद जरूर लेना चाहिए, साल में एक बार एक फसल में हरी खाद प्रयोग जरूर करना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो देखिए डॉक्टर साहब, हरी खाद हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और इस समय हमारे किसान बहन भाइयों ने हरी खाद की बुआई कर दी है। सुने, ढैंचा की बुआई हमारे भाइयों ने कर दी है और ये फसल हमारे खेत में खड़ी है, जिसके पलटा ही हमारे भाई उसको सही समय आने पर उसकी होगी। और देखिए, हरी खाद भी हमारे किसान भाई ले रहे हैं, मृदा परीक्षण भी करवाते हैं। और डॉक्टर साहब, क्या संदेश, क्या राय आप हमारे भाइयों को देना चाहेंगे कि जिससे हमारे किसान भाई जो यूरिया है, जो डीएपी है, इसका कम से कम इस्तेमाल करें, इसके लिए किसान भाई आ गए हैं, इस पहल को अपनाएं, तो क्या आप राय देना चाहेंगे हमारे भाइयों को?
0: किसान भाइयों, मैं यही कह सकता हूँ कि समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन भारत में यूरिया डीएपी जैसे बाजार आधारित उर्वरकों के उपयोग को कम करने का एक प्रभावी और टिकाऊ उपाय है। अतः आप ये समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन जरूर अपने खेत में, और मैं तो कह रहा हूँ कि ये छोटे और जो मध्यम किसान होते हैं तो वो इसको अपनाएं, जिससे उसका जीवन यापन अच्छी तरह गुजर सके और जैविक खादों, फसल चक्र, जैव उर्वरकों, मृदा परीक्षण, सूक्ष्म सिंचाई एवं पशुपालन जैसी तकनीकों को अपनाकर किसान रासायनिक रूप में अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता एवं पर्यावरण की सुरक्षा होगी, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। वर्तमान समय में टिकाऊ कृषि विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समेकित कृषि प्रणाली को व्यापक स्तर पर अपनाया जाना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिल्कुल, तो इस तरीके से हमारे किसान भाई अपने खेतों में गोबर की कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही फसल चक्र अपनाएंगे और जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हमारे भाइयों को मिट्टी परीक्षण करवाना है और मुख्यतः जो है हरी खाद का इस्तेमाल करना है। तो ये सारे मुख्य अवयव हैं जो हमारी समेकित कृषि प्रणाली है, तो इसको हमारे किसान भाई अपनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में और आपने समेकित कृषि प्रणाली के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, यूरिया और डीबी के इस्तेमाल कम करने के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। अभी हमारे किसान भाइयों ने ये जानकारी सुनी। वही विषय था समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन द्वारा बाजार आधारित उर्वरकों जैसे यूरिया डीएपी के उपयोग में कमी लाने के संबंध में। किसान भाइयों, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर फूलचंद जाट। और भाई देखो, कितनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई है कि भाई आप जो है अपने खेतों में भैया यदि उर्वरकों का कम प्रयोग करना है, जैसे यूरिया डीएपी कम डालने हैं, तो भाई आप हरी खाद का प्रयोग करें, दलहनी फसलों का प्रयोग करें, साथ ही साथ फसल चक्र अपनावें। और भैया देखो, डॉक्टर साहब ने बताया कि आप मिट्टी की जाँच आवश्यक रूप से कराएं। भाई देखो, मिट्टी की जांच करा कर हमें यह पता लग जाता है कि हमारे खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है और कौन से पोषक तत्व की अधिकता है। तो भाई इस तरह से यदि आप अपने खेतों में समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन अपनाएंगे तो आप अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे और भैया अपनी खेती किसानी से अच्छा लाभ कमाएंगे। भाई बात जब लाभ की होती है तो लाभ एक और चीज से होता है, वो है भैया गीत संगीत। तो किसान भाइयों, आइए लिए चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर और सुनते हैं भ्रूण हत्या पर आधारित ये प्यारी सी रागनी।

मत पाप कमाओ। अभी भाइयों ने कन्या भ्रूण हत्या पर कुलदीप सिंह व साथियों से यो प्यारी सी रागनी सुनी। भाई उम्मीद करते हैं किसान भाइयों की दिन भर की थकान उतर गई होगी। और भाई देखो, हमारी धी बेटी को कभी भी हमें इस काम को नहीं करना चाहिए, यानी कि भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। गर्भ में भैया क्या बच्चा है, इसका हमें लिंग परीक्षण कभी भी नहीं कराना चाहिए। तो भाई देखो, इस रागनी के माध्यम से यही संदेश हमारे सभी माताओं बहनों को, हमारे किसान भाइयों को मिला है। और भाई अब घड़ी भी हमें इस ओर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाजत किसान भाइयों से बिल्कुल नहीं दे रही है। तो भाइयों, ये मौसम की चिट्ठी हमें मिली है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ से। भाई चिट्ठी के अनुसार जिला बिजनौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में आने वाली 14 तारीख तक, भैया देखो, हो सकता है 2-3 दिन

में भैया आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। तो भाई आप मौसम को देखते हुए अपनी खेती किसानी के काम करें। जो भैया उद्यानिक हमारे किसान भाई हैं वो भैया सब्जियों की तुड़ाई मौसम को देखते हुए करें, क्योंकि भाई आजकल सभी के पास जो है उंगली से चलने वाले फोन हैं। तो भाई आप मौसम से अपडेटेड रहिए और भाई अपने खेती किसानी के काम समय से करते रहिए। भाई अब कार्यक्रम संपन्न करना है, तो भैया आपको हमारे कार्यक्रम क्या जानकारी चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो? तो भाई इसके लिए आप उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। भाई इस पते पर हमें आपके चिट्ठी पत्रों का इंतजार रहेगा। और भाई एक हमारा मोबाइल नंबर है जिस पर आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9457072888। भाइयों इसमें आप व्हाट्सएप पर लिख दीजिए कार्यक्रम कृषि जगत और आपकी जो भी समस्या हो या जो भी आप हमारे कार्यक्रम में सुझाव देना चाहते हैं या भैया कुछ सुनना चाहते हैं, तो भाई आप हमें लिख भेजिए इस नंबर पर। नंबर एक बार फिर नोट करें, 9457072888। भाई अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हुए हैं। विविधा क्रम में लीजिए सुनिए विश्व नेत्रदान दिवस पर विशेष भेंटवार्ता। सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के उपाध्यक्ष श्री गुरविंदर सिंह से प्रमोद सिंह की बातचीत। विषय है नेत्रदान महादान।
1: श्रोताओं नमस्कार। कहते हैं नेत्रदान महादान, ये बहुत जरूरी है। अगर हम किसी को इस संसार को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आंखें बहुत जरूरी हैं। और आंखें हमारे लिए कितनी जरूरी हैं, आंखों की देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे हम अपनी आंखों को किसी दूसरे व्यक्ति को देकर उसके जीवन में हम रोशनी ला सकते हैं, इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री गुरबिंदर सिंह जी, जो कि सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के फाउंडर सेक्रेटरी हैं और सीएल गुप्ता आई बैंक के वो वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ ही निर्मल आश्रम जो ग्रुप है उसके वो एडवाइजर भी हैं और इसी तरीके से वो समाज की सेवा करते चले आ रहे हैं और आप हम कहेंगे कि एक लंबे अरसे से इस काम से जुड़े हुए हैं। तो गुरबिंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद। मुझे भी आपके बीच आकर बहुत अच्छा लग रहा है और एक तरह से मैं कहूं तो मेरा जो मिशन है, मैंने अपने जीवन को इसके लिए समर्पित किया हुआ है, तो उसके लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है कि इस क्षेत्र के लोग जो आपके ऑडियंस हैं, जो लोग आपको सुनते हैं, उन लोगों तक हमारा ये नेत्रदान का जो संदेश है वो पहुंच जाएगा।
1: जी जी। अब देखिए, बात हम कर रहे हैं आंखों की। आंखें हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं और अभी जो हमने कहा कि नेत्रदान महादान, इस बारे में अगर हम जानना चाहें तो क्या कहेंगे आप? नेत्रदान हमें क्यों करना चाहिए, कौन कर सकता है और कैसे हम आंखों की देखभाल कर सकते हैं?
2: हमारे जो पुरातन ग्रंथ हैं, सनातन ग्रंथ हैं, उसमें आता है नेत्र सुरक्षा सर्वकालम यत्न पूर्वक यावत जीवन इच्छा। अर्थात हमें जब तक जीने की इच्छा हो हमें अपने नेत्रों की सुरक्षा यत्न पूर्वक कोशिश करके प्रयास करके करनी चाहिए। तो नेत्र की जो ये कॉर्निया होती है इसकी लाइफ परमेश्वर ने रखी है 150 साल। कोई व्यक्ति अगर अपनी भरी पूरी 70-80-90 साल की जीवन यापन करने के बाद भी इस दुनिया से कूच करता है तो उसके नेत्र किसी ना किसी कॉर्नियल ब्लाइंड को लग सकते हैं और वही काम हम कर रहे हैं। मैं 4,000 से अधिक नेत्रदान करा चुका हूँ।
1: अच्छा
2: जी,
1: ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप 4,000 से अधिक लोगों को रोशनी दे चुके हैं, संसार को दिखा चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात आपने की है। तो नेत्रदान कौन कर सकता है और हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
2: नेत्रदान कोई भी मनुष्य नेत्रदान कर सकता है, चाहे उसकी आयु कोई भी हो। अगर कोई छोटा बच्चा भी है तो वो भी नेत्रदान कर सकता है। 0 से लेके 10 साल तक उसके जो कॉर्निया होती है उसका जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है
1: जी।
2: और 10 साल से लेके फिर 100 साल, 110 साल, हमने 112, 14 साल तक के लोगों के, वृद्ध लोगों के भी नेत्रदान कराए हैं। और छोटे बच्चे, एक अर्जुन नाम का था उत्तराखंड में, उसका 7 दिन की आयु में ही उसका नेत्रदान हो गया था। तो ये कोई बैरियर नहीं है कि किस उम्र में होगा किस में नहीं होगा। कारण ये, जो छोटे बच्चों का कॉर्निया होता है उसका जो एक आपको दिखाई दे रहा है गोला जो होता है वो छोटा होता है, वो छोटे बच्चों में ही लगता है और बाकी 10 साल से ऊपर किसी को भी लग सकता है।
1: जी जी जी। तो नेत्रदान करने के लिए क्या करना होता है और कहाँ हमें संपर्क करना होता है?
2: नेत्रदान करने के लिए सबसे पहले भावना का होना जरूरी है
1: जी।
2: अगर कोई व्यक्ति अपने मन में यह संकल्प ले लेता है कि मैं मृत्यु उपरांत नेत्रदान करूंगा तो अपने परिवार के लोगों को, अपने परिजनों को बता देता है कि भी मेरी ये इच्छा है कि जब मैं मरूं तो मेरे नेत्रदान हो, तो वो नेत्रदान हो जाते हैं। क्योंकि चाहे उसने संकल्प लिया हो, चाहे उसके पास सर्टिफिकेट हो, आई कार्ड्स हो या ना हो, अल्टीमेटली जब उसका जो नेत्रदान होता है, नेत्रदान तो शब्द ही गलत है वैसे, कॉर्निया दान होना चाहिए, लेकिन किसी जमाने में इसको नेत्रदान कह दिया गया तो आज नेत्रदान के नाम से ही चला आ रहा है। कॉर्निया दान का मतलब होता है कि निकलती तो सिर्फ कॉर्निया है, कॉर्निया वो है जो हमारी आंख का सबसे अगला हिस्सा होता है। एक तरह से ये हमारी आंख की खाल होती है जो अंदर किसी भी इंसेक्ट को कोई मतलब इन्फेस्टेशन जो होते हैं, कोई इन्फेक्शन जो होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उन्हें जाने से रोकती है।
1: जी, जी, जी।
2: जैसे हमारी शरीर की स्किन होती है ऐसी ही हमारी आंख की स्किन होती है, पर ईश्वर ने इसे ट्रांसपेरेंट बनाया ताकि उसके अंदर से प्रकाश की किरणें आर पार जा सकें और हम अपने ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। कोई सामने वाला ऑब्जेक्ट है उसकी फोटो जब जाती है तो इसी के थ्रू होके हमारे अंदर जाके रेटिना पर उसकी इमेज बनती है। तो ये जब कॉर्निया किसी कारण से खराब हो जाती है तो आपने देखा होगा जाला, फूला, सफेदा, इस टाइप से हो जाता है और ये ट्रांस ओपेक हो जाती है और फिर कभी कभी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो उस स्थिति में यदि हमें कोई हेल्दी कॉर्निया मिलता है तो वो हिस्सा हम निकाल देते हैं और हेल्दी कॉर्निया उसको इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये नेत्रदान की पूरी प्रक्रिया हो जाती है, उसको निकालना और उसको इम्प्लांट कर देना। तो ये सेवा हम लगभग 27 साल से हम कर रहे हैं। शुरू शुरू में तो हमने प्रचार किया
1: जी, जी, जी।
2: लेकिन 2003 में हमने फुल फ्लैश अपना आई बैंक बना दिया।
1: देखिए अभी सिंह साहब आपने बताया कि हमें सबसे पहले नेत्रदान करने के लिए भावनात्मक रूप से तैयार होना पड़ेगा। हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति नेत्रदान करने के लिए तैयार है तो उसको संपर्क कहां करना पड़ेगा?
2: देखिए हमने एक फॉर्म होता है हमारा, उसके अंदर बहुत सारे एड्रेसेस दिए हुए हैं अपने जैसे लोगों के जो इसमें जुड़े हुए फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, समाज सेवी हैं, संगठन हैं, तो उनको कहीं भी संपर्क करें और उसके बाद में वो उनके पास से फॉर्म मिल जाते हैं। और हमने खुली छूट दी है कि इसको जीरोक्स करा के बांटे, क्योंकि ये एक मानवता की श्रेष्ठतम सेवा है। इसमें कोई वो अप्लाई नहीं होता रूल्स और रेगुलेशन, इसको जीरोक्स करा लें और उसको जीरोक्स करा के उसे भर दें, हो गया। और वैसे मैंने कहा जब मन में संकल्प ले ले कोई व्यक्ति, उससे ऊंचा कोई संकल्प ही नहीं होता।
1: देखिए सिंह साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि हम भावनात्मक रूप से तैयार होकर नेत्रदान कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बार ये हमें सोचना पड़ता है, कई जो व्यक्ति होते हैं उनकी आंखों में बहुत सारी तकलीफें होती हैं, कुछ जिनका कॉर्निया की आप बात कर रहे हैं वो खराब हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है या कोई दूसरी बीमारी लग जाती है, तो इन बीमारियों से बचने के लिए, आंखों की सही देखभाल करने के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी?
2: सबसे बड़ी चीज तो ये कि आंख, मैंने कहा उसकी सर्वकालम हर समय में उसकी सुरक्षा करनी है, तो अपने नेत्रों की सुरक्षा तो मनुष्य खुद ही कर सकता है
1: जी।
2: जब कभी भी अगर आंख में कोई भी दिक्कत महसूस हो तो सबसे पहले उसमें अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, उसमें कहीं भी आंखों के डॉक्टर के पास जाएं, अपना पूरा चेकअप कराएं और देखें कि इसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं पनप रही जो आने वाले समय में कोई बड़ा वो व्याधि बन के हमारे सामने आए। वो डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से जो ड्रॉप बताए, जो मेडिसिन दे, वो उसके हिसाब से उपचार होता है। हमारे यहाँ भी ऋषिकेश में भी हमारा इंस्टीट्यूट है जो यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर पर है, क्योंकि हमें तो 6 घंटे के अंदर अंदर जो कॉर्निया है मृत्यु के बाद उसको रिट्रीव करना होता है, फिर हमारे पास सॉल्यूशन होता है, उसमें रख सकते हैं। टाइम बड़ा क्रूशियल होता है। अब इसमें 6 घंटे से थोड़ी सी छूट दी गई है, अगर बॉडी आइडियल कंडीशन में रखी है, आइडियल कंडीशन के अंदर रखी है जहां पर डस्ट नहीं है, धूप नहीं है, धूल नहीं है, धक्कड़ नहीं है, और अगर जो आजकल चल गए हैं डीप फ्रीजर चल गए उसके अंदर रख दिया है, तो 8 घंटे तक भी नेत्रदान हो सकता है
1: जी। बहुत अच्छी बात है। देखिए नेत्रदान करने के लिए तो हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है और अपने परिवार को भी इसके लिए हमें बताना पड़ेगा, तो हमारे जो परिवार वाले हैं उसकी भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे जाने के बाद या किसी व्यक्ति के जाने के बाद में वो उस व्यक्ति के बारे में बताएं कि उसकी आंखें जो हैं वो दान की जा चुकी हैं और उसको लेना है। इसके लिए क्या कहें?

0: लोगों ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो भी व्यक्ति ये प्लेज करता है उसे दो चीजें देते हैं, एक तो आइडेंटिटी कार्ड देते हैं जो हर वक्त उसके वैलेट में रहता है, उसकी जेब में रहता है, दूसरा हम उसके घर पे लगाने के लिए नेत्रदान संकल्प पत्र होता है वो देते हैं, वो उसके घर में प्रोमिनेंट जगह पर डिस्प्ले होता है, जैसे उसके ड्राइंग रूम में है या उसके प्रतिष्ठान पर है, उसकी दुकान पर है, उसके ऑफिस में है,
1: जी
0: आने जाने वाला सब देखते हैं कि अच्छा इस व्यक्ति ने नेत्रदान का संकल्प लिया हुआ है। तो मृत्यु के बाद जब लोग पहुंचते हैं, अरे भाई इस आदमी ने तो नेत्रदान का संकल्प लिया था। दूसरी बात हम कहते हैं, जो भी संकल्प लेता है हम उससे कहते हैं कि भाई अपने परिजनों को जाकर इमीडिएट बताएं कि आज मैंने ये शुभ संकल्प लिया है, मैंने अपने कॉर्निया राष्ट्र को दान करने का संकल्प ले लिया है। और उसके जो किथ एंड किन्स होते हैं या स्पाउस होता है, पति पत्नी की कराएगा, पत्नी पति की कराएगी, या उसके जो परिवार के लोग होते हैं परिवारीजन, वो आई बैंक को सूचित करते हैं। हमारे पास एक टोल फ्री नंबर होता है 1919 1919 1919 1919, नंबर आमतौर पे हर हॉस्पिटल में नहीं होता लेकिन हमने लिया हुआ है, और वो फ्री होता है। PNT से जब डायल करेंगे तो वहां पे कॉल सीधी हमारे आई हॉस्पिटल में जाती है और वहां से हमारी टीम रवाना हो जाती है।
1: सिंह साहब, देखिए यहां पर एक बात ये सामने आ जाती है कि हमने अपनी आंखों को, कॉर्निया को दान करने का जो संकल्प हमने लिया है, इस
0: जी
1: बीच अगर हमारी आंखों में कोई परेशानी हो जाती है तो उसकी देखभाल करने का भी जिम्मा क्या ये आई बैंक के द्वारा या किसी आपके इस फाउंडेशन के द्वारा या किसी संस्थान के द्वारा लिया जाता है?
0: नहीं, हालांकि हम, हमारा जो हॉस्पिटल है, हम कोई भी व्यक्ति आए उसकी हम जांच करेंगे, और गरीबों की हम जांच कर रहे हैं। आज भी हमारे हॉस्पिटल में more than 35% फ्री देखे जाते हैं, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई करके नहीं कर सकते, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मैं विधि का विद्यार्थी हूं इसलिए जानता हूं, जब हम कोई काम या कोई दान किसी कंसिडरेशन को रख के चलते हैं तो फिर वो सौदा बन जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और आई में कोई सौदा नहीं किया जा सकता, ना किसी प्रकार का कोई लेन देन होता है, ना हम कोई गारंटी लेते हैं। हालांकि फिर भी हम ये कहते हैं कि जो साधनहीन व्यक्ति है वो हमारे हॉस्पिटल में आए उसका सदैव स्वागत है। और हमारे लगभग लगभग 32-33 ऐसे सेंटर्स हैं, सेवा केंद्र हैं, जहां पर हम गरीबों का ही इलाज कर रहे हैं। और एक बात मैं इस आपके इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगभग लगभग उत्तर प्रदेश में जितने लोगों की ब्लाइंडनेस को दूर किया गया है, वो अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस कहलाती है, उसको हमने दूर किया है, वो हमारा कंट्रीब्यूशन पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लगभग लगभग 75% है, इससे ज्यादा है, लेकिन मैं तो लोअर साइड पे बात करता हूं, जिससे कहीं भी जाके चेक करें तो पता लगेगा।
1: तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो ये आपका इंस्टीट्यूट है, ये नेत्र दान करने के लिए, आंखों की सुरक्षा करने के लिए, आंखों की देखभाल करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिंह साहब, एक सवाल और हमारे सभी सुनने वालों के मन में आ रहा होगा कि आजकल देखा जाता है कि मोतियाबिंद की जो बीमारी है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ती चली जा रही है। इसकी देखभाल करने के लिए, इस मोतियाबिंद से बचने के लिए हमें कौन-कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए?
0: देखिए मैं एक बात बताऊं, मोतियाबिंद जो है ये एक एजिंग प्रोसेस है और इससे सबको कभी ना कभी गुजरना पड़ता है।
1: हाँ हाँ जी जी
0: एजिंग प्रोसेस है, हर एक को समय में रहते इसके देखभाल जरूर करनी चाहिए। और हम अक्सर कहते हैं कि 40 से अबव जितने लोग हैं उनको कम से कम 6 महीने में एक बार अपनी आंख की जांच करा लेनी चाहिए,
1: जी
0: ताकि संभावित किसी भी खतरे को टाला जा सके। बीमारी शुरू होने से पहले पकड़ में आ जाती है, उसका इलाज संभव होता है। जब बीमारी लास्ट स्टेज पर पहुंच जाती है, कई बार जैसे ग्लूकोमा है, जैसे हमारी नसें सूखने का है, या हमारा मोतियाबिंद पक जाता है, तो इमरजेंसी में जब कोई ऑपरेशन किया जाता है तो हड़बड़ी में कराए हुए उसमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम कहते हैं 40 साल से ऊपर व्यक्ति को कहीं भी किसी भी आंखों के अच्छे डॉक्टर के पास, जिसके पास अच्छी डिग्री है, उससे वो जांच कराए अपने क्षेत्र में।
1: तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि हमें अपनी आंखों की समय समय पर जांच करानी बहुत ही
0: जी
1: जरूरी होती है। आपने एक यहां शब्द लिया ग्लूकोमा, और
0: जी
1: हम बात कर रहे थे कैटरेक्ट मोतियाबिंद की।
0: जी
1: इन दोनों से बचने के लिए भी क्या कोई विशेष सावधानी बरतने की
0: ग्लूकोमा
1: जरूरत
0: से
1: होती
0: तो
1: है?
0: इसलिए बचना चाहिए कि ग्लूकोमा एक चोर बीमारी होती है,
1: जी
0: वो पीछे से आक्रमण करती है और वो धीरे धीरे धीरे धीरे उसके विजन का जो है ना वो दायरा सिमटता चला जाता है, उसे मालूम ही नहीं चलता कि वो कब अंधा हो गया। वो सामने का देख रहा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है उसे, लेकिन उसका फील्ड जो है साइडों से, लेफ्ट और राइट से, वो धीरे धीरे धीरे धीरे कम होते होते, और एक दिन जब बिल्कुल बल्ब फ्यूज होता है तो कहता है मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। इसके लिए जरूरी है कि 40 या 45 में जो भी हैं लोग, अपनी ग्लूकोमा का, इसमें आई का प्रेशर टेस्ट होता है कि वो नॉर्मल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर हायर साइड पे है तो ऐसी दवाएं आती हैं जिससे इसे मेंटेन किया जा सकता है प्रेशर को, और उनका अर्लियर अगर डिटेक्ट हो जाता है तो इसमें ऐसे इंजेक्शंस भी आते हैं जो नसों को सूखने से बचाते हैं। एक बार नस पूरी तरह पैरालाइज हो गई तो तो उसके बाद में फिर हमारे पास भी कोई इलाज नहीं रहता। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये एक चोर बीमारी है ग्लूकोमा, और इसकी जांच में ही बचाव है।
1: तो गुरबिंदर सिंह जी, चलते चलते हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति नेत्रदान करना चाह रहा है और इन सब बीमारियों की चपेट में आने से वो बचना चाह रहा है, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
0: संदेश यही है, अपनी आंख की सुरक्षा आप ही को करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये आंख के लिए भी है और पूरे शरीर के लिए भी है। हम कई बार बीमारी को बढ़ने का इंतजार करते हैं और जब वो स्टेजेस क्रॉस कर जाती है तो उसका असर आंखों तक आ चुका होता है, उसमें हम नहीं लेते हैं
1: जी।
0: बाकी डिस्टल एंड में अब कैंसर में भी अलाउड कर दिया है, क्योंकि कॉर्निया की जरूरत बहुत है। लगभग 40 लाख लोग भारत के अंदर आज भी कॉर्नियल ब्लाइंड है, जिनको दूर किया जा सकता है इस बीमारी को, सिर्फ इस तरह से कि कुछ उदार लोग आए। अगर हम भारत के 0.5% लोग उदार हो जाएं तो हम भारत से इस बीमारी को पूरी तरह इरेडिकेट कर देंगे, जैसे श्रीलंका वालों ने अपने यहां से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को इरेडिकेट किया हुआ है।
1: तो गुरबिंदर सिंह जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी नेत्रदान के संबंध में दी और आपने बताया कि हमें किस तरीके से अपनी आंखों की देखभाल करनी है, इनको बचाकर रखना है और इन आंखों से किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में हमें रोशनी लानी है। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: विश्व नेत्रदान दिवस पर विविधाक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्रदान महादान पर यह भेंटवार्ता। सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के उपाध्यक्ष श्री गुरविंदर सिंह से बात कर रहे थे प्रमोद सिंह। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है छाया गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में धर्मपुत्र फिल्म से। गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीत दिया है दत्ता नायक ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और येसुदास की युगल आवाजों में सुहाग फिल्म से। गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीत दिया है खयाम ने।

त्रिशूल फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर और येसुदास को सुना। कार्यक्रम का अंतिम गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म में किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही छाया गीत अब समाप्त होते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है जानकारी कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

0: कल शाम 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स और कंट्री वाइड कार्यक्रम कल रात्रि 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सवेरे 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान की संगीतमय प्रस्तुति हम आपको सुनवाएंगे कल सवेरे 6:30 पर। काव्यधारा क्रम में कल सवेरे 6:45 पर नगीना सिंह का काव्य पाठ सुनवाया जाएगा। कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनिएगा कल सवेरे 7:31 पर। धरती गाती है कार्यक्रम में कल सवेरे 9:25 पर सत्यवीरा हांडा के गाए रुहेलखंडी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। बात आसपास की ये कार्यक्रम सुनिएगा कल सवेरे 9:50 पर। कल सवेरे 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्डन हिट्स गीत तुम्हारे, ये कार्यक्रम सुनिएगा कल सवेरे 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आपको सुनवाएंगे कल दिन में 11:30 पर। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल दोपहर 12:05 पर। मिड डे मेलोडी आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 पर। महिला जगत कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर। उड़ान हौसलों की क्रम के अंतर्गत डायरेक्टर प्रिंसिपल मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल बिजनौर डॉक्टर सीमा बिस्वास से प्रियंका त्यागी की बातचीत सुनवाई जाएगी। लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर गोपाल बाबू गोस्वामी के गायक कुमाऊनी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। शाम के 7:18 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: शक्तिशाली किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
2: 30% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो किसान, मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाजपा के शीर्ष नेता, एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहे। पेश है एक रिपोर्ट।
5: बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और 2047 तक देश को विकसित देश में बदलने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन और नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
4: श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री मोदी को

0: बधाई दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई।
1: राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। इस क्रम में लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं अयोध्या समेत जौनपुर के श्री गौरी शंकर धाम मंदिर, देवरिया के सोमनाथ मंदिर और राज्य के अन्य मंदिरों में विशेष पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया। कानपुर देहात में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रसाद वितरण, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेक नई उपलब्धियां हासिल की हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी जीराम जी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों के लिए इंटरिम अवलोकेशन में उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक 9,721 करोड़ 48,00,000 रुपए धनराशि की व्यवस्था है। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी, अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1183 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 7:31। इसी के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून की बात। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ऐश्वर्या द्विवेदी, एडवोकेट हाई कोर्ट से अतिश कुमार श्रीवास्तव की भेंट वार्ता। विषय है पॉक्सो एक्ट 2012 में बदलाव।
2: कानून की बात में आपका स्वागत है, मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे के विरुद्ध कुछ सेक्सुअल अब्यूजेस होते हैं परिवार में, वर्किंग प्लेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो इसी पॉक्सो एक्ट जो कि 2012 में बनाया गया था, इसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या सुधार हुए हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है ऐश्वर्य द्विवेदी को, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट लखनऊ में। ऐश्वर्य, आपका स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच।
2: आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगी पॉक्सो एक्ट क्या है, किसके लिए है और कैसे हमारी आम जनता को इससे लाभ हो सकता है?
3: जी, आपने बहुत अच्छा सवाल रेस किया है, बहुत अच्छा इश्यू रेस किया है। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, जो 2012 में आया था। इसमें आपको अवेयरनेस ये दी गई है कि सबसे ज़्यादा तरीके से जो चाइल्ड अब्यूज़ हमारे आसपास हो रहे हैं या हमारे देश में या देश के बाहर जहाँ भी हो रहे हैं, मैक्सिमम पाए गए थे कि मेल चाइल्ड के साथ ज़्यादा हो रहे थे। इसीलिए एक्ट बनाया गया कि इसमें जेंडर न्यूट्रल किया जाए, कि लड़की के साथ ही सिर्फ अब्यूज़ नहीं होता है, लड़के के साथ भी होता है। और ये जेंडर न्यूट्रल होने की वजह से ये पॉक्सो एक्ट लागू किया गया, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि काफ़ी लोग अवेयर हुए और बच्चों के साथ गलत होने से बचा। जैसे बैड टच अगर कोई होते हुए देखता था तो उनको कंप्लेन करने की सुझाव देना, ये सब तो ये अवेयरनेस फैली है आपके रेडियो के द्वारा। जैसे दूरदर्शन में अवेयरनेस आप

0: प्रायोरिटाइज नहीं होंगे और हमारे देश के लिए अग्रसर रहेंगे और अच्छा कर पाएंगे।
1: तो ऐश्वर्य, इसमें आपको क्या लगता है कि जो पॉक्सो एक्ट के मुकदमे हैं उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है? तो अगर बढ़ोतरी हुई तो जानकारी लोगों को बढ़ रही है, इसका मतलब है।
0: देखिए, जैसे कि हमारा देश अब डिजिटलाइज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो लोग भी अवेयर हो रहे हैं, जैसे रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं। तो अगर अब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तो कई केसेस में हमने देखा कि पहले लोग जो थे बोलने से डरते थे, घर में ही ये चीज़ें होती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक केस हमारे पास आया था जिसमें एक घर के दादाजी ही अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ अब्यूज कर रहे थे। ये घर में किसी सर्वेंट ने देखा, उसने ये चीज़ जो है फैमिली में बताई, फिर ये चीज़ जो है क्लियर आउट होके आई, फिर इस चीज़ पे पॉक्सो एक्ट लगाई गई और उन पे उस हिसाब से कार्रवाई की गई। तो ये अवेयरनेस के कारण हुआ कि घर में एक पर्सन है जो आपका हाउस हेल्प है, वो भी इस चीज़ से अवेयर था, उसने इस चीज़ के बारे में बताया, क्योंकि वो 8th तक पढ़ा हुआ था और उसने अपने स्कूल में ये चीज़ सीखी थी, तो वो अवेयर रहा, उसने बताया। पहले के ज़माने में लोग ये बात कहने से डरते थे और बच्चों को चुप करा दिया जाता था कि बेटा ये कुछ नहीं है, भूल जाओ। अब
1: हाँ,
0: वो
1: इसका
0: चीज़
1: मतलब
0: हट
1: है
0: चुकी
1: कि
0: है।
1: वो जो बदनामी होगी परिवार की, ये भी रीजन रहा
0: जी जी
1: होगा।
0: जी ये वाला माइंडसेट अब लोगों का थोड़ा चेंज हुआ है अवेयरनेस की वजह से, और ये एक्ट आने की वजह से लोग अब थोड़ा सा हिम्मत बढ़ी है, अब लोग थोड़ा स्टैंड लेने लग गए। पहले लोग इस टॉपिक पे बात भी नहीं करते थे, कई बच्चे ट्रॉमेटाइज रहते थे बचपन में, उनके साथ 10 10 11 11 साल तक लाइफ में, वो 6 साल की उम्र से लेके 18 साल के हुए जा रहे हैं और उनके साथ गलत ही हो रहा होता था, और वो नहीं बोल पाते थे। अब वो चीज़ में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत बढ़ोतरी हुई है, तो एक तरीके से ये एक अच्छी पहल हुई है हमारे कानून में।
1: समाज के लिए बहुत अच्छी बात है
0: हाँ
1: ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये घर के अंदर तो जो होता रहा है उसको नहीं बताया जाता था, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अब अवेयरनेस बढ़ रही है, सोशल मीडिया भी इसका बहुत बड़ा सहारा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं या पब्लिक प्लेस में जाते हैं, बच्चे भी उसमें होते हैं, तो उनके प्रति क्या रवैया लोगों का रहता है?
0: जैसे आपने क्वेश्चन रहे, कई फील्ड्स हैं, जैसे रेडियो हो गया या फिल्म इंडस्ट्री हो गई, वहाँ चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, या कोई म्यूजिक इवेंट होता है वहाँ भी बच्चे गाना गाते हैं, और बच्चे वहाँ जा रहे हैं, वहाँ बड़े लोग भी होते हैं जो मेजर एज के होते हैं, उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है। तो अगर वर्क प्लेस में इस तरीके की अगर कोई आपको ऐसा कोई आपत्तिजनक सिचुएशन दिखती है, तो एक सही सिविलाइज सिटीजन होने के वजह से आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए कि ये चीज़ की कंप्लेन दर्ज कराएं पुलिस में। पुलिस में चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं जो इन सब चीज़ों से डील करते हैं, वो आपकी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपकी बात, आपको लगता है एविडेंस चाहिए होते हैं, तो वो भी ज़रूरी नहीं, आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी, उस कंप्लेन की इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा कि ऑफिस बच्चे से फिर बाद में पूछा जाएगा, उस हिसाब से चीज़ें करी जाएंगी। तो वर्क प्लेस में अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, या आप उस मैनेजर हैं उस प्लेस के, और आप इस चीज़ को होते हुए देख रहे हैं बहुत टाइम से और आपने कंप्लेन नहीं की, तो भी आप पे कार्रवाई हो सकती है कानून में। इसीलिए इस चीज़ को अवेयर रहें, और अगर ऐसा कुछ हो तो ज़रूर इत्तला करें टू द पीपल हु आर अपॉइंटेड फॉर दिस जॉब।
1: तो जैसे मान लिया कि हमारा ही ऑफिस है, इसमें कोई बच्चा आता है किसी काम के लिए, किसी नाटक के लिए, किसी रिकॉर्डिंग के लिए, तो उसके साथ अगर कोई थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन देख रहा है कि कुछ अब्यूज हो रहा है या बैड टच हो रहा है, तो वो कहाँ कंप्लेन करे जाके?
0: देखिए, अभी इतना डिजिटल वर्ल्ड हो गया कि ऑनलाइन नंबर्स भी आ गए हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 जिसमें आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं डायरेक्टली, और अगर आपके आसपास कोई पुलिस थाना है वहां भी ये कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और इन केस अगर आपको ऐसा कुछ पता भी लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो चोरी छुप के बच्चों की पिक्चर्स लेता है, या उस पिक्चर्स को यूज करके किसी कमर्शियल यूज के लिए डालता है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए भी प्रावधान है पॉक्सो में, और आप इस तरीके से या तो हेल्पलाइन के थ्रू कर सकते हैं, या आप जा सकते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में भी ऑफिसर होगा, वो आपकी चीज कंप्लेन को पूरी तरीके से दर्ज करेगा।
1: तो हर पुलिस स्टेशन में इस तरह के पॉक्सो के लिए या चाइल्ड अब्यूज के लिए वहाँ पे सिस्टम रहता है?
0: देखिए, पुलिस ऑफिसर का जॉब है टू मेंटेन द लॉ, तो आप पुलिस ऑफिसर को भी बताएंगे तो वो भी सुनेगा, और ज्यादातर पुलिस स्टेशन में अवेलेबिलिटी है कि चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं जो इस मामले में डील करते हैं, और काफ़ी एनजीओज भी हैं जिनमें इस तरीके के बच्चे हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं, गरीब बच्चे हैं, जैसे हमारे स्ट्रीट में बच्चे जो मतलब भीख भीख मांगते हैं, उनके लिए कौन बोलेगा, तो उसके लिए कई एनजीओज भी हैं जो इस पे काम करते हैं। तो वहाँ भी अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं, आपको संदेह होता है, तो आप वहाँ भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: अच्छा, इसी एक बात ये उठती है कि मान लिया एक ऑफिस में कोई देख भी रहा है

0: चाइल्ड के साथ अब्यूज हो रहा है
1: कोई फोटो
0: या
1: खींच
0: गर्ल के साथ हो रहा, तो वो कंप्लेन भी उसने कोशिश कर दी, या किसी ने छिपा लिया तो उसके साथ क्या कुछ प्रावधान है सजा के? मान लीजिए कोई व्यक्ति होते हुए देख रहा है अपने ऑफिस में, लेकिन ये कि हमारी ऑफिस का नाम खराब होगा या बदनामी होगी तो कहीं नहीं बताता, तो इसके लिए ऑफेंसेस क्या है?
1: जी, आपने अच्छा सवाल उठाया है। ये चीज़ जो है, इस चीज़ को कानून बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कानून जो है सज़ा देगा उस पर्सन को जिसने कंप्लेन नहीं की, जिसके ऑफिस में हो रहा है, वो देख रहे हैं और फिर भी नहीं बोल रहे हैं। इस चीज़ पे भी उनको या कंपनसेशन देना पड़ेगा या उनको सज़ा होगी। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप देखते हैं तो कंप्लेन तुरंत करें, क्योंकि आप अपनी रेपुटेशन की वजह से किसी के साथ अब्यूज होने दे रहे हैं या उसके साथ कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो ये इलीगल ही माना जाएगा। अगर आपने कोई चीज़ है लॉ ब्रेक किया है, ये लॉ ब्रेकिंग की उसमें ही माना जाएगा कि आपने देखा फिर भी आपने नहीं बोला।
0: अच्छा, इसी पर एक बात ये उठती है कि क्या सभी डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिसेज में, सभी जिलों में कहें, क्या इस संबंध में कोर्ट्स हैं? चाइल्ड पॉक्सो एक्ट से संबंधित अलग अलग कोर्ट हैं?
1: देखिए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट्स हैं वहां पे पॉक्सो ट्रायल कोर्ट्स बनाए गए हैं और पॉक्सो कोर्ट्स दिए गए हैं, जिसपे चाइल्ड फ्रेंडली माहौल है। बच्चों के लिए इस तरीके का माहौल क्रिएट किया है कि वो प्लेग्राउंड की तरह सजा दिया जाता है, वहाँ खिलौने होते हैं खेलने के लिए होते हैं, और पुलिस ऑफिसर्स को भी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो कलर ड्रेस में ही उनसे जाएं, पुलिस ड्रेस में ना हो, कि बच्चा ट्रॉमेटाइज किसी भी तरीके से ना हो। इवन वहाँ जो जज साहिबा या जज साहब बैठेंगे वो भी उनसे उतने ही फ्रेंडली तरीके से बातचीत करेंगे कि बच्चा किसी भी तरीके से मेंटली ट्रॉमेटाइज ना हो। आपके लिए काउंसिल भी अवेलेबल रहते हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे चेक रखते हैं, और मेडिकल हेल्थ भी देखी जाती है। तो ये सब चीज़ों की सारी चीज़ें देखी जाती हैं अंडर द एक्ट, कि बच्चा किसी तरीके से मेंटली अफेक्ट ना हो इन चीज़ों से, बिकॉज एक बच्चे की लाइफ में इस पूरे इंसिडेंट्स का काफ़ी अफेक्ट हो जाता है। तो बच्चे काफ़ी तरीके से मेंटली बहुत अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। तो इस चीज़ का काफ़ी देखा गया है कि काउंसिल्स इसीलिए प्रोवाइड की जाती है कि बच्चा जो है काउंसिल करा जाए और मेंटली किसी भी तरह हैरेस ना हो इस चीज़ के बारे में सोच सोच के।
0: अच्छा ऐश्वर्या जी, मानिए कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास न धन है न कोई सपोर्ट है, तो उसको सरकार की तरफ से क्या कुछ मुफ्त जो है कानूनी सहायता मिल सकती है?
1: देखिए, अगर बच्चा अवेयर नहीं है पर उसके अगर उसके पास वो चीज़ें नहीं हैं और वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या उस तरीके से, मतलब सोसाइटी के बहुत अच्छे पार्ट से नहीं आते और उनके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसी सिचुएशन में एनजीओस काफ़ी अच्छा पार्ट प्ले करते हैं। वो अगर ऐसी कोई सिचुएशन देखते हैं तो सर्वेज होते हैं, उसे पता किया जाता है सर्वे में कि बच्चों के साथ किन किन के साथ ऐसा, और ऐसी सिचुएशन अगर पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई करी जाती है। और ये एनजीओस इसका मैटर उठाते हैं या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर या कैंप्स वैम्प्स लगते हैं, उसमें बच्चे जो हैं उस तरीके से मतलब अवेयर हो जाते हैं और उनकी हेल्प हो सकती है निःशुल्क।
0: हमने सुना कि एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना हुआ है कोई, इसका क्या काम होता है?
1: ये एनसीपीसीआर जो है, इसमें बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए कई तरीके की लोग जो हैं अवेल किए गए हैं, जिसमें ऐसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या कोई बच्चे हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं, ऑर्फन है, उनके साथ अगर ऐसी सिचुएशन पाई जाती है तो उन बच्चों को यहाँ पे देखरेख की जाती है और आगे की जो भी इनके लिए बेहतरी के लिए प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया जाता है और इन लोग की राइट्स की प्रोटेक्शन की जाती है।
0: तो ऐश्वर्या जी, इसी में बात आती है कि जो 14-15 साल की उम्र होती है उसके बच्चे या बच्चियां हैं, टीनेजर्स जिन्हें कहते हैं,
1: जी,
0: उनके लिए क्या कुछ अलग कानून कहता है हमारा?
1: आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। आजकल का टीनेज जो है, डिजिटल इंडिया वाला टीनेज है। अब जो बच्चे हैं आजकल की, जो 15-16 साल के बच्चे हैं वो 20-22 साल की एज की तरह हो गए हैं। तो अब बच्चे डिजिटल इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि किसी से बातचीत करने लगते हैं ऑनलाइन, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है क्योंकि बच्चा ऑनलाइन क्या कर रहा है, पेरेंट्स घर में है, हर जगह कोई 24/7 विजिलेंट नहीं रह सकता कि अपने बच्चे पे 24 घंटे नज़र रखे। तो बच्चे ऑनलाइन बातें करने लगते हैं सोशल मीडिया के थ्रू,
0: ऑनलाइन
1: किसी
0: फेक
1: भी
0: आइडेंटिटी से,
1: फेक आइडेंटिटी से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चियों से बातें करते। कई हम लोग ने देखा था इन कुछ केसेस में, कुछ गलत तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे जो इन्वॉल्व थे और बच्चों को इस तरीके से फंसाते थे कि वो जो कम एज की लड़कियां उनकी बातों में आए, उन्हें बरगलाएं, और उन बच्चों को ये लोग बरगला के अपने साथ ले जाते थे एंड वो अंडर एज बच्चे होते थे और वो फंस जाते थे और उनके साथ अब्यूज होता था। इस चीज को बचाने के लिए पेरेंट्स हैं, अगर वो ऐसा कुछ फाइंड आउट करते हैं और लड़की अगर कहती भी है कि मैं कंसेंशुअल इनसे इन्वॉल्व हूँ और इनसे आगे बढ़ के रिलेशन रखना चाहती हूँ, तो पेरेंट्स की बात सुनी जाएगी, उनकी बात को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा क्योंकि बच्चा माइनर में आ जाता है।

0: 18 साल से नीचे के बच्चे की जितनी भी कंसेंशुअल होगी उसकी वैल्यू नहीं की जाएगी, वैल्यू होगी पेरेंट्स की अवेयरनेस की और पेरेंट्स के कंसेंट की। उनको लगता है कि उनके बच्चे के साथ गलत हो रहा है तो वो कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, और वो पॉक्सो एक्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, अपने बच्चे पे स्टैट्यूटरी रेप चार्जेस भी लगवा सकते हैं कि अगर वो इंसान जिससे वो बच्चा इन्वॉल्व है वो मेजर है या माइनर है, वो उनके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो पेरेंट्स जो हैं इस पे एक्शन ले सकते हैं कानून द्वारा।
1: तो ये तो बात हो गई गर्ल्स पे कि आप चार्जेस लगा सकते हैं, तो अगर टीनेज लड़का है तो उसके लिए क्या होगा?
0: टीनेज लड़का अगर ऐसा अंडर एज लड़की के साथ इन्वॉल्व है तो लड़कों के लिए बाल सुधार गृह बनाए गए हैं, जैसे जुवेनाइल होता है, जुवेनाइल्स के
1: कोर्ट
0: लिए कोर्ट होती हैं और उनके लिए बाल गृह होते, सुधार गृह, वहाँ इन्हें भेजा जाएगा जहाँ पे अगर इन्होंने इस तरीके की कोई चीज़ें पाई गई हैं इनके खिलाफ तो उस पर आगे जाके कार्रवाई होगी। बॉयज़ के लिए है, पर फीमेल्स के लिए जो है पेरेंट्स पॉक्सो एक्ट और रेप चार्जेस लगा सकते हैं इफ अगर वो फाइंड आउट करते हैं कि उनका बच्चा जो है इस तरीके से इन्वॉल्व है अंडर एज होके भी दूसरे पार्टनर के साथ। और आजकल सोशल मीडिया में कई चीज़ें और हैं कि लोग अपनी पिक्चर्स शेयर करते हैं, वो भी एक तरीके से इलीगल है। यू कैन नॉट शेयर योर पिक्चर्स विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, जो एब्सर्ड हैं और न्यूडिटी को प्रमोट करती, इस तरीके की पिक्चर्स अगर आप शेयर करते हो कोई सेफ रखता है, उस पर भी सेक्शंस दिए गए हैं पॉक्सो एक्ट में कि उस पर भी कार्रवाई होती है।
1: तो ऐश्वर्या जी, आपने पॉक्सो एक्ट में बदलाव के बारे में इतनी बातें बताई हमें, हमारे श्रोताओं को ज़रूर इससे ज़रूर कुछ न कुछ लाभ होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यदि हमें आगे भी ज़रूरत पड़ती है किसी पॉक्सो एक्ट के संबंध में कुछ जानकारी करने की, तो हम ऐश्वर्या द्विवेदी को फिर से अपने स्टूडियो में बुलाएंगे। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे लोगों को अवेयर करना और उनको जागरूक करना बहुत मेरा एक तरीके से प्रोफेशन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं हिस्सा बनी यहाँ पे, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात, मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बातों बातों।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुगम संगीत में लीजिए सुनिए भाई निर्मल सिंह खालसा के गाए शब्द।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे भाई निर्मल सिंह खालसा के गाए शब्द। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। गीत संध्या कार्यक्रम के हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की युगल आवाजों में दिल है कि मानता नहीं फिल्म से। श्रोताओं, किसी भी रिश्ते में प्यार का होना जरूरी ही नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या दो प्रेमियों के बीच का, प्यार ही तो है जो रिश्तों में मिठास बढ़ाता है। अगर प्यार नहीं तो रिश्ते बस बोझ बनकर रह जाते हैं। लेकिन अगर प्यार है तो हमारे रिश्तों में एक स्टैब्लिशमेंट आ जाता है और हमारे संबंधों में जीवटता का प्रसार उम्र भर बना रहता है। साथ ही साथ हमारा दिल अपने हमसफर के बगैर बेकरार रहता है, ये मानता ही नहीं। इस नाजुकी से मुझे मिटाने का शुक्रिया, कतरे को समंदर से मिलाने का शुक्रिया, मेरे सुकून को अपनी महक से नवाज कर, मेरे सुकून को अपनी महक से नवाज कर, यूं आशिकी का फर्ज निभाने का शुक्रिया।

कार्यक्रम का अगला गीत है उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में, जिसे हमने लिया है जोश फिल्म से। श्रोताओं, कभी खुशी और कभी गम, ये जिंदगी जीने का नाम है। और प्यार वो आधार है जो हर गम को छोटा और हर खुशी बड़ा कर देता है। प्यार ही तो है जो पूरी तरह से टूटे व्यक्ति को संभाल सकता है। प्यार ही है जो दिल से हार चुके इंसान को फिर से जिंदगी जीने की नई राह दिखाता है। नवाजना है तो फिर इस तरह नवाज मुझे कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। यही तो एक तमन्ना है इस मुसाफिर की, यही तो एक तमन्ना है इस मुसाफिर की, जो तुम नहीं तो सफर में तुम्हारा प्यार चले।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाजों में, कभी कभी फिल्म से। श्रोताओं, प्यार में हमेशा एक नई ऊर्जा का संचार कर उसमें नई स्फूर्ति भरने के लिए एक चीज का होना बहुत जरूरी है, मालूम है क्या? एहसास। क्योंकि एहसास ही तो है जो प्यार के रिश्तों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। जैसे पहले के जमाने में शादी के बंधन में बंधकर एक हुए दो अजनबियों को जिंदगी भर एक दूसरे से जोड़े रखता है एहसास का बंधन, और यदि प्यार में इस तरह का एहसास है तो प्रेमी प्रेमिका तन्हाई में बस यही सोचते हैं कि जैसे उनको एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, उसकी याद आई है सांसों जरा धीरे चलो, उसकी याद आई है सांसों जरा धीरे चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है।

कार्यक्रम का अगला गीत है अलका याग्निक और उदित नारायण की युगल आवाजों में दिल है तुम्हारा फिल्म से। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दो प्रेमियों के बीच के प्यार की। तो प्यार तो वहीं होता है जहां एक दूसरे के लिए अपनापन होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके सामने वाला इंसान उसकी हर खुशी हर गम को बिना बताए ही समझ जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब प्रेमियों के दिलों में एक दूसरे के लिए अपनापन होगा, अपनत्व की भावना होगी, एक दूसरे की खुशी और गम को जानने के लिए एक दूसरे को अपनाना पड़ता है, एक दूसरे से दिल लगाना पड़ता है। मुझे मुस्कान के बदले मिली आंसू की सौगातें, मुझे मुस्कान के बदले मिली आंसुओं की सौगातें, मेरे दिल ने ये चाहा था कहीं से रोशनी आए,

तुम्हारी याद ही अपनी उम्मीदों का सिरहाना है, तुम्हारी याद ही अपनी उम्मीदों का सिरहाना है। संभाला है इसी ने तभी दिल के जख्म खाए।

ज़िंदगी के सफ़र में हर किसी को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, एक ऐसी मोहब्बत की जिसे वो अपने हर सुख दुख में साथ लेके चल सके, जिसके साथ अपने हर सुख दुख को बांट सके, एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ कुछ पल बिताने से आपको सुकून और अपनापन मिले। हमें हमारी ज़िंदगी में पहली बार जब भी वो शख्स मिलता है तो हमारे मन में मीठा मीठा दर्द उठने लगता है और मन की ये कसक हमें साफ इशारा करती है कि हमारा दिल चोरी हो चुका है। बहुत से काम रुक जाते हैं, मैं बाहर नहीं जाता। बहुत से काम रुक जाते हैं, मैं बाहर नहीं जाता। तुम्हारी यादों का मौसम कहाँ टाले से टलता है। मोहब्बत गम की बारिश है, जमी सर सब्ज होती है। मोहब्बत गमों की बारिश है, जमी सर सब्ज होती है। बहुत से फूल खिलते हैं जहां बादल बरसता है।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म में कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ ही गीत संध्या कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संध्या। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पराया धन फिल्म से कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं पराया धन फिल्म से कुछ गीत। कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों में।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पराया धन फिल्म से कुछ गीत। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गीतकार आनंद बख्शी और संगीत दिया था आरटी बर्मन ने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
2: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लेयन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद डिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
4: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
6: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
5: प्रधानमंत्री कौशल विकास आवास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियू पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं

0: स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूँ, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Vikasit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: Earlier, the National Democratic Alliance, NDA, today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA

0: उत्तर प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत के सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये एक तारीखी खराज तहसीन है। मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और साल 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मोदी सरकार के विजन पर भी तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी काबीना ने उस करारदाद को मंजूरी दी है जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लगातार मुद्दत के लिए सबसे तवील अरसे तक फरायज अंजाम देने वाले वजीर आजम बनने पर सताइश की गई है। बतौर वजीर आजम मजमुई तौर पर 4399 दिन तक लगातार खिदमात अंजाम देते हुए जनाब मोदी ने साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने लगातार 4398 दिन तक फरायज अंजाम दिए थे। काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तिलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह करारदाद मुल्क के तई जनाब मोदी के लगातार खिदमत में तारीखी संगे मील की हैसियत रखती है और कई अहद बस्तगियों और हसूलियाबियों को उजागर करती है। अवाम की भलाई के तई हुकूमत की तवज्जो को उजागर करते हुए यह करारदाद इस बात को भी उजागर करती है कि गरीब को हुक्मरानी में मरकजी हैसियत हासिल है और यह फराहम की गई खिदमात के गैर मुतवक्के पैमाने की भी अक्कासी करती है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस दौरान मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2A को भी मंजूरी दी जो कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट कॉरिडोर का अहाता करेगी। इस प्रोजेक्ट में 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। जनाब वैष्णव ने कहा कि तकमील के बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क वसत पाकर तकरीबन 78 किलोमीटर के लिए आसान कनेक्टिविटी हासिल होगी और आवामी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आएगी।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे से मुतालिक मरकजी हुकूमत के 2 बड़े प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। इनमें मरकजी हुकूमत का जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन और जनरल पूल रिहायशी अकोमोडेशन शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों से हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनों के लिए बड़े पैमाने पर रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लियन ने कहा कि जनाब मोदी की क़यादत में भारत ने चांद पर कदम रखा है और सितारों पर कमंद डाल रहा है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने भी दोनों मुल्कों के आवाम के लिए नए मौके पैदा करने की गरज से वज़ीर आज़म मोदी के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर की है। खुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडेलॉइड्स ने कहा कि इस संगे मील से वजीर आजम मोदी की फर्ज शिनासी के साथ खिदमत और क्यादत का इजहार होता है। डेनमार्क के वजीर आजम मेड फ्रेडरिस्किन ने जनाब मोदी को मुबारकबाद दी है और दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने का सिलसिला जारी रखने पर आमादगी जाहिर की है। अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्यूंग ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने बरसों से भारत की इक्तसादी और तरक्याती पेशरफ की रहनुमाई की है और भारत का आलमी रुतबा बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक वजीर आजम टोनी एबॉट ने कहा कि भारत ने वजीर आजम मोदी की क्यादत वाली सरकार के तहत बुनियादी ढांचे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजली और सफाई सुथराई के शोबे में बेहतरी लाई है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारादिसनाई के, पपुआ न्यूगिनी के वजीर आजम जेम्स मरापे और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर ने भी वजीर आजम मोदी की बदलाव की हुक्मरानी, आलमी खिते जुनूब के लिए उनकी कोशिशों और सबकी शमूलियत और इक्तसादी एतबार से गोनागोनियत वाले भारत के विजन को सराहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के काबिल

0: बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन, नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोबा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाख्तियार बनाने की गरज से हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन।
2: 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसका मरकज है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा नए कारोबारी अफराद ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज से फायदा उठाया है, जिससे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इन्हिसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सके, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून कारोबार ईशा पटेल ने घर पर खाना बनाने से लेकर एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर की तफसील बताई।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, आप थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: 60 लाख से ज्यादा नौजवानों ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1,60,00,000 से ज्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। रोजगार मेलों के जरिए 12 लाख तकरुनामे तकसीम किए गए हैं। 2,20,000 स्टार्टअप्स कायम किए गए हैं, जिनसे रोजगार के 23 लाख मौके पैदा हुए हैं। पीएम सेतु स्कीम के तहत 1,000 आईआईटीज की जदीद कारी के लिए 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की मदद से मुल्क के नौजवानों की ताकत भारत के लिए एक नई सुबह का आगाज कर रही है। अनुपम मिश्रा और सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबाती स्कीम पीएलआई के तीसरे दौर के तहत 22 नए दरखास्त गुजारों को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल की वजारत ने बताया कि स्कीम के तीसरे दौर के तहत मजमुई तौर पर 96 कंपनियों को मुंतखब किया गया है, जिन्होंने 12,822 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी का वादा किया है और 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर का अंदाजा है। मंजूरशुदा दरखास्त गुजार पीएलआई स्कीम के अहम शोबों से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें मैनमेड फाइबर, एमएमएफ फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स शामिल हैं, जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर भारत को कलीदी मुकाम दिलाने में मजबूत रोल अदा करेगा। हुकूमत ने इस साल 31 अगस्त या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटियों के जारी होने तक माइक्रो फाइनेंस इदारों 2.0 के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की मुद्दत में तौसी को मंजूरी दी है। वजारत खजाना ने बताया कि आज की तारीख तक इस स्कीम के तहत मजमुई तौर पर 770 करोड़ रुपए के कर्जेजात को मंजूरी दी गई है। वजारत दिफा ने आज भारतीय बहरिया के लिए कम अज कम 75% देसी कलपुर्जों वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर्स की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली में इस माहदे पर दस्तखत के दौरान दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। इस निजाम की शमूलियत से कसीर खतरा जात वाले माहौल में भारतीय बहरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफा होगा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली सिंधु ने पेरू की खिलाड़ी को टूर्नामेंट के पहले राउंड में 21-13, 21-11 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ से होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में

बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पीएलआई स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और के जी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
2: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की हस्तक्षेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी। इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा

0: क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
1: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें दो तीन महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांधकर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें सीडीएस जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, यह मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने यहां, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है, जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है 26 जनवरी में, तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
0: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिये, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की

0: सबसे जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जैसे आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेके चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं मिली। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी UPI पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव गांव तक UPI पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में UPI और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड रेशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू

0: हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शिखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते हैं, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिये ऊर्जा भी बड़ी चीज है, आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख में अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारी सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है, उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुल्किम है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के,

0: हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है। भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है। इसीलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ। दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था, भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है। आनंद जी, जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत के संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कुनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो

0: जो हमारे यहां, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है, हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है, हमको जो है, हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है,
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल विकसित भाव, जो सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए निश्चय लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात देवानंद जी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों के जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारत के भविष्य, भारत नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज।

दिल्ली फरियाद के कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, दिल्ली फरियाद किया कार्यक्रम आज दिन है बुधवार, रात्रि के बजे हैं 10 और हम हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर। इस कार्यक्रम में आप और हम मिलके करते हैं कुछ बातें और बातें होती हैं यादों की, वो यादें जो हम अपने दिलो दिमाग में समेटे हुए हैं और कहीं ना कहीं वो यादें जिंदगी भर हमारे साथ चलती हैं। तो आज ऐसी ही कुछ सुनहरी यादों को हम आपके साथ साझा करेंगे और आप से उम्मीद करते हैं आप भी अपनी यादों को हमारे साथ साझा करेंगे। और आज की जो यादें हैं वो यादें होंगी हमारे पापा, हमारे पिता, हमारे फादर, इनसे जुड़ी हुई कि पिताजी के साथ हमारी ऐसी कौन सी याद है जो जुड़ी हुई है। अगर हम अपने पापा की बात करें और उनके प्यार की बात करें तो पापा का प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो एक ऐसी छाया है जो जीवन भर हमारे साथ चलती है, जिसमें ना तो कोई शर्त होती है और ना ही कोई दिखावा होता है, तो बस खामोशी से सब कुछ लुटा देने वाला प्यार। और ये मिसाल बन जाता है हम सबके लिए और ये प्यार वक्त के साथ कभी पुराना नहीं होता। हमारे दिलों में, हमारी यादों में हमारे पापा का प्यार जिंदा रहता है। हमारा जो भी नाम है वो सब हमारे पापा यानी पिताजी की वजह से है। तो आप भी अपने पिताजी से जुड़ी कोई याद हमसे साझा कर सकते हैं। अपनी याद हमें हमारे WhatsApp नंबर 9457078288 पर आप शेयर कर सकते हैं। टाइप करिए WhatsApp पर मैसेज। WhatsApp पर मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 9457078288। इस नंबर पर आप अपनी पिताजी से जुड़ी हुई कोई भी याद हमसे साझा कर सकते हैं और आपकी इस याद को हम अपने सभी श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाल लिया होगा और WhatsApp पर 9457078288 पर पिताजी से जुड़ी यादों को आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करने जा रहे हैं। जल्दी से अपनी यादें भेजिए और हम आपकी यादों का इंतजार कर रहे हैं। हमारा जो भी नाम है मालूम है वो हमारे पिताजी की वजह से है। हम जो कुछ भी हैं हम अपने पापा की वजह से हैं। तो इस कार्यक्रम में याद करते हैं अपने पापा को और याद करते हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ यादों को। आप जल्दी से हमें WhatsApp पर मैसेज टाइप करके भेजिए। तब तक सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं अपने पिताजी से जुड़ी कुछ यादों की, और हमारे पास कार्यक्रम का पहला मैसेज हमें भेजा है विलेज और पोस्ट राहु नंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान, कनिष्का चौहान, भव्या, सीमा रानी, राघव चौहान, वेदांश चौहान। और ये लिखते हैं, अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे याद है कि एक बार हम श्री रामलीला के उद्घाटन समारोह में गए थे और कब उन्होंने 11,000 रुपये भी दे दिए और फीता मुझसे कटवा दिया, उद्घाटन मेरे से करवा दिया। मेरे पिताजी ने मतलब 11,000 रुपये की राशि दान में दी और उस समारोह का जो उद्घाटन था, यानी जो रेड रिबन काटने का एक नियम होता है, वो परंपरा को मेरे हाथ से करवा दी। तो पिताजी का दिल ऐसा ही होता है। बिल्कुल सही बात कही। और वाकई में हमारे जो माँ बाप है ना, उन्हें कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग उनसे दूर हैं या अलग हैं, कि जो काम हम कर रहे हैं उन्हें यही लगता है कि वो काम हम कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के साथ कहना चाहूँगा, अपने गम को अपने मन में छुपा के रखते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी हसरतों को, सबको बिल्कुल त्याग देते हैं और वो केवल और केवल हमारे पिता होते हैं। जिंदगी भर के लिए हमारे सारे दुख अपनी चुनौतियों के रूप में स्वीकार करते हैं। बस अपने बच्चे के चेहरे पर केवल मुस्कान देखना चाहते हैं, वो शख्स केवल पिता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस समाज में जो हमसे बिना किसी स्वार्थ के कुछ भी हमें दे या रिप्रेजेंट करे या कुछ प्रेजेंट करे, है ना। केवल एक ही व्यक्ति है और वो व्यक्ति है हमारे पिता, है ना। तो इस तरह से हमारे जो पिता है ना भाई, वो हम सब लोगों के लिए ईश्वर तुल्य है और हमें उनका वैसा ही ध्यान रखना चाहिए। लेकिन घर में कभी कभी ऐसा होता है कि अक्सर हम लोग भाई बहन होते हैं और भाई बहन में लड़ाई हो जाती है, और गलती भाई की नहीं होती, बहन की होती है। तभी भी हमारे जो पापा होते हैं ना, उनका एक स्वभाव होता है। स्वभाव क्या होता है कि जो भाई है हमेशा गलती उसकी मानी जाएगी। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो गलती होगी वो भाई की होगी और बहन की कोई गलती नहीं होगी। और उस गलती ना होने के बाद भी पिताजी से, पापा से डांट कौन खाता है, फटकार कौन खाता है, भैया। और जो बहना होती है वो तो बिल्कुल अपने पापा की शहजादी होती है, अपने पापा की परियों की रानी होती है। ऐसे ही नहीं, पापा हमेशा स्नेह करते हैं अपने बच्चों से। और लेकिन जब भाई और बहन की बात आती है तो शायद 19 और 20 का फर्क होता है भाई और बहन के प्रति उनके प्यार में। बहन को शायद एक कतरा ज्यादा प्यार करते हैं, है ना, क्योंकि पापा अपनी बेटियों को परियों की तरह रखना चाहते हैं। पिताजी, पापा, फादर, अब्बा, ये सब नाम अलग अलग है, लेकिन इन सब के दिल के अंदर पलने वाले जो अरमान हैं, जो भाव हैं, वो सब एक हैं।
1: Ladies and gentlemen, a son is a son till he gets himself a wife, but a daughter is a daughter.

दिल ने फिर याद किया, कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं अपने पापा से जुड़ी कुछ यादों की। और कार्यक्रम का अगला मैसेज हमें भेजा है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने ये लिखते हैं। जब हम 10 साल के थे तो मेरे पापा जसपुर उत्तराखंड में काम करते थे और वो प्रतिदिन साइकिल से काम करने के लिए जाते थे। कभी कभी हम भी पापा के साथ जाने की जिद करते थे लेकिन पापा मना करते थे क्योंकि वो सोचते थे कि इतनी दूर साइकिल पर बैठ करके जाएंगे तो परेशानी होगी। लेकिन पापा के मना करने के बावजूद भी हम पापा के पीछे बहुत दूर तक भाग कर चले जाते थे तो पापा अपने साथ ले जाते थे और वापस लौटते वक्त शाम के समय हमें खाने की चीज़ें दिलवाते थे और कहते थे कल मत आना क्योंकि अगर तुम कल आओगे तो फिर से वही परेशानी होगी। और एक पिता बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपको बिना वजह कोई परेशानी झेलनी पड़ जाए। लेकिन मैं अपने सभी श्रोताओं के साथ एक बात और साझा करना चाहता हूँ। क्या खूब कहा है एक पिता ने अपने बेटे के लिए कि बेटा अगर तुम्हें ठोकर लगे तो रुकना मत, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है लेकिन कामयाबी एक ऐसी चीज है जो अक्सर ठोकरे खाकर ही मिलती है। और ये नसीहत हमें केवल और केवल हमारे पापा ही दे सकते हैं, है ना। और हमारी जो परवाह है वो भी सबसे ज्यादा हमारे पापा ही करते हैं। जैसे कि अभी जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप और इनके सभी परिवार वालों ने लिख करके भेजा कि जब भी ये कभी 10 किलोमीटर दूर अपने पापा के साथ जिद करके चले भी जाते थे ना तो इनके पापा को दुख भी होता था शाम के समय कि कल मत आना, क्योंकि कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उसके जो बच्चे हैं वो थोड़ी सी भी परेशानी भरे, है ना। और हमेशा वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनके सामने हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही हंसते खेलते वो बड़े हो जाएं। एक पिता बस इतना ही तो चाहता है और पिता का सुकून भी बस इसी में ही है।

दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम में आज हम यादों की बातें कर रहे हैं और बातें जुड़ी हैं पापा से। कार्यक्रम का अगला मैसेज हमें भेजा है शाही मार्केट स्योहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अदीब और कादिर चौधरी ने। ये लिखते हैं, हमारे पापा कहते थे पढ़ लो तुम्हारे काम आएगा, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी और अनपढ़ ही रह गए। हमारे माता पिता तो गुजर गए, लेकिन उनकी बात आज भी हमारे दिलों में है। बहुत समझाते थे, कभी किसी से झगड़ा मत करना, बड़ा हो या छोटा, उनसे प्यार से ही बात करना। अगर गलती भी हो किसी और की, तो आप वहां से सर झुकाकर चले जाना, इसमें आपकी कोई बुराई

नहीं होगी। सब लोग अच्छा कहेंगे कि इसकी गलती भी नहीं थी और फिर भी ये चुपचाप चला गया। बाद में तुम्हारी तारीफ करेंगे वही लोग जो वहाँ पर मौजूद थे। बस अब उनकी बातें बातें रह गईं और हम उन बातों पर अब अमल करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने अपने इस मैसेज में, और हम थोड़ी सी बात जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि पिता के साये में जो चलने वाला बच्चा है ना, वो धूप से डरता नहीं है। धूप उसके लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि उसके सिर पर सिर्फ हाथ नहीं है बल्कि एक मजबूत ढाल है जो जीवन भर उसका साथ देती है। हमारे पिता अनमोल हैं, उनकी बातें अनमोल हैं। हमारे पिता अपने दुख कष्ट और सपनों को छोड़कर अपने बच्चों के जीवन को रोशन कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमारे पिता जो है ना अद्भुत हैं, ईश्वरीय हैं।

कार्यक्रम का अगला मैसेज हमें भेजा है नगीना से, अनिल बिनोचा लिखने वाले हैं और ये लिखते हैं, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। सच में पिता एक महान किरदार और व्यक्तित्व का रूप है। पिता सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत करते रहता है, बच्चे के फ्यूचर से लेकर बहुत दूर तक उसके लिए सोचता रहता है। पिता हमेशा बच्चों के प्रति निस्वार्थ होता है। एक पिता तब खुश होता है जब उसके बच्चे कमाने लग जाते हैं। जब मैंने अपनी पहली सैलरी अपने पापा को दी थी, तब उसे हाथ में ले आशीर्वाद दिया उन्होंने मुझे और कहा, ये अपनी मम्मी को दे दो। मेरा बस किरदार यहीं तक है, तो ये बात कभी नहीं भूलता। पिता महान होते हैं, अनिल विनोचा जी ने लिखा है नगीना से हमें, और बिल्कुल सही बात है। उन्हें आप हमारे जो पिता हैं उन्हें हमसे क्या चाहिए, बस यही कि हम इस लायक बन जाएं कि अपना जीवन सही से गुजार दें। एक इज्जत भरी जिंदगी हमको हमारे पिताजी हमेशा देना चाहते हैं, और उस इज्जत भरी जिंदगी के लिए कभी कभी हमें अनुशासित बनाने के लिए कभी कभी हमारे पिताजी हमसे थोड़ा सख्ताई से बात करते हैं, है ना। और ये सही बात है कि हमारे पिता अगर सख्त भी होते हैं तो वो दिल से बहुत नरम भी होते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने भी आपसे बात करी थी कि जब हमने आपसे जिक्र किया, यदि भाई और बहन की लड़ाई हो तो गलती चाहे बहन की ही हो, प्यार का थोड़ा सा कतरा बहन की तरफ ज्यादा रहता है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं पापा की सख्ताई की, सख्त दिली पापा नहीं, वो लगते हैं मगर इतने सख्त है नहीं, दिल से बहुत मासूम, बहुत कोमल, बहुत भोले हैं। और अगर किसी पापा के मन की नरमियत को, किसी पापा के दिल की भोलेपन को आपको देखना है तो बस उन्हें उस समय देखना जब वो अपनी बेटी को अपने घर से विदा कर रहे होते हैं, बिल्कुल खामोश, आंखें लाल और उसमें आंसू, लेकिन फिर भी खामोश, अपने जीवन की सबसे बड़ी चीज वो आज विदा कर रहे हैं। पिता का त्याग अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी मेहनत हर उस मुस्कान में झलकती है जो उनके परिवार के चेहरे पर होती है। आज अगर हम सुकून से जी रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसकी कीमत किसी पिता ने अपनी खामोशी से चुकाई है। और ठीक ऐसा ही होता है जब हमारे पिता अपनी बेटी को विदा करते हैं भारी मन से। वो सख्त हृदय वाला पिता उस समय इतना कोमल मन, इतना भोलापन,

कार्यक्रम का अगला मैसेज हमें लिख करके भेजा है ग्राम चमरोआ जिला संभल से ब्रजेश सिंह देवी, कविता बेटी वैष्णवी, बेटा दिव्यांश, भाई किशन सिंह चौहान। और ये कहते हैं कि हमारे पिताजी सन 2007 में गुजर गए थे, लेकिन उनकी याद में हम आज भी तड़पते हैं। हम वो पल याद करते हैं लेकिन आंखें भर जाती हैं। कितनी खुशी थी, सारे दिन अच्छे थे, लेकिन समय के अनुसार मम्मी भी सन 2022 में गुजर गई। हम काफ़ी निराश हो गए इस जीवन में और बस इस निराशा में हम सब कुछ तो छोड़ दिया, लेकिन आकाशवाणी सुनना नहीं छोड़ा।

0: अपने मम्मी और पापा के जाने के बाद हमने महसूस किया कि लोग अब स्वार्थी हो चले हैं। मतलब है तो बात करते हैं और नहीं है तो मुंह फेर के निकल जाते हैं। किसी के पास अगर कुछ है जिसे वो हमें दे सकता है, वो देता नहीं क्योंकि उसका मतलब नहीं। हम हर किसी के सुख और दुख में शामिल होते हैं, लेकिन आज हमारे सर पे हमारे माता पिता का साया नहीं तो हर कोई हमें छोड़ देता है। बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि माता पिता का साया ऐसा होता है कि जब उनका साया हमारे सिर पे होता है तो दुनिया रहमतें बरसाती है। कोई भी हमारे खिलाफ सोचने की या खड़ा होने की कोई हिम्मत नहीं करता। हमारे पिताजी इसमें मेन रोल अदा करते हैं। आज भी आसमान की तरफ देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया करो, क्योंकि यकीन है कहीं ना कहीं से हमारे सबके पिता अब भी हमारा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते शरीर से नहीं दुआओं से जुड़े हैं। अगर आज हमारे पिता हमारे साथ नहीं हैं, गुजर चुके हैं, तो उनकी दुआएं तो हमारे साथ हैं ना। पिता भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनके संस्कार, उनका आशीर्वाद और उनकी परछाई हर कदम पर साथ चलती है। जब भी जिंदगी मुश्किल लगती है, ऐसा महसूस हो कि ऊपर से कोई अब कह रहा है, डर मत बेटा, मैं आज भी तेरे साथ हूं, तो वो आवाज केवल और केवल जो हमारे मन में गूंजी है वो हमारे पिता की होगी।
1: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ।

कार्यक्रम का अगला मैसेज हमें भेजा है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाज़े शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव ने ये लिखते हैं, माँ और बाप हमारे लिए एक अनमोल हीरा है, लेकिन हम उन हीरों को परखने में बहुत देर कर देते हैं और एक दिन वो हीरे टूट कर बिखर जाते हैं। फिर हम सिर्फ और सिर्फ पछताने के अलावा कुछ भी नहीं करते, हमारे हाथ बस केवल पछतावा लगता है। इसलिए माँ बाप को सीने से लगाओ, बिल्कुल सही बात कही, हमें अपने माँ बाप को बिल्कुल सीने के साथ लगा के रखना चाहिए। पिता के साथ साइकिल का वो सफ़र भी कितना खूबसूरत होता होगा, जब पैडल उनके पैरों से चलते थे, लेकिन मंजिलें हमारे सपनों की तय होती थी, तो हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ते हुए कि हम अकेले हैं, क्योंकि उस सफ़र में हमारे पिता की दुआएं, उनका आशीर्वाद, उनका दिया हुआ हौसला हमारे साथ था। तो सफ़र अगर हम अकेले भी हैं, ऐसा लगा ही नहीं कि हम अकेले हैं, क्योंकि हमारे पिता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दुआओं के तौर पर हमारे साथ ज़रूर मौजूद थे।

कार्यक्रम का अगला मैसेज हमें भेजा है मोहल्ला हलवैयान कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने। और ये लिखते हैं कि मेरे पापा को गए 25 साल हो गए, बस मेरी अम्मी है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ बाप बहुत अनमोल होते हैं, उनकी सेवा करें, जब वो नहीं होते तब पता चलता है हमने क्या खो दिया। वो हीरा होते हैं, उनको संभाल कर रखें। बिल्कुल सही बात कही। और कोई भी बेटा हो, उसकी कामयाबी केवल उसके पिता के द्वारा कहे गए एक वाक्य से पता चलती है। और एक बेटे की जिंदगी की सबसे बड़ी जीत कोई ट्रॉफी, पद या दौलत बिल्कुल नहीं होती, वो पल होता है जब उसका पिता किसी और से सीना तान कर कहता है, ये मेरा बेटा है। उस एक वाक्य में बेटे की सारी मेहनत, सारे संघर्ष, सारी रातों की जागी हुई उम्मीदें और जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत समाई होती है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पहचान तो यही है जो एक पिता अपने बेटे पर गर्व करते हुए देता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे सबके पिताओं को उम्मीद होती है कि हमारा बेटा कुछ नाम करेगा, हमारा जग में नाम रोशन करेगा। बस एक पिता ही तो है जो ये चाहता है। और हमारे जो पापा होते हैं ना, वो हमेशा से ही बस यही चाहते हैं कि हम जग में बहुत नाम कमाएं।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

श्रोताओं, इसी उम्मीद के साथ कि अगले बुधवार रात्रि के 10 बजे दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम में एक बार फिर हाजिर होंगे, क्योंकि अब घड़ी की सुइयां हमें इजाज़त नहीं दे रही हैं कि कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए। तो कर लेते हैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: जार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822

सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822